वेलकम बैक वन सेकंड ट्यून करछन्ति 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक सुजाता छी आपन मन का सहित सो चली छी मो देश हां साथी आम भारत एक प्राचीन गौरवमय सभ्यतार देश विश्वर अन्यान्य देश जेतेबेले सभ्यतार प्रथम पाठ पढ़ुथिले सेतेबेले भारत ज्ञान विज्ञान दर्शन एवं आध्यात्मिक आलोक वितरण करुथिला आम देशर भौगोलिक सौंदर्य अतुलनीय उत्तरे हिमालय पर्वत भारतर प्रहरी भाव छिड़ा होइछि दक्षिणरे विशाल भारत महासागर ताहाकु सीमाकु स्पर्श करुछि पूर्वरे सबुज जंगल एवं पश्चिमरे थार मरुभूमि आम देश को विविधतार रूप देते साथी मो देशर गंगा जमुना ब्रह्मपुत्र गोदावरी कृष्णा और महानदी परी नदी मैंने आम देश को सबुज और समृद्ध करिछन्ती

0: ଆଜିର ଦିନଟି ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଜିର ଅନୁଚିନ୍ତା। ଅନେକ ସମୟରେ ଦୁଃଖ ଆପଣଙ୍କ ରାସ୍ତାକୁ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିବେ ଏ ସମୟ ବି ଚାଲିଯିବ। ଦୁଃଖ ପରେ ସୁଖ, ସୁଖ ପରେ ଦୁଃଖ, ଏ ତ ଜୀବନର ରୀତି। ତେଣୁ ଦୁଃଖ ସମୟରେ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେନି ଏବଂ ସୁଖରେ ଆତ୍ମହରା ହୋଇଯିବେନି। ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି 100.4 ଆକାଶବାଣୀ ଏଫ୍ଏମ୍ ରେନ୍ବୋ କଟକ ଦିଲ୍ ସେ ଦିଲ୍ ତକ୍। ଆଉ କିଛି କ୍ଷଣ ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିପାରିବେ ସମାଚାର ହିନ୍ଦୀରେ। ରିଲେ କରି ପ୍ରଚାର କରିବୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀ କେନ୍ଦ୍ରରୁ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा आज से शुरू हो रही है। पहले चरण में श्री मोदी आज इंडोनेशिया पहुंचेंगे। ये प्रधानमंत्री की चौथी इंडोनेशिया यात्रा है। मई 2018 में दोनों देशों के संबंधों के व्यापक रणनीतिक भागीदारी तक पहुंचने के बाद से शीर्ष नेतृत्व के बीच पहली द्विपक्षीय वार्ता होगी। प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ वार्ता करेंगे और रणनीतिक भागीदारी की प्रगति की समीक्षा करेंगे। श्री मोदी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक नगर योग्यकार्ता भी जाएंगे। योग्यकार्ता में वे प्रबन्नन मंदिर जाएंगे। भारत और इंडोनेशिया मिलकर इस मंदिर का संरक्षण कार्य पूरा करेंगे। अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों की आज बैठक होगी। इस दौरान मंदिर को मिले दान की छानबीन कर रहे विशेष

जांच दल की रिपोर्ट सहित अनेक प्रशासनिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा होगी। ये बैठक पहले दोपहर 3 बजे मणिराम छावनी में होनी थी, लेकिन अब ये राम मंदिर परिसर में ही होगी। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। ये समारोह सहकार से समृद्धि की परिकल्पना के अनुरूप आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर श्री शाह कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। इनमें 232 अनाज भंडारण गोदामों का उद्घाटन, सहकार वन का भूमि पूजन, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में टिश्यू कल्चर सुविधाओं का भूमि पूजन, राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस NCD और जियो टैग मोबाइल एप्लीकेशन तथा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDV के दुग्ध आपूर्ति समीक्षा डैशबोर्ड पोर्टल का शुभारंभ शामिल है। असम में विधानसभा का बजट अधिवेशन आज से शुरू हो रहा है। इससे पहले कल गुवाहाटी में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में आपात सेवाओं में मजबूती लाने, औद्योगिक विकास बढ़ाने और शासन में सुधार के लिए कई नीतिगत फैसलों को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व सरमा ने बताया कि सत्र के दौरान पेश किए जाने वाले अनेक विधेयकों को भी स्वीकृति दी गई है। इनमें असम सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम स्थापना और परिचालन सुविधा विधेयक 2026, असम जन विश्वास विधेयक 2026, असम पर्यटन विकास और पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 और असम व्यापार सुगमता संशोधन विधेयक 2026 शामिल है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती आज मनाई जा रही है। इस अवसर पर संस्कृति मंत्रालय पश्चिम बंगाल सरकार के सहयोग से कोलकाता में विशेष कार्यक्रम का आयोजन करेगा। ये कार्यक्रम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के 2 वर्षीय आधिकारिक समारोह के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। ऑस्ट्रेलिया ने ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप का खिताब जीत लिया है। फाइनल में लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 7 विकेट से पराजित किया। इंग्लैंड ने निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट पर 150 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया ने 17 ओवर और 1 गेंद में 3 विकेट के नुकसान पर 153 रन बनाकर मैच जीत लिया। बेथ मुनी को प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में नॉर्वे ने बड़ा उलटफेर करते हुए 5 बार की विश्व चैंपियन ब्राजील को 1-2 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। स्टार स्ट्राइकर एर्लिंग हालंद ने 2 शानदार गोल कर नॉर्वे को मजबूत बढ़ा दिलाई। ब्राजील की तरफ से एकमात्र गोल नेमार जूनियर ने किया। फ्रांस और मोरक्को के बाद क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली नॉर्वे तीसरी टीम है। विंबलडन टेनिस में सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने रूस के रोमन सफियोलिन को हराकर पुरुष एकल क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। ऑल इंग्लैंड क्लब में जोकोविच की ये 106वीं एकल जीत है। उन्होंने विंबलडन पुरुष एकल में 105 जीत का रोजर फेडरर का कीर्तिमान भी तोड़ा। इस चैंपियनशिप में केवल मार्टिना नवरातिलोवा ने ही 120 एकल मैच जीते हैं। वहीं महिला एकल में कैरोलिना मुचोवा ने पूर्व चैंपियन बारबोरा क्रेस्चिकोवा को हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: এই কথা সহিত মর্নিং আপডেট কু এইটি রাখুছি, কিন্তু আছুক্ষণ ভিতরে আপনার শুনেপারে সংস্কৃত সম্বাদ রিলে করে প্রচার করব আকাশবাণী দিল্লি কেন্দ্র।
1: আকাশবাণী সম্প্রতি বার্তা শ্রূয়ন্তাম প্রবাচিকা নিধি ঝা। अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्यारभ्य इण्डोनेशिया, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैण्ड देशानां षड्दिवसीय यात्रायै प्रस्थितः। अस्याः त्रिदेशीय यात्रायाः प्रथमे चरणे असौ अद्य इण्डोनेशिया देशं प्राप्स्यति। प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः इयं चतुर्थ इण्डोनेशिया यात्रा वर्तते। अत्रावधेयं यत् स्वयात्रावधौ प्रधानमन्त्री इण्डोनेशिया देशस्य नवनिर्वाचित राष्ट्रपतिना प्रवोवो सुबियांतो इत्यनेन सह द्विपक्षीय वार्तालापं विधास्यति। संधेः प्रगतिमालक्ष्य समीक्षां च करिष्यति। तदीय मुख्याः आधिकारिकाः कार्यक्रमाः जकार्ता नगरे भविष्यन्ति। परं असौ योग्यकर्ता इति कञ्चन ऐतिहासिकं सांस्कृतिकं च नगरम् अपि गमिष्यति। जकार्ता नगरे प्रधानमन्त्री सुविशालं भारतीय प्रवासी समुदायं सम्बोधयिष्यति। केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मन्त्री अमित शाहः अद्य नवदेहल्याम् आयोजितं सहकारिता मन्त्रालयस्य पञ्चमं स्थापना दिवस समारोहं अलंकरिष्यति। मन्त्रालयेन ज्ञापितं यत् अयं समारोहः सहकारात् समृद्धिः इति राष्ट्रिय संकल्पनामाधृत्य विधीयते। अस्मिन् मंगल प्रसंगे श्री शाहः अनेकासां प्रमुखाभिनव परियोजनानां शिलान्यासं उद्घाटनं च विधास्यति। एतासु योजनासु द्वात्रिंशदधिकद्विशत अन्न संग्रह भण्डारानां लोकार्पणं, सहकार वनस्य भूमिपूजनं, उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र राज्ययोः त्रिशु कल्चर इति सुविधायै भूमि पूजनम्, राष्ट्रिय सहकारी डेटाबेस एनसीडी 3.0 इत्यस्य भौगोलिक चिन्हांकन दूरभाषानुप्रयोगस्य च आरम्भः। जम्मू कश्मीर केन्द्र शासित प्रदेशे प्रचलन्त्यां वार्षिक श्री अमरनाथजी यात्रायां श्रद्धालूनां महत् सम्मर्धः दृश्यते। यत्र यात्रायाः प्रथमेषु त्रिषु दिनेष्वेव 650,000+ जनाः पवित्र गुहा मन्दिरे समागताः। रविवासरे प्रायः 25,000 भक्तैः बाबा बर्फानी इत्यस्य दिव्य दर्शनं विहितम्। इतः पूर्वं द्वितीय दिने प्रायः 20,000 जनाः, उद्घाटन दिवसे च 12,000+ तीर्थयात्रिणः भगवतः दर्शनं लब्धवन्तः। अनेन सहैव जम्मू कश्मीरस्य उपराज्यपालः मनोज सिंहा श्वः नुवान पहलगाम इति आधार शिबिरस्य निरीक्षणं विधास्यति। सममेव ह्यः तत्र तीर्थयात्रिभ्यः कल्पितानां व्यवस्थानां प्रबन्धानां च सूक्ष्म पुनरीक्षणं तेन कृतम्। देशस्य विशालेषु भूभागेषु प्रावृत् स्थितिः अत्यधिकं तीव्रीभूता सञ्जाता, येन हि अतिवृष्टिः, मेघगर्जनं, विद्युत्पातः, प्रचण्ड चक्रवादवायुः च प्रचलति। भारतीय ऋतुविज्ञान विभागेन विज्ञापितं यत् आगामिषु चतुर्षु दिनेषु गुजरात राज्यस्य कतिपय भागेषु, हरियाणा, पंजाब, राजस्थानेषु च प्रावृत् स्थितिः सर्वथा अनुकूला वर्तते। विभागेनाद्य छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, उत्तराखण्ड राज्येषु अतिवृष्टेः पूर्वानुमानं कृतम्। अपरतः आगामिषु द्वित्रिदिनेषु राष्ट्रिय राजधान्यां दिल्ल्यां, उत्तरप्रदेशे, पंजाबे, चण्डीगढ़क्षेत्रे विकीर्णरूपेण वृष्टिः सम्भाव्यते। विम्बल्डन टेनिस प्रतिस्पर्धायां गतरात्रौ सर्बिया देशस्य लब्ध प्रतिष्ठेन क्रीडकेन नोवाक जोकोविचेन रूस देशस्य रोमन सफ्यूलिनं पराजित्य पुरुषेकल क्रीडायाः प्रागुपान्त्य चक्रे स्थानं सुरक्षितम्। इतः परम् असौ फेलिक्स नगरे उत डेविवोचिस इत

आई होप आमर प्रतिटी कार्यक्रम आपनकर मन छुआ हेबो आपन माने ट्यून कर जंदे 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो गटक दिल से दिल तक को अन दिल से दिल तक रे देव मित्र आज आपन मानन तो सहित

0: यहाँ खबरें तोड़ी मरोड़ी नहीं जाती।
1: बहुत सारे निजी चैनल और निजी चैनलों के बोलबाला में हम समझ रहे हैं कि आकाशवाणी और दूरदर्शन इसकी रिलेवेंसी क्या है।
0: यहाँ होती है सीधी सटीक और सच्ची खबरें।
1: मैं मन से मानता हूँ कि भारत के भाव की अभिव्यक्ति केवल और केवल आकाशवाणी और दूरदर्शन ही कर रहा
0: है, क्योंकि ये है देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल। डीडी न्यूज, केवल खबर, पूरी खबर।

0: कि एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों

0: को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा आज से शुरू हो रही है। भारत जिनेवा में उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के नवे सत्र की अध्यक्षता करेगा। भारत ब्रिक्स की अपनी अध्यक्षता में केरलम के कोच्चि में आज से शुरू हो रही महिला कार्य समूह की बैठक की मेजबानी करेगा। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों की आज बैठक होगी। भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर समग्र राष्ट्र की भावभीनी श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें साहस, राष्ट्रवाद और निस्वार्थ सेवा का शाश्वत उदाहरण बताया। और फीफा विश्व कप में 5 बार के चैंपियन ब्राजील की नॉर्वे से 2-1 से हार के बाद नेमार जूनियर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा आज से शुरू हो रही है। पहले चरण में श्री मोदी आज इंडोनेशिया पहुंचेंगे। ये प्रधानमंत्री की 4थी इंडोनेशिया यात्रा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मई 2018 में दोनों देशों के संबंधों के व्यापक रणनीतिक भागीदारी तक पहुंचने के बाद से शीर्ष नेतृत्व के बीच ये पहली द्विपक्षीय वार्ता होगी।
2: प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियंतो के साथ वार्ता करेंगे और रणनीतिक भागीदारी में प्रगति की समीक्षा करेंगे। वार्ता में दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होने की उम्मीद है, जिसमें रक्षा सहयोग, व्यापार, निवेश और ऊर्जा सुरक्षा तथा सांस्कृतिक सहयोग पर खास ध्यान दिया जाएगा। जकार्ता कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण प्रधानमंत्री मोदी का भारतीय समुदाय को संबोधन होगा, जिसे लेकर पूरे देश में उत्साह है। बाली, मेदान, सेमारंग, सुराबाया और के समुदाय सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ भव्य स्वागत की तैयारी कर रहे हैं। हजारों भारतीय नागरिकों और भारतीय मूल के लोगों के जुटने की उम्मीद है, जो इस यात्रा को गर्व का विषय और अपनी मातृभूमि के साथ संबंध मजबूत करने का अवसर मान रहे हैं। 8 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी ऐतिहासिक प्रम्बनन मंदिर के दर्शन के लिए योग्यकार्ता जाएंगे। भारत इस यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के जीर्णोद्धार के प्रयासों में सहयोग कर रहा है, जो दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंधों को रेखांकित करता है। कार्ता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
1: भारत स्विट्जरलैंड के जिनेवा में उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के नवे सत्र की अध्यक्षता करेगा। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास संगठन ने 6 से 8 जुलाई तक इस सत्र का आयोजन किया है।
3: उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि इस सत्र में सदस्य देश, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण, शिक्षाविद और अन्य संबंधित पक्ष उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति से जुड़े उभरते मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। उपभोक्ता मामले विभाग की सचिव निधि खरे इस सत्र की अध्यक्षता करेंगी। वह 3 दिन तक चलने वाले इस सत्र में विचार विमर्श का संचालन करेंगी। सत्र के दौरान उपभोक्ता जानकारी और शिक्षा, टिकाऊ उपभोग, वैश्विक बाजारों में उपभोक्ता संरक्षण कानून के प्रभावी क्रियान्वयन और सीमा पार उपभोक्ता संरक्षण जैसे विषयों पर चर्चा होगी। भारत वाई द प्रिंसिपल मैटर विषय पर आयोजित उच्च स्तरीय फायरसाइड चर्चा में भी भाग लेगा। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
1: भारत अपनी ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत ब्रिक्स महिला कार्य समूह की 2 दिन की बैठक की मेजबानी करेगा। केरलम के कोच्चि में आज से शुरू हो रही बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे।
4: विभिन्न क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण और महिला नीत विकास से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर विचार होगा। साझा प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर भी बातचीत होगी। इस बैठक से सदस्य देशों को महिला नीत विकास के लिए सहमति बनाने का अवसर मिलेगा। ब्रिक्स महिला कार्य समूह ने 4 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया है। इनमें शासन और नेतृत्व में महिलाओं की भूमिका, डिजिटल और वित्तीय गतिविधियों में उनकी समावेशिता, महिला उद्यमिता और कौशल विकास तथा जल

0: वायु परिवर्तन, खाद्य सुरक्षा और पोषण में महिलाओं की भूमिका शामिल है। यह बैठक 8 और 9 जुलाई को होने वाले ब्रिक्स महिला मंत्री स्तरीय सम्मेलन की आधारभूमि तय करेगी। समाचार कक्ष से मैं आशा निवेदी।
1: भारत असम के गुवाहाटी में दो दिन की ब्रिक्स मादक पदार्थ रोधी एजेंसी प्रमुखों की बैठक की मेजबानी करेगा। हमारे संवाददाता ने बताया कि आज से शुरू हो रही बैठक का उद्देश्य संस्थागत संपर्क मजबूत करना और मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के बीच सहयोग बढ़ाना है।
2: बैठक में सिंथेटिक ड्रग्स और प्रिकर्सर रसायनों की अवैध आपूर्ति पर रोक, खुफिया सूचनाओं के आदान प्रदान तथा परिचालन समन्वय को मजबूत बनाने, क्षमता निर्माण और संस्थागत सहयोग बढ़ाने जैसे विषयों पर चर्चा होगी। प्रतिनिधि ने साइको एक्टिव पदार्थों, डार्क नेट के माध्यम से होने वाली तस्करी, क्रिप्टो करेंसी आधारित अवैध वित्तीय लेन देन तथा प्रिकर्सर रसायनों के दुरुपयोग जैसी उभरती चुनौतियों पर भी विचार विमर्श करेंगे। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों की आज बैठक होगी। हमारे संवाददाता ने बताया कि मंदिर को मिले दान की छानबीन कर रहे विशेष जांच दल की रिपोर्ट सहित अनेक प्रशासनिक और वित्तीय मुद्दों पर बैठक में चर्चा होगी।
3: बैठक के एजेंडे में महासचिव चंपत राय और न्यासी डॉक्टर अनिल मिश्रा के त्याग पत्रों पर विचार विमर्श करना भी शामिल है। सदस्यों को न्यास की दान पेटियों के माध्यम से मिले दान की गणना के संबंध में सोसाइटी की अंतरिम रिपोर्ट के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। बैठक में राम मंदिर के भविष्य के प्रबंधन से संबंधित व्यवस्थाओं पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। एजेंडा का एक महत्वपूर्ण बिंदु वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए आय व्यय वितरण, बैलेंस शीट और अन्य वित्तीय दस्तावेजों की प्रस्तुति और शामिल है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: समग्र राष्ट्र आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर संस्कृति मंत्रालय पश्चिम बंगाल सरकार के सहयोग से कोलकाता में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि यह कार्यक्रम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के 2 वर्षीय आधिकारिक समारोह के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है।
4: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज दोपहर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती समारोह में शामिल होने के लिए कोलकाता पहुंचेंगे। वे न्यू टाउन स्थित इको पार्क जाएंगे, जहां वे श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125 फीट ऊंची प्रतिमा के शिलान्यास समारोह में भाग लेंगे। दोपहर बाद भवानीपुर स्थित श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पैतृक निवास पर आयोजित कार्यक्रम में अमित शाह उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करके श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें साहस, राष्ट्रवाद और निस्वार्थ सेवा का शाश्वत प्रतीक बताया है। श्री मोदी ने एक आलेख में कहा है कि डॉक्टर मुखर्जी का जीवन अखंड भारत के लिए उनकी अटल प्रतिबद्धता का प्रमाण है। उन्होंने विभाजन के दौरान पश्चिम बंगाल को और इसके बाद जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाए रखना सुनिश्चित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2019 में अनुच्छेद 370 और 35 से निरस्त किया जाना उनके बलिदान के प्रति सर्वाधिक समुचित श्रद्धांजलि थी। मुंबई और तटीय महाराष्ट्र में तेज हवा के साथ लगातार बारिश हो रही है। रायगढ़ जिले में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है, जहां प्रमुख नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि रायगढ़ और रत्नागिरी जिलों में मूसलाधार बारिश ने जबरदस्त तबाही मचाई है।
5: मुंबई, ठाणे, पालघर, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग में तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट और रायगढ़ जिले के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। एहतियात के तौर पर सभी तटीय जिलों और पुणे में सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। मुंबई के मानखुर्द इलाके में 3 मंजिला कच्ची चौल में घरों के ढहने से 6 लोगों की मौत हो गई। रविवार को ठाणे और पालघर जिलों में तेज बारिश का कहर जारी रहा, जिससे 2 लोगों की मौत हो गई और कई इमारतें ढह गई। सिंधुदुर्ग में कई जगहों पर इमारतें ढहने से नुकसान हुआ है। मुंबई से संगीता गोडबोले की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: मौसम विभाग ने आज गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त

0: की है। ब्राजील के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी नेमार जूनियर ने फीफा विश्व कप के राउंड 16 में कल रात नॉर्वे से 2-1 से हार के बाद अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है। नेमार जूनियर हमेशा ब्राजील के सबसे प्रमुख स्कोरर रहे। कल के मैच में ब्राजील के लिए एकमात्र गोल करने के बावजूद नेमार अपनी टीम को हार से बचा नहीं पाए। महाभारत के कालजयी प्रसंगों को पंडवानी में पेश करने वाली सुविख्यात लोक गायिका तीजन बाई अब हमारे बीच नहीं रही। उनके निधन से लोक संस्कृति की अपूर्णीय क्षति हुई है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
1: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों की सुर्खियों में आज राम मंदिर परिसर में होने वाली न्यास की बैठक और देश के विभिन्न हिस्सों में मॉनसून की चाल से जुड़े समाचार छाए हुए हैं। साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के अन्य मुद्दों को भी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। राजस्थान पत्रिका ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर चित्र सहित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है देश की एकता और अखंडता को समर्पित जीवन। पत्र ने श्री मोदी के इन शब्दों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। डॉ मुखर्जी के जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य भारत की एकता और अखंडता की रक्षा करना था। देश के विभाजन के समय उन्होंने पश्चिम बंगाल को भारत का अभिन्न अंग बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कुछ वर्षों बाद इसी उद्देश्य से उन्होंने जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर भी संघर्ष किया। अन्य राष्ट्रीय समाचार पत्रों ने भी इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश संपादकीय पन्नों पर छापा है। वहीं जनसत्ता ने ओडिशा में विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान 20 लाख से अधिक लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाए जाने के समाचार को पहले पन्ने पर प्रमुखता से छापा है। पत्र ने प्रख्यात पंडवानी गायिका तीजन बाई के निधन का समाचार सचित्र प्रकाशित करते हुए उनकी उपलब्धियों और योगदान पर भी प्रकाश डाला है। दैनिक भास्कर ने गैस आपूर्ति पर लगे प्रतिबंधों को हटाए जाने का समाचार हाशिए में सबसे ऊपर प्रकाशित किया है। पत्र ने देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत के लिए हो रही तैयारियों की खबर को भी वरीयता दी है। वहीं इंस्टाग्राम पर बच्चों के यौन शोषण से जुड़े कंटेंट के मामले में केंद्र सरकार की ओर से मेटा को जारी नोटिस का समाचार नवभारत टाइम्स, दैनिक भास्कर और देशबंधु सहित कई अखबारों ने पहले पृष्ठ पर दिया है।
0: गृहमंत्री अमित शाह ने डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि डॉ मुखर्जी भारतीय जनसंघ के संस्थापक और राष्ट्र की एकता, अखंडता और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के प्रबल समर्थक थे। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा आज से शुरू हो रही है। भारत जिनेवा में उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के 9वें सत्र की अध्यक्षता करेगा। भारत ब्रिक्स की अपनी अध्यक्षता में केरलम के कोच्चि में आज से शुरू हो रही महिला कार्य समूह की बैठक की मेजबानी करेगा। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों की आज होगी बैठक। भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर समग्र राष्ट्र की भावभीनी श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें साहस, राष्ट्रवाद और निस्वार्थ सेवा का शाश्वत उदाहरण बताया। और फीफा विश्व कप में 5 बार के चैंपियन ब्राजील की नॉर्वे से 2-1 से हार के बाद नेमार जूनियर ने फुटबॉल से लिया संन्यास। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi to embark on a 6-day visit to Indonesia, Australia and New Zealand beginning today. India to chair UNCTAD's 9th session of Intergovernmental Group of Experts on Consumer Protection in Geneva. India to host 2-day BRICS Women Working Group meeting at Kochi in Keralam beginning today.

100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दल से दल तक शौचालय रेनबो एसएमएस रो चलन तो देखिबा परवर्ती एसएमएस के कोठ लिखु चोंती एवं कोन लिखु चोंती एही एसएमएस आसुचि सेक्टर 13 सीडीए कटक रु सुरक्षा सहाय सहयोग भवन रु लिखु चोंती हमको डंबरुधर रथ शर्मा सुनिबा को चाहि चोंती अलकाग्निक एवं मुकुल अग्रवाल का कंठरे दिल तेरा आशिक को कम से कम इतना कहा होता कि तटको सुनिबा को चाहि चोंती एवं समस्त को गुड मॉर्निंग कहु चोंती समस्त श्रोता एवं समस्त स्टाफ मानन को निहाती बापरे आपन को मन पसंद रे गीत मु आपन को शॉर्ट सुनेबी चलन तो परवर्ती एसएमएस आरो को बढिबा एही एसएमएस करु चोंती प्रमोद कुमार साहू ढिया साही कादुआपड़ा जगतसिंहपुर सुनिबा को चाहि चोंती ये बंधन तो करण अर्जुन चलचित्र रो आपन को मन पसंद रो गीत आपन को पाखरे कब शीघ्र मु पहुंचौ छी चलन तो सुनिनेबा बैक टू बैक ए दुटी ब्यूटीफुल ट्रैक को

प्रस्तुत है आकाशवाणी रेनबो मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा आज से शुरू हो रही है। वो 2 दिन की यात्रा पर आज शाम इंडोनेशिया पहुंचेंगे। भारत जिनेवा में उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के 9वें सत्र की अध्यक्षता करेगा। भारत ब्रिक्स की अपनी अध्यक्षता में केरलम के कोची में आज से शुरू हो रही महिला कार्य समूह की बैठक की मेजबानी करेगा। अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों की आज बैठक होगी। आंध्र प्रदेश में अमरावती स्थित सचिवालय कार्यालय आज से कर्मचारियों के लिए 3 दिन के विशेष गहन पुनरीक्षण शिविर का आयोजन करेगा। वेनेजुएला में भूकंप में मरने वालों की संख्या बढ़कर 3,342 हो गई है। 16,740 लोग घायल हैं और 17,000 से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं। भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर समग्र राष्ट्र की भावभीनी श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें साहस, राष्ट्रवाद और निस्वार्थ सेवा का शाश्वत उदाहरण बताया। ओपेक प्लस देशों ने अगस्त में 188,000 बैरल तेल उत्पादन प्रतिदिन बढ़ाने की घोषणा की। प्रचंड तूफान बावी ने अमरीकी प्रशांत द्वीपों पर दी दस्तक। गुआम और उत्तरी मरियाना द्वीपों के लिए विनाशकारी तबाही की चेतावनी। मौसम विभाग ने आज गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश की संभावना जताई। सिक्किम की पर्वतारोही शेरिंग चौडेन ने

अरब की 5,642 मीटर की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्बर्स पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की। और खेलों में विंबलडन पुरुष सिंगल्स में नोवाक जोकोविच क्वार्टर फाइनल में पहुंचकर ऑल इंग्लैंड क्लब ने 106वीं सिंगल्स जीत के साथ रॉजर फेडरर का रिकॉर्ड तोड़ा। और फीफा वर्ल्ड कप में 5 बार के चैंपियन ब्राजील की नॉर्वे से 2-1 से हार के बाद नेमार जूनियर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की। तो ये थे अभी तक के FM रेनबो मुख्य समाचार।

0: વાણી આકાશવાણી
1: और आकाशवाणी रेनबो पर बॉलीवुड रील्स लेकर आपके साथ हूं मैं आकृति खंडूरी।

बॉलीवुड की चटपटी अटपटी मजेदार जायकेदार और थोड़ी सी मिर्चीदार खबरों के साथ बॉलीवुड रील्स में एक बार फिर आपके साथ हूं मैं आकृति खंडूरी और साथ ही इस घंटे बॉलीवुड के अपडेट सुनाऊंगी ही और बनने का मौका भी दूंगी आपको आज का बॉलीवुड सरताज सवाल। तो प्रोग्राम में शेयर की गई बातों को ध्यान से सुनिए, पूरे एक घंटे बहुत सी बातें होंगी और उन्हीं बातों में छुपा होगा हमारा आज का बॉलीवुड सरताज का सवाल भी, जिसे आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9868107070 पर सबसे पहले सही जवाब के साथ पहुंचाकर बन सकते हैं आज के बॉलीवुड सरताज भी।

जी हाँ, बॉलीवुड रेस में सबसे पहले बात करते हैं आज उस स्टार की जिसका आज बर्थडे है। और अगर मैं बॉलीवुड के कुछ सितारों की बात करूं जिनके आते ही स्क्रीन पर माहौल एकदम से बदल जाता है, तो रणवीर सिंह उन्हीं में से एक है और आज उन्हीं का बर्थडे है। 6 जुलाई 1985 ये रणवीर का बर्थडे है। और रणवीर ने बॉलीवुड इंडस्ट्री में बैंड बाजा बारात फिल्म के साथ 2010 में एंट्री मारी थी, बिट्टू शर्मा का रोल किया था और उनको स्क्रीन पे देखते ही लगने लगा था कि हिंदी सिनेमा को, बॉलीवुड को एक नया लाइव वायर मिल गया है। लेकिन उसके बाद तो हर फिल्म में कुछ नया हुआ, कुछ अलग हुआ, कुछ धमाकेदार देखने को मिला। रामलीला का दीवानापन याद है ना आपको, या फिर बाजीराव मस्तानी की शान, पद्मावत में उन्होंने अपने रोल में अलग ही तरह से अपने आप को निभा लिया, और गली बॉय के सपने हो, सिम्बा की मस्ती हो, रणवीर ने हर किरदार में इतना जोश भर दिया कि हम जैसे ऑडियंस बस देखते ही रह गए। और खास बात यह है कि जहां रणवीर हैं वहां एनर्जी जो है वो अपने आप डबल हो जाती है। अब एक्टिंग की बात हो, डांस की बात हो, फैशन की हो या फिर मस्ती की, जिस प्लेटफॉर्म में रणवीर हैं शिद्दत से छा जाते हैं। आज उनके बर्थडे के मौके पर बॉलीवुड ट्रेल्स की ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। हैप्पी बर्थडे रणवीर, ऐसे ही धमाल मचाते रहिए।

आकाशवाणी रेनबो पर सुन रहे हैं आप बॉलीवुड ट्रेल्स और बॉलीवुड ट्रेल्स में आपके साथ हूं मैं आकृति। और बॉलीवुड की गलियों से अगली खबर हमें आ रही है, साउथ फिल्म पुष्पा के जरिए हिंदी ऑडियंस के बीच में भी अपनी पॉपुलैरिटी को जमाने वाली एक्ट्रेस श्री लीला के अब बॉलीवुड इंडस्ट्री में हिंदी डेब्यू के बारे में। और माना जा रहा था, पहले ये खबर आ रही थी कि वो कार्तिक आर्यन के साथ किसी फिल्म में अपनी हिंदी डेब्यू करेंगे, लेकिन फिलहाल ये प्लान जो है वो चेंज हो गया है। और खबर ये आ रही है कि अब वो इब्राहिम अली खान यानी कि सैफ अली खान के बेटे के साथ अपनी बॉलीवुड डेब्यू को कर सकती हैं। और ये भी खबर आ रही है कि ये फिल्म जो है दिवाली के मौके पर रिलीज हो सकती है। फिल्म का नाम फाइनल हो गया है, फिल्म का नाम है दिलेर। और इस फिल्म को जो डायरेक्ट जो कर रहे हैं उनके बारे में कहा जा रहा है कि कुणाल देशमुख जो हैं इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं और मैडॉक फिल्म्स के बैनर के तले ये फिल्म जो है बन रही है। कार्तिक के साथ एक्चुअली उनकी एक फिल्म ऑलरेडी बन चुकी थी, लेकिन फिर समहाउ ये रिलीज नहीं हो पाई, तो अब फाइनली इब्राहिम अली खान के साथ श्री लीला की ये फिल्म दिवाली के मौके पर इस साल रिलीज होगी। बॉलीवुड में उनका डेब्यू, हिंदी डेब्यू।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग। सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो

बॉलीवुड रील्स में आप सुन रहे हैं बॉलीवुड की लेटेस्ट अपडेट्स, जिसे 102.6 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी पर सुनते हैं आप, या फिर देश या दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, न्यूज ऑन एयर ऐप है ना आपके पास, या फिर वो वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म जिससे जुड़े रह सकते हैं आप आकाशवाणी रेनबो से। और फिलहाल बॉलीवुड की अपडेट्स में अगली अपडेट हम तक आ रही है धमाल फिल्म के बारे में, जो कॉमेडी फ्रेंचाइजी है आपको पता ही होगा, और अपने चौथे पार्ट के साथ बॉलीवुड के सिल्वर स्क्रीन पर लौट रही है। अजय देवगन हैं, अरशद वारसी हैं, हमेशा की तरह रितेश देशमुख और जावेद जाफरी एक बार फिर से हम सबको हंसाने के लिए तैयार हैं। और इस बार एक नया नाम भी धमाल फोर में जुड़ा है, और वो है रवि किशन का। और फिलहाल 10 जुलाई को रिलीज होने वाली इस फिल्म के बारे में कहा गया है, एक बार फिर से एंटरटेनमेंट का, कॉमेडी का धमाल जो है वो इस फिल्म में होने वाला है। और रवि किशन पहली बार एक समुद्री डाकुओं के सरदार की किरदार में आ रहे हैं। ट्रेलर जो दिखाई दे रहा था उसमें बहुत ही एंटरटेनिंग उनका ये कैरेक्टर जो है वो नजर आ रहा था। 10 जुलाई की इंतजार होगा धमाल 4, सिल्वर स्क्रीन पर धमाल करती है या नहीं।

बॉलीवुड रील सुन रहे हैं आप, आपके साथ हूं मैं आकृति। और फिलहाल बॉलीवुड की जो दूसरी अपडेट आपको बताने वाली हूं वो है सेलेना जेटली के बारे में, जो 15 साल के लंबे ब्रेक के बाद एक्टिंग में एक बार फिर से वापसी करने वाली हैं। और सेलेना नेशनल अवार्ड जीतने वाले फिल्म मेकर राम कमल मुखर्जी की आने वाली बायोपिक में सिस्टर निवेदिता का कैरेक्टर निभाएंगी, ऐसा उन्होंने सेलेना ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर बताया है। इस फिल्म को अरित्र दास और सरबानी मुखर्जी ने प्रोड्यूस किया है और इतिहास में असाधारण महिलाओं में से एक सिस्टर निवेदिता का किरदार जो है सेलेना निभाने वाली हैं। वैसे सेलेना के बारे में बात करें तो हिंदी सिनेमा में जो है उन्होंने 2003 में एंट्री मारी थी और थ्रिलर फिल्म जानशीन से उन्होंने अपने एक्टिंग के करियर की शुरुआत की थी और उसके बाद 2005 में उनकी फिल्म नो एंट्री आई थी, हिट हुई थी। अपना सपना मनी मनी 2006 में, गोलमाल रिटर्न्स 2008 में और थैंक यू 2011 में आई थी। उनकी फिल्म अच्छी खासी चली थी और इसके अलावा उन्होंने मिस इंडिया का खिताब 2001 में जीता था और मिस यूनिवर्स की अगर बात करें तो आपको याद होगा चौथे रनर अप भी वो रही थी। फिलहाल एक लंबे समय के बाद, 15 साल के बाद सेलेना जो हैं सिस्टर निवेदिता के किरदार के साथ ही बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक बार फिर से लौट रही हैं। हमारी तरफ से बेस्ट विशेज उन्हें।

पर बॉलीवुड ट्रिल्स में अब मौका आ चुका है, हम आपको पूछते हैं आज का बॉलीवुड सरताज सवाल, जिसका आप सभी को इंतजार होगा क्योंकि इसी सवाल का सही जवाब सबसे पहले हम तक पहुंचाकर आप बन सकते हैं आज के बॉलीवुड सरताज। और व्हाट्सएप नंबर जिस पर आप हमारे पूछे गए सवाल का सही जवाब देंगे वो है 9868107070। तो आज रणवीर सिंह का बर्थडे है, जी हाँ, 6 जुलाई 1985 को बॉर्न रणवीर सिंह, आज 41 साल के हो रहे हैं। तो क्यों ना आज उन्हीं से जुड़ा हुआ कोई सवाल पूछते हैं। रणवीर सिंह की बॉलीवुड इंडस्ट्री में डेब्यू फिल्म का नाम बताइए। जी हाँ, हमें बताइए आप कि रणवीर सिंह की बॉलीवुड इंडस्ट्री में किस फिल्म के साथ शुरुआत हुई थी। हिंट आपको ये दे देते हैं कि फिल्म जो है 2010 में रिलीज हुई थी। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9868107070। बताइए हमें और बन जाइए आज का बॉलीवुड सरताज।

0: है बदल। जो कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

बॉलीवुड ट्रेल सुन रहे हैं आप आकाशवाणी रेनबो पर 102.6 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर या फिर न्यूज ऑन एयर ऐप या वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देश या दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो आप जुड़े रह सकते हैं आकाशवाणी रेनबो से। और बॉलीवुड ट्रेल्स में अब मौका आ चुका है जब हम आज का बॉलीवुड सरताज कौन बनने वाला है ये अनाउंस करने वाले हैं। हमने आपसे सवाल पूछा था कि रणवीर सिंह जिनका आज बर्थडे है उनकी बॉलीवुड की डेब्यू फिल्म का नाम क्या है। ये फिल्म 2010 में रिलीज हुई थी। आप में से बहुत से लोगों ने इस सवाल का सही जवाब दिया है लेकिन आज के प्रोग्राम में सबसे पहले इस सवाल का सही जवाब बताकर बॉलीवुड सरताज बन रहे हैं कौन बताते हैं। जी हाँ, प्रवीण चौहान साहब खारगांव एमपी से उन्होंने इस सवाल का सही जवाब हमें पहुंचाया है। 2010 में बैंड बाजा बारात फिल्म के साथ रणवीर सिंह ने बॉलीवुड इंडस्ट्री में डेब्यू किया था। बहुत बहुत बधाई हो प्रवीण आपको।

वैसे प्रवीण के अलावा भी बहुत से लोग हैं जिन्होंने इस सवाल का सही जवाब हम तक पहुंचाया है, आप सभी को जरूर बताना चाहेंगे। उन सभी का नाम ये है, तरुण कोहली साहब सूरज कुंड मेरठ से, सलीम मलिक साहब का भी सही जवाब हम तक आया है, ऋषु कटारिया पवन कटारिया का गिदरबगा पंजाब से, पंकज अमरावती से, नरेंद्र सोनी देवीगढ़ पटियाला से हम तक सही जवाब पहुंचा रहे हैं, फुरकान साहब का, निकिता पारेकर का पुणे से ये सही जवाब हम तक पहुंचा रही हैं, सुखलाल बाला वेस्ट बंगाल से हमसे जुड़ी हुई हैं, धर्म भाटिया जी का भी सही जवाब हम तक आया है, उमेश कुमार साहब का ये सही जवाब पहुंचा रहे हैं, सुरजीत ग्रेटर नोएडा से हम तक पहुंचे हैं, कविता देवभूमि उत्तराखंड से सही जवाब के साथ जुड़े हैं, महेंद्र प्रताप सिंह राजपुर औरंगाबाद बिहार से हमने सुन रहे प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं, प्रमेद कुमार सिंह साहब, परमिंदर कुमार सिंह साहब, सुखविंदर साहब सुखालाल नगर भटिंडा से हमसे जुड़े हैं, आयुष शर्मा राजस्थान से सही जवाब देने वाले हैं, नारायण प्रधान साहब ओडिशा से ये हमसे जुड़े हैं, दानिश खतौली से, और ये सही जवाब हम तक आया है अरविंदर का दिल्ली से। आप सभी को भी बहुत बहुत बधाई, लेकिन सबसे बड़ी बधाई हम दे रहे हैं किसे, प्रवीण चौहान साहब को खारगांव एमपी से आज का बॉलीवुड सरताज बनने के लिए।

और इसी के साथ इस घंटे के बॉलीवुड रील्स के साथ मुझे यानी आकृति को दीजिए विदा. कुछ ही मिनटों में आपके साथ होंगी पूजा आनंद प्लेट कूल लेके. एक बजे रेनबो हेल्पलाइन में मैं ही आपसे दोबारा मुलाकात करूंगी. और आज रेनबो हेल्पलाइन में हम ITR यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न के बारे में बात करेंगे. हमारे एक्सपर्ट होंगे श्री मनीष मल्होत्रा जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं. और 2 बजे शालिनी खंडेलवाल के साथ रहेगा आशियाना प्रोग्राम में. और आज बात होगी जगन्नाथ रथ यात्रा के बारे में. हमारे साथ हमारे गेस्ट होंगे श्री रविन्द्रनाथ प्रधान साहब.

0: That was, of course, Bruce Springsteen with Born to Run. And thank you so much for telling us that you've been tuned in and enjoying the show and loving the music. Well, this is Akashvani FM Rainbow 102.6, musically yours. You're messaging us on our WhatsApp number 9868107070. Well, what can we say? But the fact is, if you are anywhere close by and to the radio set and you are listening to us, then do tell us, what did you do this weekend and how would you spend it? Retreating into your shell or taking a sabbatical from the world, or simply going all out and spending the time with your friends, family, and laughing it out and living it to the right hilt? Well, whatever you do, one thing is for sure, we'll be there for you 24/7, waiting for your messages, waiting for your special songs. Is me right here right now. Let's take a short break. We'll be back in just a couple of seconds. Don't go anywhere. Remember, I got loads more on the other side.
1: Mangal bhavan mangal hari dravahu sudash.
2: Shri Ram katha marmagya Dr. Kumar Vishwas ji ke saath Shri Ram Charitmanas ki bhav ras sangeet yatra sampurna Shri Ram Charitmanas सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर.
3: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल.
4: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
3: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो.
5: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ एचआर दर्ज है, आपके बेटे ने ये कार्ड किया नहीं है.
6: ठीक है,
5: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर. इसका सर देखो, जो एचआर कटा था इनके नाम से, उसका जो खर्चा हर है वो आपको डिपॉजिट करना होगा. जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा.
4: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है.
3: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है.
7: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा. ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं.
3: साइबर अपराधी एक्सटॉर्ट

0: रोशन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
1: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
0: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
1: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
0: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
1: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
0: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
1: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

0: कल जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: मैं माँ बनने वाली हूँ, बस यही चाहती हूँ कि मेरा बच्चा स्वस्थ हो।
3: स्वस्थ बच्चे के लिए गर्भावस्था में HIV और सिफिलिस की जांच करवाना बहुत जरूरी है।
2: क्या ये जांच उपलब्ध है?
4: जी हाँ, सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में HIV और सिफिलिस की जांच तथा उपचार निःशुल्क उपलब्ध है। समय पर जांच और उपचार से माँ और बच्चे दोनों को सुरक्षित रखा जा सकता है।
5: याद रखें, HIV और सिफिलिस का समय पर पता लगने से संक्रमण को बच्चे तक पहुंचने से रोका जा सकता है।
4: गर्भावस्था में HIV और सिफिलिस की जांच अवश्य करवाएं। स्वस्थ माँ, स्वस्थ शिशु, स्वस्थ परिवार।
5: अधिक जानकारी के लिए राष्ट्रीय टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 पर कॉल करें या अपने नजदीकी ICTC केंद्र से संपर्क करें।
6: हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
7: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो

0: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
1: हिमालय की गोद से लेकर
2: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
1: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
2: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
1: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
2: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
1: तो सुनना ना भूलें
2: रेनबो डेस्टिनेशंस
1: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
0: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।
3: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग। सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

0: वाणी आकाशवाणी
1: रेनबो हेल्पलाइन में आप सभी का स्वागत करती हूं। मैं आकृति खंडूरी और कहना आपसे यही चाहती हूं कि एक जिम्मेदार नागरिक वही जो अपने अधिकारों के साथ साथ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी बहुत ही अच्छे से निभाए, और इन्हीं में से एक है समय पर ITR यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न भरना। आज का रेनबो हेल्पलाइन सिर्फ सुनने के लिए नहीं है बल्कि सीखने के लिए भी है। अगर आप नौकरी करते हैं, आपका अपना कोई बिजनेस है, आप फ्रीलांसर हैं या फिर आप पहली बार ITR भरने की सोच रहे हैं तो ये प्रोग्राम आप सभी के लिए है। अपने सवालों को, अपनी क्वेरीज को साथ रखिए क्योंकि आने वाले एक घंटे में आकाशवाणी रेनबो पर रेनबो हेल्पलाइन में मैं आकृति इसी विषय पर बात करूंगी, और हमारे साथ हमारे बहुत ही खास एक्सपर्ट होंगे चार्टर्ड अकाउंटेंट मनीष मल्होत्रा साहब, जो कि इनकम टैक्स रिटर्न से रिलेटेड हर सवालों का आपके जो है जवाब देंगे। और आपके सवाल हम तक पहुंच सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर 9868107070 पर, या फिर आप हमारे टोल फ्री नंबर 1800111026 पर भी फोन कर सकते हैं, या फिर हमारे स्टूडियो की लैंडलाइन नंबर पर दिल्ली के STD कोड लगाकर यानी कि 011 लगाकर डायल कीजिए 2342108023421082 एंड 2342108082। और प्रोग्राम में सबसे पहले तो स्वागत करती हूं हमारे अपने एक्सपर्ट आज के मनीष साहब का। मनीष जी बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम में आपका।
2: बहुत बहुत शुक्रिया कृति जी शो में आमंत्रित करने के लिए।
1: और हमारे लिसनर्स के क्वेरीज जो हैं आनी शुरू होती हैं उससे पहले बहुत ही बेसिक सवाल आपसे कर लेती हूं कि ITR किसको भरना चाहिए?
2: ITR उन सभी को भरना चाहिए जो इनकम अर्न कर रहे हैं, और उसकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट जो है वो है 2,50,000। अगर आप 2,50,000 से ज्यादा सालाना किसी भी सोर्स से इनकम अर्न करते हैं तो आपको ITR फाइल करना अनिवार्य है। इसके अलावा जिनकी 2,50,000 इनकम नहीं है लेकिन किसी कारण से TDS कट गया है या रिफंड लेना चाहते हैं या अपनी भागीदारी दिखाना चाहते हैं तब भी वो फाइल कर सकते हैं।
1: ऑल राइट, सो ITR यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न से संबंधित आज सवालों के जवाब देने के लिए मनीष मल्होत्रा साहब, जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, हमारे साथ रेनबो हेल्पलाइन के स्टूडियो में हैं। आपके सवाल हम तक पहुंच सकते हैं 9868107070 पर। और मनीष आपसे तो मैं ये जानना चाहूंगी कि ITR फाइल करने के लिए

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: ताजी ताजी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त।
2: पता का चाय गजब का स्वाद।
0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
3: रेनबो हेल्पलाइन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं आकृति खंडूरी और बार बार आपसे यही कहूंगी आज कि सही जानकारी, सही समय और सही फैसला, यही है हमारी फाइनेंशियल समझदारी की पहचान। रेनबो हेल्पलाइन में आज हम बात कर रहे हैं ITR के बारे में, यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के बारे में। और इन ITR कौन भरेगा, कब भरेगा, क्यों भरेगा, कैसे भरेगा, ये सभी उलझने अगर आपकी भी हैं तो हम तक अपने सवालों को जरूर पहुंचाइए। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9868107070 और मनीष मल्होत्रा जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट है हमारे साथ स्टूडियो में है। और बहुत से सवाल हैं। एक सवाल हम तक आया है राहुल साहब का मेरठ से। मनीष ये कहते हैं कि इन्होंने जल्दबाजी में एक गलत ITR फॉर्म चुन लिया है, तो क्या इसे बाद में बदला जा सकता है?
4: देखिए ITR के अंदर धारा 139.5 है, 139.5, जिसमें आप रिटर्न को रिवाइज कर सकते हैं एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर तक। सपोज करिए आपने गलत फाइल कर दी और आपने असेसमेंट ईयर 26-27 की बात कर रहे हैं, तो मार्च 27 तक आप उसको रिवाइज कर सकते हैं। लेकिन जैसा आपने कहा कि फॉर्म ही गलत भर दिया है, फॉर्म अगर आपको चेंज करना है तो आपको रेक्टिफिकेशन मोड लेना होगा, क्योंकि आप सेम फॉर्म को रिवाइज कर सकते हैं। फॉर्म चेंज करना है तो आपको रिटर्न को रेक्टिफाई करना होगा, वो प्रोविजन भी उसके अंदर है। आप जाएंगे और रेक्टिफिकेशन पे क्लिक करेंगे तो आपका काम हो जाएगा।
3: जी जी। कविता दिल्ली से कहती हैं कि इनकी कंपनी ने अभी तक इनको फॉर्म 16 नहीं दिया है और लास्ट डेट जो है अब इसी महीने है, तो मैं क्या करूं?
4: कविता जी कंपनी से ज्यादा प्रोएक्टिव है मुझे लगता है। नहीं ठीक है, देखिए एक टैक्स पेयर का अवेयर होना भी उतना ही जरूरी है जितना किसी और व्यक्ति का देश में जो काम कर रहे हैं। और 31 जुलाई है, ये स्वाभाविक है कि नजदीक है डेट और कई सारे प्लान होते हैं या डिले नहीं करना चाहता कोई भी, तो रिटर्न टाइम से भरना चाहता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कंपनी ने नहीं दिया और उसके कई रीजन कंपनी के पास हो सकते हैं। ऐसे में करना क्या है कि अगर आप श्योर है कितना टीडीएस कटा है, आप इनकम टैक्स की साइट पे जाइए, फॉर्म 26AS और AIS चेक कर लीजिए। अगर टीडीएस मैच हो रहा है तब भी आप क्लेम कर सकते हैं। प्रॉब्लम तब आएगी जब टीडीएस जमा नहीं होगा या कोई डिफरेंस आ रहा है, उस केस में आपको कंपनी से बात करनी पड़ेगी। फिर भी मान लीजिए 31 जुलाई तक नहीं हो पाता, कंपनी नहीं कर पाती, तो आप अपने हिसाब से कैलकुलेट करके रिटर्न फाइल कीजिए और जब चेंज होगा तो आप उसको रिवाइज कर लीजिए, अदरवाइज आप रिवाइज का मौका भी खो देंगे।
3: ओके। और पूनम नोएडा से हम तक मैसेज भेज रही है कि इनका कहना है कि पहली बार ITR भर रही हूं और घबराहट भी हो रही है, तो आखिरी तारीख से पहले किन बातों को एक बार मैं फिर से जांच लूं?
4: पूनम जी सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप एक टैक्स पेयर बनने वाली हैं और टैक्स पेयर बनने की शुभकामनाएं तो आपकी बनती है, और साथ ही साथ शुभकामनाएं इसलिए भी क्योंकि आप देश के हित में, देश निर्माण में सहयोग करना चाहती हैं। पहली बार आप भर रही हैं, डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सिंपल फॉर्म्स हैं, ऑनलाइन फॉर्म्स हैं, ई फॉर्म्स हैं। आप incometaxindia.gov.in पे जाएंगे, आप गूगल पे सर्च करेंगे या किसी और सर्च इंजन पे सर्च करेंगे इनकम टैक्स फाइलिंग, आप आधिकारिक वेबसाइट पे जाइए, किसी सॉफ्टवेयर या उस पे नहीं जाइए। सिंपल फॉर्म्स हैं, आप अपना स्टेटस उसमें चेक करिए, AIS चेक करिए, TIS चेक करिए, जो जरूरी दस्तावेज है वो अपने पास रखिए और सही जानकारी आप उसमें भरिए। इजी है, आप इजीली भर पाएंगे।
3: ओके। और अतुल का धर्मशाला हिमाचल प्रदेश से हम तक मैसेज आया है, ये कहते हैं आई हैव फाइल्ड इन ITR 1 सैलरीड ऑन 18th पे और 30-45 दिन हो गए का साइकिल कंप्लीट हो गया, लेकिन स्टिल इट्स शोइंग ITR प्रोसेसिंग ऑन पोर्टल, तो हाउ मेनी डेज विल इट फर्दर टेक टू प्रोसेस?
4: नया जो पोर्टल है वो जल्दी, अतुल जी जल्दी हो जाना चाहिए, प्रोसेस जल्दी हो जाना चाहिए। कुछ केसेस में हमने देखा है विदिन 24 आवर्स रिफंड भी आ गए प्रोसेसिंग के बाद।
3: अच्छा।
4: लेकिन ये एक साइकिल है, आपने अपना काम कर दिया, आपने अपना दायित्व निभा दिया, अब आप वेट कीजिए, बहुत जल्द उम्मीद है कि रिटर्न प्रोसेस हो जाएंगी। ऑलरेडी

0: प्रोसेसिंग स्टार्ट हो चुकी है, ये सॉफ्टवेयर वाइज है और आपके वार्ड वाइज है, किसी वार्ड में ज्यादा लोड होगा तो वहां पे डिले हो रहा होगा, जनरली 30 से 40 दिन 50 दिन में ये प्रोसेस हो जाती है।
1: जी जी, और मनीष एक सवाल मेरा है कि आईटीआर फाइल में एक कोई नया एक्ट आया है, ये क्या है?
0: बहुत अच्छा किया आकृति जी आपने ये सवाल पूछ लिया, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है और इस एक्ट की खासियत भी मैं आपको बताने वाला हूँ। इनकम टैक्स एक्ट 1961 हम जानते हैं जो चला आ रहा था, अब ये इनकम टैक्स एक्ट 2025 एक नया एक्ट आ गया है। इसमें सिंप्लीफिकेशन है, इसमें सेक्शंस को कम कर दिया गया है, जो 819 के करीब सेक्शंस हुआ करते थे उसे घटाकर 536 सेक्शंस कर दिए गए हैं, सिंप्लीफाई कर दिया है। सबसे बड़ा एक एग्जांपल देता हूं, अभी तक हम ये कन्फ्यूजन रहते थे, अगर मैंने कहा कि 26-27 की आईटीआर फाइल कर दो तो कन्फ्यूजन ये थी कि असेसमेंट ईयर की बात हो रही है या फाइनेंशियल ईयर की बात हो रही है। तो ये मेजर चेंज है, इसको हटा के सिंपल टैक्स ईयर एक नया टर्म दे दिया गया है, नए फॉर्म्स लाए गए हैं, जो 26 फॉर्म की हम बात कर रहे हैं या फॉर्म 16 की हम बात कर रहे हैं उनके नाम चेंज हुए हैं और उनको सिंप्लीफाई कर दिया है। जैसे 26 ईयर सब फॉर्म नंबर 168 हो चुका है, फॉर्म नंबर 16 जो हमें मिला करता था उसे फॉर्म नंबर 130 कहते हैं। इंपॉर्टेंट फॉर्म में एक बता रहा हूं, अभी तक आप फॉर्म 15G और 15H बैंक में दिया करते थे, जिनकी FD पे TDS कट रहा है या इंटरेस्ट पे TDS कट रहा है वो बैंक को फॉर्म 15G और 15H दिया करते थे, लेकिन इस वर्ष से आपको 15GH नहीं देना, फॉर्म नंबर 121 देना है, क्योंकि ये इनकम टैक्स एक्ट 25 के अकॉर्डिंग है और ये एक्ट लागू है 1 अप्रैल 2026 से होने वाली सभी ट्रांजैक्शन पे।
1: ओके, सो इनकम टैक्स से रिलेटेड, इनकम टैक्स रिटर्न से रिलेटेड कोई भी आपके सवाल आज जरूर उनके जवाब जान सकते हैं। मनीष मल्होत्रा साहब जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट है रेनबो हेल्पलाइन के स्टूडियो में आज हमारे साथ पूरे 2 बजे तक हैं। आप अपने सवालों को हम तक पहुंचा सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर 9868107070 पर।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी,

0: पर जो कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
3: रेनबो हेल्पलाइन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूं। मैं आकृति खंडूरी और कहना आपसे यही चाहती हूं कि आज की कमाई कल की सुरक्षा है। जी हां, कमाना जरूरी है लेकिन अपनी उस कमाई का रिकॉर्ड रखना उससे भी ज्यादा जरूरी है और इसी काम को आसान करता है ITR यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न। रेनबो हेल्पलाइन में आज बात हो रही है ITR से रिलेटेड। कोई भी आपके सवाल जो है हम तक पहुंच सकते हैं, पहुंच भी रहे हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9868107070 और हमारे आज के खास एक्सपर्ट मनीष मल्होत्रा साहब जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट है आपके हर सवाल का जवाब दे रहे हैं। फिलहाल रोहित का ये मैसेज हम तक आया है गाजियाबाद से और ये कहते हैं कि मैं एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता हूं। इनफैक्ट इन्होंने पिछले साल जो है नई नौकरी ज्वाइन की है, बीच में ही कंपनी बदली है। तो मनीष ये कहते हैं कि ITR भरते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना होगा?
4: देखिए, ये प्रॉब्लम देखी है मैंने अक्सर। मान लीजिए 12 लाख की टैक्स एग्जम्पशन की लिमिट है और एक एम्प्लॉयर के पास वो जॉब कर रहा है और ड्यूरिंग द ईयर वो जॉब छोड़ देता है, एम्प्लॉयर ने TDS डिडक्ट नहीं किया, नई जगह पे आप जाते हैं, आप रिपोर्ट करना भूल जाते हैं पिछली सैलरी, या आप रिपोर्ट करते हैं एम्प्लॉयर का जो विभाग है अकाउंटिंग डिपार्टमेंट है वो उसे कंसिडर करना भूल जाता है, तो आपकी टैक्स कैलकुलेशन उस अकॉर्डिंग नहीं बनती जो बननी चाहिए। शायद रोहित जी का यही प्रश्न है, मिड में इन्होंने जॉब चेंज की है। अगर दूसरी कंपनी ने फॉर्म 16 में आपकी पिछली इनकम कंसीडर कर ली है, टेक उसमें ले लिया है, तो आप उसके अकॉर्डिंग भर सकते हैं। अगर नहीं लिया तो दोनों फॉर्म 16 को आप कंबाइन करके भी भर सकते हैं। आप एक चीज समझ लीजिए कि फॉर्म 16 फाइनल नहीं है, फाइनल वो है जो आप रिटर्न में डाल रहे हैं। अगर कोई इनकम वहां छूट गई है तो आपके पास मौका है वो सारी इनकम लेने का, वो सारी डिटेल्स डालने का जो पहले मिस हो चुकी है, इसी को रिटर्न कहते हैं। ये आप खुद साइन करते हैं, जो फॉर्म 16 है वो आपके एम्प्लॉयर ने साइन किया है।
3: जी जी, नेहा का दिल्ली से मैसेज आया है और ये कहती हैं कि ये ट्यूशन लेती हैं और इनकी जो सैलरी होती है वो टैक्स के दायरे में नहीं आती है, तो क्या फिर भी इनको ITR भरने का कोई फायदा है?
4: देखिए, ट्यूशन आप चाहे होम ट्यूशन लेते हैं, ऑनलाइन लेते हैं या किसी भी मोड से लेते हैं, ये एक बिजनेस और प्रोफेशन में कंसीडर किया जाता है। इनकम टैक्स में एक सेक्शन है 44ADA, अगर क्योंकि आप प्रोफेशनल हैं आपको अपनी कुल रिसीट का 50% जो है आपको कंसीडर करना ही होगा अगर आप प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन में जाना चाहते हैं। तो अब टैक्स फाइलिंग की लिमिट जो आपने डिसाइड करनी है, अगर आपकी इनकम की मैं बात कर रहा हूं, अगर 2,50,000 से ज्यादा हो रही है तो आपको फाइल करना है और आपको ITR का जो फॉर्म लेना है ITR 4 लेना है। अगर आपकी इनकम उससे कम है टैक्सेबल इनकम तो आपको रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी बिजनेस के केस में, प्रिजम्प्टिव के केस में ये सिंपल फॉर्म है ITR 4, आप उसको भरें और प्रेफर करें, आप उसमें सारी जानकारी दे दें, 44ADA में आप उसको फाइल कर सकते हैं।
3: जी जी, और एक और सवाल है राकेश यादव साहब का दिल्ली से और ये कहते हैं कि मैं एक छोटा सा दुकानदार हूं और मेरी आमदनी हर महीने अलग अलग रहती है, तो क्या मेरे लिए भी ITR भरना जरूरी है?
4: जी राकेश जी,

ETR उन सभी लोगों को भरनी है जिनकी रिसीट जो है, जो टैक्सेबल इनकम जो है, वो 2,50,000 से ज्यादा है। अब वो किसी भी सोर्स से हो, किसी भी मोड में हो, किसी भी टेन्योर में हो, आप एक महीने में भी अर्न कर सकते हैं, एक साल में भी अर्न कर सकते हैं। इसीलिए हमने टैक्स ईयर जो नया कॉन्सेप्ट है, वो पहले जो प्रीवियस ईयर का कॉन्सेप्ट आता था, जो 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 को खत्म हुआ है, उस पूरे साल की आपको इनकम लेनी है, चाहे वो एक महीने में आई। कई बार होता है ना, सीजनल बिजनेस होते हैं, 2 महीने काम नहीं है, बाकी महीने काम है, तो आपको साल भर की इनकम को लेना है। अगर वो टैक्स लिमिट्स के दायरे से ऊपर है तो रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। अब साथ में एक चीज क्लियर कर दूं, शायद हो सकता है किसी को कंफ्यूजन आ रही हो कि 12 लाख तक तो टैक्स नहीं था, मैं 2.5 लाख की बात क्यों कर रहा हूं। 2.5 लाख रिटर्न फाइलिंग की लिमिट है, लेकिन आपको टैक्स में जो रिबेट मिल रही है 87A के अंदर, वो 12 लाख तक पे मिल रही है। 12 लाख तक की अगर आप इनकम अर्न कर रहे हैं तो आपको टैक्स नहीं लगेगा, तो इसलिए फाइल जरूर कीजिए, जो आपका दायित्व है। और राकेश जी ने जो प्रश्न किया, क्योंकि ये बिजनेस कर रहे हैं, ट्रेडिंग में है, तो

0: अगर आप इनकम अर्न कर रहे हैं तो आपको टैक्स नहीं लगेगा, तो इसलिए फाइल जरूर कीजिए जो आपका दायित्व है। और राकेश जी ने जो प्रश्न किया, क्योंकि ये बिजनेस कर रहे हैं, ट्रेडिंग में है, तो इनके लिए जो डेट है वो है 31 अगस्त, ना कि 31 जुलाई इस साल से।
1: ओके, एक और मैसेज हम तक मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से आया है जोया का, और इनका कहना है कि लॉयर्स इन दिल्ली डोंट गिव द इनवॉइस फॉर देयर फी, हाउ दे गेट ट्रैक्ड, हाउ मच डिड दे अर्न ड्यूरिंग द होल ईयर एंड हाउ मच दे आर सपोज टू पे टैक्स। तो कुछ कहेंगे मनीष इसके बारे में?
0: नहीं, अच्छा क्वेश्चन है, और नोट अबाउट लॉयर्स ओनली, एवरी वन हु प्रोवाइड सर्विस दे मस्ट नीड टू इशू एन इनवॉइस। इन्होंने पूछा कि वो नहीं दे रहे, आप उनको ऑनलाइन मोड से पेमेंट कीजिए, आपको इनवॉइस देंगे। और कोई भी हो, चाहे लॉयर हो चाहे कोई भी हो, आप अगर पेमेंट कर रहे हैं, अगर आप उसको कैश में करेंगे तो वो देने वाले की भी गलती है और लेने वाले की भी गलती है। साथ ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने प्रोविजंस बना रखे हैं कि किसी एक व्यक्ति से 2 लाख से ज्यादा आप कैश नहीं ले सकते। अगर आप सर्विस प्रोवाइडर भी हैं, अगर वो सुन रहे हैं, 2 लाख से ज्यादा अगर सिंगल ट्रांजेक्शन पे या सिंगल इवेंट से रिलेटेड सिंगल पर्सन से आप लेते हैं तो वो टैक्स के रडार में आ जाता है और वो टैक्स चोरी माना जाता है। तो सर्विस देने वाले को भी बचना चाहिए और जो सर्विस ले रहे हैं उनको भी बचना चाहिए इन चीजों से। तो आप अगर बैंक से पेमेंट करेंगे तो फिर आपकी हेडेक नहीं है, इनवाइस नहीं दे रहे, तो मैं तो यही कहना चाहूंगा उस सर्विस प्रोवाइडर को आप बदलिए।
1: बिल्कुल सही सलाह दी है, जो भी करना है कानून के दायरे में करना है। ये सवाल आया है तनुज वाशने साहब का, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से। इससे मिलता जुलता जवाब वैसे आप थोड़ी देर पहले दे चुके हैं। तो एक तो इनका सवाल यह है कि मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर कोई टैक्स पेयर जिसका किसी भी साल में टैक्स नहीं बनता या जमा नहीं होता तो क्या उनको आईटीआर फाइल करना चाहिए या नहीं?
0: देखिए, आईटीआर टैक्स मैंडेटरी, मैंने जैसे बताया 2.5 लाख की लिमिट से ज्यादा पे आपको सेक्शन 139(1) के अंदर फाइल करना होता है। लेकिन उसके बाद भी कई कारण होते हैं जो लोग टैक्स फाइलिंग करना चाहते हैं। टैक्स बनने से नहीं, वो इसलिए फाइल करना चाहते हैं, एक रिकॉर्ड मेंटेन करना चाह रहे हैं कि जितना भी वो अर्न किया फाइल कर लें। कुछ केसेस में रिफंड बनता है तब भी वो फाइल करना चाहते हैं। कई बार हम कार लोन या बिजनेस लोन अप्लाई करते हैं, मुद्रा कार्ड अप्लाई करते हैं, तो बैंक जनरली हमसे आईटीआर की कॉपी मांगता है। तो उस वजह से भी आप आईटीआर फाइल कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, आपके पास एक डेटाबेस होगा, आप अपनी इनकम को शो कर पाएंगे। टैक्स नहीं लगना, वो टैक्स स्लैब्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो आपका, उम्मीद करता हूं आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। साथ ही आप शायद
1: एक और सवाल पूछ रहे हैं। इन्होंने कहा है कि एक बार आईटीआर फाइल कर दी तो क्या हर बार रिटर्न भरना अनिवार्य है?
0: हर असेसमेंट ईयर अलग है, जो आगे से टैक्स ईयर के नाम से जाना जाएगा। जिस साल आपकी इनकम है आप उसी साल फाइल करें, अगर आप चाहते हैं। देखिए, इसमें दिक्कत क्या होती है, लोग डरते क्यों हैं, जो आपका प्रश्न है वो बिल्कुल वाजिब है। डरते इसलिए हैं क्योंकि जो ट्रेडर्स होते हैं, बिजनेस होते हैं, वो ऐसा तो नहीं कि एकदम उनकी रिटर्न इनकम खत्म हो जाएगी या सेल डाउन हो जाएगी जब तक बिजनेस शट डाउन ना किया हो। तो इस वजह से स्क्रूटनी में आने के चांसेस हो जाते हैं अगर वेरिएशन जो है पिछली बार के टर्नओवर से 20% से ज्यादा आ जाता है तो। लेकिन उसमें आप अगर जेन्युइन है और आपका वास्तव में इनकम नहीं है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, ये डरना सिर्फ टैक्स एवेडर को है।
1: ओके, और पैंथर तोमर साहब ने किशनगंज दिल्ली से सवाल पूछा है। यूं तो आप बता चुके हैं लेकिन एक बार फिर ये जानना चाहते हैं कि न्यू टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम क्या है और इसमें से सबसे बेहतर का चुनाव कैसे किया जाए।
0: देखिए, आप दोनों कैलकुलेशन कर सकते हैं लेकिन इस वर्ष से 90% से ज्यादा रिटर्न्स जो मैं अपने सामने देख रहा हूं वो न्यू टैक्स रिजीम में ही भरी जा रही हैं। उसका फायदा भी हो रहा है क्योंकि जो पहले 7 लाख की डिडक्शन होती थी, 7 लाख तक टैक्स नहीं लगता था, अब वो 12 लाख की छूट आ गई है। और आप ATC और बाकी डिडक्शन को मिला भी लेंगे तब भी वो 4 लाख का जो 7 और 5 लाख का जो गैप है वो कवर नहीं कर पाती। तो न्यू रिजीम में पिछले बजट में कोई ज्यादा चेंजेस नहीं हुए थे, ओल्ड रिजीम में, माफ कीजिए, न्यू रिजिम में आपको बेनिफिट मिलेगा, 12 लाख तक टैक्स नहीं लगेगा। अगर आप कंपेयर भी करेंगे, आपको एक ही कंडीशन में फायदा हो सकता है ओल्ड रिजिम में, अगर आपके पास हाउसिंग लोन है, आपके पास ATC की 1.5 लाख की लिमिट पूरी हो रही है, तब भी आप कैलकुलेट करके देखिए आप, या फिर आपके पास सेट ऑफ लॉसेज जो है, कैरी फॉरवर्ड लॉसेज है, उस केस में ही आपको वहां पर फायदा हो सकता है ओल्ड रिजिम में, अदरवाइज आपको न्यू स्कीम में ही जाना चाहिए। आप दोनों को इजिली कंपेयर कर सकते हैं। साथ ही ये बता दूं कि ओल्ड रिजीम जो है अब वो बाय डिफॉल्ट वो रिजीम नहीं है। अगर आप फर्स्ट टाइम टैक्स पेयर हैं या आप टैक्स लास्ट टाइम आपने कुछ और ओप्ट नहीं किया था तो डिफॉल्ट जो रिजीम है वो न्यू है। अगर आप उसको चेंज करना चाहते हैं और आप बिजनेस करते हैं तो आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा, फॉर्म नंबर 10। तो आप उस फॉर्म को भर के, 10 IEA है फॉर्म, उसको आप भरेंगे तो आप रिजीम चेंज कर सकते हैं।
1: जी, थैंक यू वेरी मच। और इनकम टैक्स

रिटर्न्स रिलेटेड, चाहे छोटे सवाल हैं या बड़े सवाल, हर सवाल का जवाब आपको मिलेगा। आज रेनबो हेल्पलाइन में इसी विषय पर बात हो रही है और हमारे एक्सपर्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट मनीष मल्होत्रा साहब हमारे साथ हैं और आपके सवाल लगातार हम तक पहुंच रहे हैं 9868107070 पर।

0: रेनबो हेल्पलाइन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूं मैं आकृति खंडूरी और कह रहे आपसे यही हूं मैं कि भाई इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की महीना आ चुका है 31 जुलाई है सैलरीड लोगों के लिए और बिजनेस लोगों के लिए अगस्त का आखिरी दिन है और हमेशा टाल जाते हैं ना आप सोचते हैं क्या इस बार मैं टाइम से जरूर फाइल करूंगा लेकिन फिर देरी हो ही जाती है लेकिन देर ना कीजिए क्योंकि यही हमारी फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग एंड स्मार्ट प्लानिंग दोनों का आईना है बिल्कुल मिरर इमेज है रेनबो हेल्पलाइन में इसीलिए हम बात कर रहे हैं महीने के पहले हफ्ते में ही इनकम टैक्स रिटर्न से रिलेटेड आपके सारे सवालों का जवाब देने के लिए हमने आमंत्रित किया है अपने एक्सपर्ट मनीष मल्होत्रा साहब को जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और हमारे व्हाट्सएप नंबर 9868107070 पर आपके सवाल हम तक आ रहे हैं। ये सवाल आया है अभिषेक जैन साहब का नोएडा से और इनका कहना है कि मैंने शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है तो अब ये जानना चाहते हैं मनीष कि क्या इसकी जानकारी भी मुझे आईटीआर में देनी होगी।
1: जी, आईटीआर में इनकम के 5 सोर्स हैं और ये सोर्स भी उनमें से एक है। आप कहीं से भी आय अर्न करें, आप बच नहीं सकते, आपको रिपोर्ट करना है। आपने म्यूचुअल फंड की बात की क्योंकि हम देख रहे हैं पिछले कई समय से म्यूचुअल फंड सही है, तो सही है तो उसकी जानकारी देना भी सही है। और बता देता हूं, म्यूचुअल फंड या जो इक्विटी में ट्रेड करते हैं या फ्यूचर एंड ऑप्शन में करते हैं, मैं सबके लिए बता देता हूं। देखिए, म्यूचुअल फंड में आप सेल परचेज करते हैं और आपको गेन होता है लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म मतलब आपने एक साल से ज्यादा रखा है, तो 1,25,000 तक का गेन आपके लिए एग्जम्प्ट होता है, वो आपको रिपोर्ट कर देना चाहिए। ये तो रही म्यूचुअल फंड वालों की बात। अब आते हैं शेयर मार्केट में, जो इक्विटी में खुद से म्यूचुअल फंड ना लेकर खुद से डील करते हैं, वो शेयर्स लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म हो सकते हैं।

0: लॉन्ग टर्म है तो लॉन्ग टर्म 24 महीने से ज्यादा है तो उसके हिसाब से टैक्स लगेगा, शॉर्ट टर्म है तो शॉर्ट टर्म पे फ्लैट रेट पे टैक्स लगता है। और बात करूं फ्यूचर एंड ऑप्शन या जो ट्रेडिंग करते हैं, इंट्राडे करते हैं, मतलब इंट्राडे सुबह शेयर लिया और मार्केट क्लोज होने से पहले पहले बेच दिया, इंट्राडे पूरी तरह से स्पेकुलेशन एक्टिविटी है, उसमें इनकम पे सीधा सीधा आपको स्पेकुलेशन के हिसाब से टैक्स लगता है, उसे बिजनेस नहीं माना जाता, उसे नॉर्मल ट्रेडिंग नहीं माना जाता। लेकिन अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन करते हैं तो ध्यान रखिए वो स्पेकुलेशन एक्टिविटी नहीं है, वो आपका एक नॉर्मल बिजनेस की तरह है, उसमें भी आपको बुक्स बनानी पड़ेगी, उसी के अकॉर्डिंग आपको ITR फाइल करनी होगी जो ITR 3 है। आपसे बुक्स मांगी जा सकती है, आपकी फ्यूचर एंड ऑप्शन की टर्नओवर अगर 10 करोड़ से ज्यादा है तो आपको ऑडिट भी कराना पड़ सकता है। तो ध्यान रखें फ्यूचर एंड ऑप्शन अगर आप करते हैं, आप इक्विटी में ट्रेड करते हैं या म्यूचुअल फंड करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उसकी सही जानकारी ITR में जरूर दें, अदरवाइज आपको टैक्स के नोटिस आ सकते हैं।
1: ओके और विकास चंडीगढ़ से कह रहे हैं कि मैंने होम लोन लिया हुआ है तो क्या ITR भरते हुए मुझे कोई टैक्स बेनिफिट मिलेगा?
0: अगर आप ओल्ड रिजीम में, जैसे अभी पीछे भी एक प्रश्न आया था ओल्ड रिजीम वर्सेस न्यू रिजीम में, अगर आप ओल्ड रिजीम में हैं तो आपको बेनिफिट मिलेगा, ATC में भी मिलेगा प्रिंसिपल रिपेमेंट का, और आप जो हाउसिंग इनकम, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम दिखाते हैं जिस हाउस के अगेंस्ट आपने लिया हुआ है, उसमें भी आपको अदर देन स्टैंडर्ड डिडक्शन या आप एडिशनल क्लेम कर सकते हैं 2 लाख तक का।
1: ओके निधि सक्सेना का कानपुर से मैसेज आया है, वो कहती हैं कि इस साल मैंने नौकरी छोड़ दी है और अब मेरा सोर्स ऑफ इनकम कुछ भी नहीं है, तो क्या फिर भी मुझे ITR भरना होगा?
0: अगर उस साल की टोटल इनकम, जैसा मैंने कहा, अगर वो 2.5 लाख से ज्यादा है तो आपको फाइल करना होगा।
1: एक सवाल राजीव मल्होत्रा साहब का आया है गुरुग्राम से, और ये कहते हैं कि मैं अपने पेरेंट्स की ट्रीटमेंट पर काफी पैसे खर्च कर रहा हूं, क्या ऐसा कुछ प्रोविजन है कि मुझे टैक्स में छूट मिले?
0: देखिए नए प्रोविजन, नए रजीम में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है, पहले रजीम में होता था, लेकिन अगर आप उसका बेनिफिट लेंगे भी जो आपका 80U हुआ करता था या सेक्शन 80 की हम बात कर रहे हैं, 80C के अलावा जो हेल्थ के ऊपर बेनिफिट मिला करते थे, वो बेनिफिट कुल मिलाकर भी उतने नहीं हो पा रहे जो न्यू रिजीम के पास। इसका मतलब यह है कि गवर्नमेंट चाहती है कि पेपर वर्क कम हो, आप न्यू टैक्स रिजीम के जाए, तो अगर आप न्यू रिजीम की बात करेंगे तो वहां बेनिफिट नहीं मिलेगा अगर मैं समराइज करूं तो, और ओल्ड स्कीम में आपको बेनिफिट मिलेगा, पहले की तरह ही वो मिलता रहेगा।
1: और एक है GK गुप्ता साहब का मैसेज, ये कहते हैं मैं सीनियर सिटीजन हूं, मुझे पेंशन मिलती है, क्या मेरे लिए ITR के नियम अलग हैं?
0: नहीं, नए एक्ट में और नए स्लैब में, निरीजी में, नए एक्ट तो कहना गलत होगा, नए एक्ट में भी कोई ज्यादा परिवर्तन किया नहीं गया। सीनियर सिटीजन, पहले एक टर्म होती थी सीनियर सिटीजन, सुपर सीनियर सिटीजन, अलग अलग स्लैब हुआ करते थे, अब ऐसा नहीं है, कोई अलग बेनिफिट या कोई अलग फायदा नहीं है, सभी के लिए, देश की बहुत बड़ी जनसंख्या जो है वो कवर हो जाती है, टैक्स पेयर्स का जो नंबर है वो कवर हो जाता है वो 12 लाख की लिमिट में, तो सभी के लिए 12 लाख की जो छूट है वो मान्य है, मुझे लगता है कि इसके अलावा कोई छूट है नहीं।
1: ओके तो इनकम टैक्स से रिलेटेड कोई भी सवाल, आप सब तरह के सवाल इनफैक्ट हमें पूछ सकते हैं, मनीष मल्होत्रा साहब जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट है आपके हर सवाल का बहुत ही खूबी से जवाब दे रहे हैं, बहुत ही क्लैरिटी के साथ जवाब दे रहे हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9868107070 और रेनबो हेल्पलाइन पर आज बात हो रही है इनकम टैक्स रिटर्न से रिलेटेड हर सवालों की, हर मामलों की।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: हिमालय की गोद से लेकर
2: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
1: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
2: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
1: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
2: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
1: तो सुनना ना भूलें
2: रेनबो डेस्टिनेशंस
1: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
3: रेनबो हेल्पलाइन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूं, मैं आकृति खंडूरी, और कहना आपसे यही चाहती हूं कि ITR यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न के नाम सुनते ही क्या आपको भी ऐसा लगता है कि ये तो मुश्किल है? अगर हाँ तो आपकी यही परेशानी आज दूर हो रही है, क्योंकि आज हमारे एक्सपर्ट मनीष मल्होत्रा साहब जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, बहुत ही आसान शब्दों में आसान तरीके से हमें बता रहे हैं ITR फाइलिंग के बारे में, और आपके सवाल हम तक पहुंच रहे हैं लगातार हमारे व्हाट्सएप नंबर 9868107070 पर। और फिलहाल ये सवाल हम तक आया है सुनीता जी का, और इनका कहना है कि मेरे बच्चे विदेश से मुझे पैसा भेजते हैं तो क्या इसे भी मुझे ITR में दिखाना होगा? मनीष
4: देखिए, अगर विदेश से पैसा

0: बच्चे आपके भेज रहे हैं तो ये मैं मान के चल रहा हूँ कि उन्होंने अपनी आईटीआर में वहां पे रिपोर्ट कर दिया है। दूसरी चीज, आपको जो वो पैसा मिल रहा है एज ए मेडिकल एक्सपेंसेस मिल रहा है, लिविंग एक्सपेंसेस मिल रहा है, मेडिकल बिल्स के लिए मिल रहा है या ट्रैवल के लिए मिल रहा है, अगर वो है तो वो आपकी इनकम नहीं है। सब्जेक्ट टू देयर आर सर्टन लिमिट्स कि आप 4 लाख तक रिसीव कर सकते हैं साल में, अगर आपको एज एन इनकम मिल रहा है तो वो इनकम भी आपकी एग्जम्प्ट है, लेकिन वो इनकम रिपोर्ट होगी सेक्शन 56 में, ये गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव माना जाएगा। अब एक चीज ध्यान देना है कि जो पैसा आ रहा है आपने उसको फर्दर एफडी में लगा दिया, बच्चों से पैसा आया आपने एफडी में लगा दिया, आपने रियल एस्टेट खरीद ली या किसी भी तरह के म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट कुछ भी किया, आप इनकम के ऊपर इनकम अर्न करेंगे वो एग्जम्प्ट नहीं है, वो आप ही की टैक्सेबल होगी। जो मूल जो इनकम, जो प्रिंसिपल इनकम जो आपने बच्चों से ली थी वो एग्जम्प्ट हो जाएगी।
1: ओके ओके। एक सवाल जो है बहुत बार सुनने में आता है मनीष, की किसी की डेथ होने के केस में जो आईटीआर से संबंधित फंड्स हैं वो उनकी फैमिली वगैरह कैसे प्राप्त करें, इस केस में कई बार कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं।
0: नहीं, कई बार आपने सही कहा, कई बार सिर्फ रिफंड का इशू नहीं रहता, कई बार बिजनेस जहां कर रहे होते हैं बिजनेस ट्रांसफर करना होता है, बिजनेस की एसेट लाइबिलिटी ट्रांसफर करनी होती है, तो गलती कर जाते हैं लोग, फाइल नहीं करते रिटर्न, या फाइल करते हैं तो जो डिसीज्ड है उन्हीं के अकाउंट से कर देते हैं जो गलत है, लीगली ठीक नहीं है, किसी और के अकाउंट का एक्सेस नहीं हो सकता। लॉ में इसके लिए प्रावधान है किसने फाइल करनी है और किसकी जिम्मेदारी बनती है। पहला तो एग्जीक्यूटर, जिसका विल में नाम है अगर विल बनी हुई है, तो विल नहीं बनी हुई तो कोई भी एडल्ट चिल्ड्रन फाइल कर सकता है। अगर चिल्ड्रन ज्यादा है, डिस्प्यूट है, तो कोई भी लीगल हेयर का सर्टिफिकेट होल्ड कर रहा है या सर्वाइवल सर्टिफिकेट जो है उनमें से कोई एक मेंबर कर सकता है। करनी कैसे है फाइल, अब ये सबसे जरूरी सवाल है, क्योंकि हम उनका लॉगिन तो कर ही नहीं सकते, तो फाइल कैसे करनी है। जो भी सर्वाइवल है, एग्जीक्यूटर है, जो क्लेम कर रहा है लीगल हेयर डिसीज्ड का, उसे उसके अपने अकाउंट में लॉगिन करना है, वहां पे सर्विसेज टैब होता है, वहां पे क्लेम करना है कि मैं एक ऑथराइज पर्सन हूं, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव हूं। वहां पे आपको सारे सर्टिफिकेट डेथ सर्टिफिकेट के साथ साथ अपलोड करने हैं, आपको ग्रांट कर दी जाएगी परमिशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से रिटर्न फाइलिंग की। यही लीगल तरीका है, इसके अलावा कोई भी तरीका नहीं है।
1: जी, एक सवाल हम तक आया है स्वाति का दिल्ली से, वो कहती हैं कि अगर किसी की दो जगह से इनकम आती हो, जैसे नौकरी हो और कहीं मकान किराए पे भी दिया हुआ हो, तो इसके लिए आईटीआर कैसे भरा जाता है।
0: आपके पास मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम डिफाइन है इनकम टैक्स के अंदर, जैसे हो गया सैलरी, आपका बिजनेस, आपका हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन या अदर सोर्स। जो किसी सोर्स में नहीं आता वो अदर सोर्स में आता है। सैलरी आपने बता दिया, बिजनेस अगर आप कोई बिजनेस करते हैं, हाउस प्रॉपर्टी के अंदर आता है अगर आप मकान किराए पे देते हैं। उसके अलावा कैपिटल गेन म्यूचुअल फंड से हो, किसी सेल परचेज से हो, ज्वेलरी सेल से हो, वो सारे आते हैं। तो इसका मतलब आपके कितने भी सोर्स होंगे सबको कंबाइन करके आपको आईटीआर में फाइल करना है। हाँ, यहाँ पे ये जरूर है, अगर सैलरी से आप दूसरी जगह जा रहे हैं, बिजनेस इनकम अर्न कर रहे हैं, तो आपका फॉर्म जो है आईटीआर 1 नहीं आएगा, वो आईटीआर 3 हो जाएगा या आईटीआर 4 हो जाएगा अगर आप प्रिजम्प्टिव में है तो।
1: जी जी। और हर्षित मेरठ से कहते हैं कि अगर आईटीआर समय पर ना भर पाए तो फ्यूचर में क्या क्या दिक्कतें आ सकती है, क्या इसे लोन मिलने में भी कोई असर पड़ेगा।
0: देखिए, आईटीआर सिर्फ आप लोन लेने के लिए ना भरें, अगर नहीं भर पाए तो आपके पास लेट रिटर्न फाइल करने का भी टाइम है, जो लेट रिटर्न हम कहते हैं सेक्शन 139(4) के अंदर, वो भी मिस हो जाती है तो हमारे पास 4 साल तक का टाइम मिलता है आईटीआर यू फाइल करने का, आईटीआर अपडेटेड रिटर्न कहते हैं, वो तभी फाइल की जा सकती है, पेनल्टी के साथ फाइल हो सकती है, 5,000 तक की मैक्सिमम पेनल्टी है। जब आपका कुछ ड्यू बनता हो गवर्नमेंट की तरफ, आपका रिफंड बनता है, तब आप फाइल नहीं कर पाएंगे। अगर आप तब भी फाइल नहीं करेंगे तो डिपार्टमेंट के पास पावर है आपको नोटिस भेजने की, आपकी रिटर्न 142 सेक्शन के अंदर फाइल करवाने की। अच्छा। अगर वो फाइल कराते हैं तो ऑब्वियस है आपको कंसीलमेंट ऑफ इनकम भी माना जा सकता है, फैक्ट्स हिडन के लिए भी माना जा सकता है, तो बेटर है अगर आपको लगता है इनकम कोई छूट गई है, कोई आईटीआर फाइल होने से रह गई है, तो आप उसे फाइल कर लीजिए।
1: जी जी। श्रेया का दिल्ली से मैसेज आया है, ये कहती हैं कि ग्रेजुएशन कंप्लीट करके मैंने हाल ही में एक नौकरी शुरू की है, जॉब शुरू की है, तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ मनीष जी कि ये आईटीआर हम खुद ऑनलाइन भर सकते हैं या किसी टैक्स कंसल्टेंट की मदद लेना जरूरी होता है।
0: देखिए, ऑनलाइन भरना इजी है, सिंपल है, अगर फिर भी आपको लगता है कि कुछ इनकम ऐसी है जो आप नहीं समझ पा रहे क्योंकि कॉन्सेप्ट ज्यादा है, तो अब बिल्कुल आप टैक्स कंसल्टेंट्स की हेल्प ले सकते हैं। इनकम टैक्स की साइड में भी टैक्स रिटर्न प्रिपेयरर का डिटेल दिया हुआ है, आप उनकी भी हेल्प ले सकते हैं। अदरवाइज क्योंकि आप एक

0: हुआ है, आप आईटी को ज्यादा समझते हैं, मुझे नहीं लगता कि आप खुद से भरेंगे तो आपको कोई दिक्कत आएगी।
1: रीना कहती हैं कि आईटीआर भरने के बाद कौन से डॉक्यूमेंट संभाल के रखना चाहिए, कुछ रिसीट वगैरह होती है क्या?
0: आईटीआर भरने के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको आईटीआर वी मेल के माध्यम से भेजता है, आप लॉगिन करके भी निकाल सकते हैं। आईटीआर वी जो है एक्नॉलेजमेंट होती है, उसके साथ एक आईटीआर फॉर्म होता है जिसमें आपकी सारी जानकारी है, आप उसे संभाल लीजिए। 8 साल तक तो हमें अपने रिकॉर्ड संभाल के रखना ही चाहिए, जो लॉ भी कह रहा है, इनकम टैक्स एक्ट भी कहता है कि 8 साल 8 असेसमेंट ईयर तक आप संभाल के रखिए, तो बेटर है आप उसको संभाल के रख लीजिए।
1: ओके, और एक और सवाल आया, शायद इससे मिलता जुलता पहले भी आया था, कि मैंने आईटीआर भर दिया है, उसका स्टेटस कैसे चेक करूं, दिखाई नहीं दे रहा मुझे कि ये जमा हुआ भी है या नहीं।
0: आईटीआर आप लॉगिन करिए और उसमें जाइए इनकम टैक्स फॉर्म्स, वहां पे देखिए फाइल्ड रिटर्न्स का आपको कॉलम मिलेगा, असेसमेंट ईयर वाइज सारी डिटेल मिल जाएगी। अगर वहां पे शो नहीं हो रही तो इसका मतलब रिटर्न फाइल नहीं हुई है। अगर उसके बाद भी आपके पास एक्नॉलेजमेंट है और शो नहीं हो रही तो ये टेक्निकल एरर हो सकता है, ग्रीवांस को लिखे, वो सॉर्ट आउट इसको करेंगे।
1: ऑल राइट, सो आज बात हो रही है इनकम टैक्स रिटर्न से रिलेटेड, हर सवाल का जवाब दे रहे हैं मनीष मल्होत्रा साहब, हमारे एक्सपर्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। और अभी भी अगर आपकी कुछ क्वेरीज बची रह गई हैं, यूं तो हम डिटेल में बात कर रहे हैं आपके सवालों के माध्यम से, शायद बहुत से लोगों की जो डिलेमास हैं, कन्फ्यूजन्स हैं, वो भी क्लियर हो रहे होंगे। तो फिलहाल कितने 10 मिनट अभी और हैं बाकी प्रोग्राम में, 9868107070 पर हमें अपना सवाल भेजिए और मनीष आपके सवालों का जवाब जरूर देंगे। One more time.

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो।
1: रेनबो हेल्पलाइन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूं। मैं आकृति खंडूरी और रेनबो हेल्पलाइन में आज हम बात कर रहे हैं इनकम टैक्स रिटर्न से रिलेटेड सभी तरह के मामलों के बारे में। मनीष मल्होत्रा साहब चार्टर्ड अकाउंटेंट हमारे साथ हैं और सभी सवालों के जवाब दे रहे हैं। 9868107070 आखिरी कट की तरफ बढ़ते फिर भी कह रही हूं अभी भी कुछ सवाल बचे हैं तो भेज दीजिए हमें। फिलहाल ये आया है डॉक्टर अमित गुप्ता का कानपुर से सवाल और ये कहते हैं मैं अपना क्लिनिक चलाता हूं और मेरे जो पेशेंट्स हैं वो मुझे अमूमन जो है या तो ऑनलाइन भुगतान करते हैं मनीष या फिर मुझे वो कैश देते हैं, तो आईटीआर भरते समय अब मैं इन सभी इनकम का हिसाब जो है कैसे दिखाऊं।

0: देखिए डॉक्टर साहब को प्रणाम। और एक और जानकारी, सिर्फ आईटीआर भरना इनके लिए मैंडेटरी नहीं है, नए एक्ट में एक और प्रावधान आ गया है, इनको केस रजिस्टर भी मेंटेन करना है और 8 साल तक करना होगा। केस रजिस्टर में किससे कितना पैसा लिया, किस मोड से लिया, पेशेंट का नाम, ये डॉक्टर के पास होना चाहिए। जनरली वो रखते हैं, लेकिन अब इनकम टैक्स में इसको अनिवार्य कर दिया है। बाकी इन्होंने कहा कि कैश में भी रिसीट करते हैं और नॉन कैश में भी करते हैं, तो ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कहीं पे भी कि आप नॉन ये अदर देन डिजिटल मोड पे बिजनेस नहीं कर सकते। आप कर सकते हैं, लेकिन आपको बुक्स और सेल्स रिकॉर्ड मेंटेन करना जरूरी है। साथ ही अगर आप डॉक्टर हैं और नॉन ऑडिट केस में हैं, नॉन ऑडिट केस मतलब आपकी ग्रोस रिसीट 50 लाख से ज्यादा नहीं है, तो आप जो इन्हेंस होकर 75 लाख भी हो गई थी, तो आप टैक्स ऑडिट में नहीं आते। आप 50% तक अगर आप एग्जम्पशन लेते हैं, मतलब आप मान लीजिए 50 लाख आपने अर्न किया है, 50 लाख ग्रोस रिसीट है, और 50% 25 लाख तक अगर आप इनकम दिखाते हैं, तो आप ऑडिट केस में नहीं आते। आपको बिजनेस प्रिजम्प्टिव में आप टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग टैक्स भर सकते हैं।
1: जी जी बिल्कुल। और चलते चलते क्या कहना चाहेंगे मनीष, क्योंकि घड़ी की सुइयां बहुत तेजी से बढ़ रही हैं और जाने का समय हो रहा है।
0: चलते चलते यही कहना चाहूंगा, आईटीआर 1 और 2 वालों, सबसे पहले आपकी डेट है 31 जुलाई, उसके लिए लास्ट डेट की वेट ना करें, जल्दी से जल्दी अपनी रिटर्न फाइल कर दें। लेकिन अगर आप उसके बाद बिजनेस कर रहे हैं, तो आपके लिए 31 अगस्त डेट है, चेक कर लीजिए कि आपके सारे रिकॉर्ड मेंटेन है, सारी तैयारी आप कर लीजिए। अगर पैन नंबर नहीं है तो पैन नंबर को अभी अप्लाई कर दीजिए, एक दिन में पैन कार्ड आ जाता है, वो जरूरी दस्तावेज है आपको आईटीआर फाइल करने के लिए, एक जरूरी डॉक्यूमेंट है।
1: जी जी, थैंक यू वेरी मच मनीष फॉर बीइंग विद अस। और इसी के साथ मैं आकृति भी आपसे लेती हूँ विदा, और कहना बार बार फिर यही चाहूंगी कि आईटीआर भरना एक कानूनी प्रक्रिया ही नहीं है, आपके जिम्मेदार नागरिक होने का एक पहचान भी है, एक निशानी भी है। तो आईटीआर जरूर भरिए, समय से पहले भरिए। इसी के साथ मैं आकृति लेती हूँ विदा, नमस्कार।

0: आकाशवाणी।
1: हेलो दोस्तों, 102.6 आकाशवाणी रेनबो पर मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त आरजे शालिनी और शुरू हो चुका है आपका पसंदीदा कार्यक्रम आशियाना। दोस्तों, आप अपने परिवार के साथ कई जगह की यात्राओं पर गए होंगे, लेकिन आज मैं बात करने वाली हूँ एक बहुत ही अहम रथ यात्रा की। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की। आस्था, परम्परा और समरसता का ऐसा महापर्व जिसका इंतजार देश ही नहीं दुनिया भर के श्रद्धालु पूरे साल करते हैं। मान्यता है कि इस दिन भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ रथ पर सवार होकर भक्तों के बीच आते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं इसी यात्रा के आध्यात्मिक, सामाजिक और पारिवारिक महत्व पर, और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं श्री नीलाचल सेवा संघ के सेक्रेटरी रविन्द्रनाथ प्रधान, जो जगन्नाथ टेंपल हौज खास से जुड़े हुए हैं। प्रधान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी रेनबो के स्टूडियो में।
2: जय जगन्नाथ। मैं रवि प्रधान, जगन्नाथ मंदिर हौज खास से। तो हमारा जो यह रथ यात्रा 16 जुलाई को स्टार्ट होने वाला है, जगन्नाथ जी रथ यात्रा है दिल्ली के जो हौज खास से 79 से मंदिर जो बना था 1960 से आरंभ हुआ था। कुछ विशेष व्यक्ति जो दुर्योधन प्रधान, भमरवर प्रधान और कलाहंडी महाराजा पीके देव, तो उन्होंने प्रेरणा ली थी और स्टार्ट किया था। उनके साथ कुछ विशेष लोग जुड़े हुए थे उड़ीसा से, तो उन्होंने प्रेरणा करी और जगह लिया और ये महाप्रभु वहां से पुरी से आए और यह नॉर्थ इंडिया का प्रथम जो मंदिर है जो मतलब स्टार्ट हो गया। और ये प्रभु 67 में आ गए थे और 67 से वहाँ पे कुटिया में रहे और उसके बाद मंदिर बनना चालू हो गया 70 में, जो ग्राउंड फ्लोर बन के तैयार हो गया, तो जो उसमें भगवान जी जगन्नाथ जी को विराजमान कर दिया। तो लेकिन परंपरा है, जब तक गुंबज नहीं बन जाती है तब तक ये प्रभु का जो रिचुअल नहीं हो पाता। तो गुंबज जो है 1978 में बन के तैयार हो गया, तो तैयार हो जाने के बाद 79 में जगन्नाथ जी का प्रतिष्ठा हुआ। तो वहां से पुरी से जो जगन्नाथ पुरी है वो बहुत शिखरत्र है, तो वहां से प्रेरणा ली। तो उसके बाद 79 में उन्होंने जगन्नाथ जी का प्रतिष्ठा करा जाता है। तो प्रतिष्ठा करा जाता है तो रथ यात्रा की प्रारंभ होती है, कोई रिचुअल सब करनी पड़ती है।
1: जी तो जी, रविन्द्रनाथ जी, जैसे कि आपने बताया जगन्नाथ टेंपल हौज खास के बारे में, उसकी स्थापना के बारे में, कहीं ना कहीं ये जो रथ यात्रा है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये हमें बताती है कि ईश्वर किसी एक स्थान या वर्ग तक सीमित नहीं है, बल्कि हर भक्त के हैं। और कुछ ऐसा ही संदेश हर मंदिर, हर रथ यात्रा से हम सभी को मिलता है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि रथ यात्रा का जो आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व हम मानते हैं, किस तरीके से ये परिवार और समाज को जोड़ने वाला पर्व है?
2: ने जो जगन्नाथ जी है रथ यात्रा 79 में, थोड़ा सा पीछे जाके 79 में

0: वो इसका रिचुअल होता है। तो जगन्नाथ मंदिर जहां जहां बनता है तो पहले जगन्नाथ जी का जब प्रतिष्ठा होता है तो रथ यात्रा और महाप्रसाद का व्यवस्था करी जाती है। तो ये 79 में शुरू हो गया। तो उसके बाद ये जो प्रभु है जगन्नाथ जो है ये जगत का नाथ है
1: जी,
0: खाली हमारा नहीं है। मतलब उड़ीसा में हम भाग्यवान है, उड़ीसा में प्रभु हमारे धरती पे विराजमान है
1: जी।
0: तो इसलिए ये उन्होंने क्या है कि छल रचा है, वो जगत मतलब सृष्टि का नाथ है
1: जी।
0: तो उन्होंने प्रभु ने करा छल रचा है कि मेरा तो सब ब्रह्मांड मेरा है, तो मैं दर्शन नहीं दे पा रहा हूं। जो हमारे परंपरा के हिसाब से कई लोग नहीं जा पाते हैं मंदिर के अंदर, तो प्रभु ने छल रचा है कि भाई ये मैं छल रचा मौसी के यहां जाऊं और ये सबको दर्शन रथ के ऊपर दो। तो ओली जो प्रभु है उन्होंने छल रच के ये उसका एक रिचुअल है, वो जगन्नाथ जी तिथि के अनुसार जो स्नान पूर्णिमा होता है उस दिन बाहर आते हैं और नहाते हैं, तो उसका एक परंपरा है। तो बाहर कैसे जाएं, तो उन्होंने क्या किया है कि उसके बाद उन्होंने बाहर गए। बाहर जाने के बाद मौसी के जो मौसी के यहाँ जाते हैं तो रथ के बैठ के जगन्नाथ जी बलभद्र और सुभद्रा तीनों रथ में बैठते हैं और सुदर्शन जी भी साथ होते हैं। तो वो जाके सारे कुछ ब्रह्मांड में कोई भी वो नहीं है, तो हर आदमी वहां पे दर्शन कर सकता है और रस्सी को छू सकता है। दो अंदर नहीं जा पाता वो बड़े दंड में, ये बड़े जो पुरी में जो बड़े दंड है, तो इसलिए वही परंपरा को रखते हुए तो वहां पे जाते हैं मौसी के यहाँ। तो मौसी के यहाँ तो 9 दिन बाद उन्होंने क्या करते हैं कि वापस आते हैं, तो उलट उसको उलट रथ बोलते हैं। तो वहां 9 दिन बाद आने के बाद फिर जगन्नाथ मंदिर के पास आते हैं, तो वहां पे और भी रिचुअल 3-4 दिन का रिचुअल होता है, जो मंदिर के आने से पहले उनका सारा रिचुअल होता है
1: जी। तो रविंद्र जी, इन परंपराओं के बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन जैसा कि आपने कहा कि ये जो परंपरा है ये कहीं ना कहीं एक मौका देती है सभी समुदाय को प्रभु के दर्शन का, जिससे कि सभी को समान अवसर मिले उनके दर्शन का। तो फिलहाल हम हमारे श्रोताओं को सुनवाते हैं गीत और उसके बाद इस रथ यात्रा के महत्व पर, आध्यात्म पर चर्चा जारी रहेगी।

0: दोस्तों हम बात कर रहे थे भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की। रथ यात्रा सिर्फ एक धार्मिक परंपरा नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति की जीवंत पहचान है। जब भगवान जगन्नाथ का रथ निकलता है तो लाखों लोग जाति भाषा और क्षेत्र की सीमाओं से ऊपर उठकर एक साथ जुड़ते हैं। यही संदेश परिवारों के लिए भी है, साथ चलने का, साथ निभाने का और एक दूसरे के प्रति सेवा और सम्मान का। हमारे साथ रविन्द्रनाथ प्रधान जी जो कि सेक्रेटरी हैं श्री नीलाचल सेवा संघ के बने हुए हैं। रविन्द्र जी आपसे ये जानना चाहेंगे कि 16 जुलाई को जो विशेष आयोजन होने वाला है उसके लिए क्या कुछ विशेष तैयारियां की जा रही हैं?
1: जय जगन्नाथ। हमारा जो 16 तारीख को रथ या परंपरा के हिसाब से 16 तारीख को ये जो तिथि हम नहीं डिसाइड करते, ये परंपरा के हिसाब से तिथि डिसाइड होती है। जगन्नाथ जी का जो परंपरा है वो इसी हिसाब से इस बारी जुलाई 16 तारीख को पड़ रही है, तो उसमें हमने उसका पहले जो स्नान पूर्णिमा है वो गया 29 को, तो उसमें अणसर में जगन्नाथ जी रहते हैं, अणसर में रहते हैं, तो उसके बाद 14 जो जगन्नाथ जी का जो परंपरा है 14 को अणसर से उठ के जगन्नाथ जी सबको दर्शन देते हैं। उनका बोलते हैं नव जवन दर्शन, नो नया रूप उनका होगा,
0: नव यौवन दर्शन।
1: हाँ, नव जवन दर्शन। तो उसके बाद हमारा दो दिन बाद 14, 15, 16 को सारा रिचुअल सुबह से लेके चालू हो जाता है और उनकी जो उठाने से लेके सारे भोग नीति सारा तैयार करके कोई सारी तैयारी करनी पड़ती है
0: जी।
1: तो उसके बाद जगन्नाथ जी को क्या करते हैं कि राजा खुद छेरापौंडी करके जो रिचुअल करके तो उनको पौंडी के साथ पौंडी उसमें लाखों लोग होते हैं और पुरी में तो कई लाख 20 लाख लोग होते हैं, तो वो तो उसके साथ कलना नहीं कर सकते, लेकिन जो हौस खास मंदिर में इसका परंपरा 79 से 48 साल हो गए, उसको 5000 आदमी से शुरू हुआ था, आज 2 लाख आदमी का समागम है, तो हर आदमी धीरे धीरे धीरे धीरे उड़ीसा के लोग होते थे, फिर मतलब और भी लोग अब जी, पिछले
0: जी रविंद्र जी कहीं ना कहीं उत्तर भारत के लोगों को एक मौका मिला है रथ यात्रा के दर्शन करने का, क्योंकि कई बार इतना मुमकिन नहीं होता कि यहाँ से इतनी दूर जाया जाए, तो यहाँ दिल्ली में उत्तर भारत के लोगों के लिए एक मौका है कि वो जगन्नाथ टेम्पल में जाकर रथ यात्रा के दर्शन कर सकते हैं। और मैं जानना चाहूंगी कि यहाँ पर कितने लोगों के लिए तैयारियां की जा रही हैं कि कितने लोग, क्योंकि कई बार प्रभु के दर्शन के लिए लोग दौड़े चले आते हैं और श्रद्धालुओं का हुजूम लग जाता है, तो ऐसे में यहाँ पर कितने श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्था की जा रही है?
1: अभी इसके लिए सारे हमारे जो वॉलंटियर है हमारा ये 2-3 महीने से 3 महीने से पहले तैयारी शुरू हो जाती है। वॉलंटियर करीब 7

0: सो वॉलंटियर काम करते हैं, तो इसमें पुलिस प्रशासन, ट्रैफिक पुलिस में ट्रैफिक और पुलिस सारा इन्वॉल्वमेंट होता है और सारा लोग सहयोग करते हैं, और उसमें एनडीएमसी, एमसीडी सारा करके सारा चीज सभी लोग सहयोग करते हैं, तो साफ सफाई का व्यवस्था होती है, और उनमें मिनिमम जैसे 2 लाख लोग कंटिन्यूस होते हैं, 40,000 कांस्टेंट, 30,000 से 40,000 लोग होते हैं, उसके लिए हमारे पास पुलिस प्रशासन भी होता है और हमारे वॉलंटियर, स्पेशली हमारे वॉलंटियर को ट्रेनिंग दी जाती है, और सबके लिए फिर वो लोग सुचारू रूप से रथ को चलाएं, और रथ जो है फिर उसके बाद उनके ऊपर खाने पीने का जो बता, पानी का व्यवस्था, टॉयलेट व्यवस्था, सारा साफ सफाई का व्यवस्था, सारी चीजें हम अरेंजमेंट करते हैं और करते आ रहे हैं, और बाकी प्रभु सब हमेशा सहयोग, प्रभु भी प्रभु के पास समर्पण कर देते हैं, तो उससे हमारे को आस्था के साथ बहुत सहयोग मिलता है।
1: जी और बिल्कुल, 48 वर्षों से इस रथ यात्रा का आयोजन यहाँ दिल्ली में हो रहा है हौज खास में, और उसके लिए विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जो 16 जुलाई को विशेष आयोजन होने वाला है, तो क्या
2: सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, सुधारों, डिजिटलीकरण और पेशेवर प्रबंधन के माध्यम से सहकारिता आंदोलन विस्तार के नए चरण में प्रवेश कर रहा है। सरकार ने कहा, डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए 104 करोड़ से अधिक स्वास्थ्य कार्ड आभा से जोड़े गए। मुंबई में तेज वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त, भूस्खलन से मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर यातायात बाधित, मध्य महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में मूसलाधार वर्षा के लिए रेड अलर्ट। यूक्रेन की राजधानी कीव में रूस के बैलिस्टिक मिसाइल हमले में 10 लोगों की मौत और 46 से ज्यादा लोग घायल। फीफा विश्व कप में इंग्लैंड ने मेक्सिको को रोमांचक मुकाबले में 3-2 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई, और विंबलडन टेनिस में नोवाक जोकोविच पुरुष सिंगल्स और नाओमी ओसाका महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। श्री मोदी ने कहा कि वे राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर इंडोनेशिया जा रहे हैं। एक रिपोर्ट।
3: प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो के साथ वार्ता करेंगे और रणनीतिक भागीदारी में प्रगति की समीक्षा करेंगे। वार्ता में दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होने की उम्मीद है, जिसमें रक्षा सहयोग, व्यापार, निवेश और ऊर्जा सुरक्षा तथा सांस्कृतिक सहयोग पर खास ध्यान दिया जाएगा। जकार्ता कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण प्रधानमंत्री मोदी का भारतीय समुदाय को संबोधन होगा, जिसे लेकर पूरे देश में उत्साह है। 8 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी ऐतिहासिक प्रम्बनन मंदिर के दर्शन के लिए योग्यकर्ता जाएंगे। भारत इस यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के जीर्णोद्धार के प्रयासों में सहयोग कर रहा है, जो दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंधों को रेखांकित करता है। जकार्ता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
2: इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। उनकी यात्रा से भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक भागीदारी और मजबूत होगी। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी न्यूजीलैंड जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और मजबूत होगा। गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज कहा कि सहकारी आंदोलन सुधारों, डिजिटलीकरण और पेशेवर प्रबंधन के माध्यम से विस्तार के नए चरण में प्रवेश कर रहा है। सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर की 9 प्रमुख सहकारी समिति बनाई गई हैं।
4: सहकारिता मंत्रालय के इनिशिएटिव से कुल 9 राष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाली सहकारी समिति बनाकर देश से लेकर ग्राम तक ये 9 क्षेत्रों में सहकारिता मंत्रालय को एक माला में पिरोने का काम हमने किया है।
2: श्री शाह ने किसानों से जैविक कृषि उत्पादों का उत्पादन बढ़ाने और रासायनिक उर्वरकों तथा कीटनाशकों का उपयोग कम करने की भी अपील की। उन्होंने कहा कि सहकारिता मंत्रालय पिछले 5 वर्षों से सहकारिता के माध्यम से समृद्धि के मंत्र का पालन कर रहा है, जिससे मंत्रालय द्वारा लाखों लोगों के जीवन में बदलाव आया है। श्री शाह ने कहा कि पिछले पांच वर्षों में

0: सहकारी प्रणाली को आधुनिक पारदर्शी प्रौद्योगिकी सक्षम तथा प्रतिस्पर्धी बनाने की दिशा में सराहनीय कार्य किया गया है।
1: हमने कृषि ऋण, डेयरी, उर्वरक वितरण और ग्रामीण सेवाएं, ये सभी को प्राथमिक से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ने का काम किया है। सेकेंडरी और टर्सरी क्षेत्रों में भी उसको जोड़ने का काम किया है। भंडारण, उत्पादन, एक्सपोर्ट, जैविक उत्पादन, परंपरागत बीजों का उत्पादन, ज्यादा उत्पादन देने वाले बीजों का निर्माण, डिजिटल सेवाएं, बैंकिंग, मोबिलिटी, लॉजिस्टिक और हरित ऊर्जा, ये सबको एक माला में पिरोने का काम ये 5 साल में किया है।
0: ब्रिक्स देशों के मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक आज गुवाहाटी में शुरू हो गई है। 2 दिन की इस बैठक का आयोजन गृह मंत्रालय के अंतर्गत स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने किया है। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के महानिदेशक अनुराग गर्ग ने कहा कि ब्रिक्स के विस्तार ने मादक पदार्थों की तस्करी और मादक द्रव्यों के सेवन सहित वैश्विक चुनौतियों से निपटने की समूह की क्षमता को मजबूत किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने कहा है कि 104 करोड़ से अधिक स्वास्थ्य कार्ड, 93 करोड़ से अधिक आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता आभा से जोड़े गए हैं। ये देश की एकीकृत डिजिटल सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति है। आभा आधार कार्ड की तरह 14 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या है जो एक व्यक्ति को व्यापक स्वास्थ्य प्रणाली से सुरक्षित रूप से जोड़ती है। एक रिपोर्ट।
2: यह प्रणाली मरीजों को डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच प्रदान करती है। इस नेटवर्क के माध्यम से रोगी संपूर्ण चिकित्सा इतिहास के साथ बीमाकर्ताओं, स्वास्थ्य सुविधाओं, डॉक्टरों और अन्य सेवाओं से जुड़ सकते हैं। सरकार का लक्ष्य है कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के माध्यम से देश के सभी मरीजों और सभी स्वास्थ्य सुविधाओं को एक ही डिजिटल नेटवर्क से जोड़ा जाए। इसका उद्देश्य प्रत्येक नागरिक के लिए पूर्णतः डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड उपलब्ध कराना है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने राष्ट्रीय पात्रता और प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 की आवेदन फीस वापसी के लिए बैंक खाता विवरण अपडेट करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जुलाई कर दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में एनटीए ने बताया कि जिन उम्मीदवारों ने अपने बैंक खाता विवरण की पुष्टि कर दी है उनके लिए रिफंड प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब तक केवल 8,29,510 उम्मीदवारों ने ही अपने बैंक विवरण में सुधार या अपडेट किया है। निर्वाचन आयोग ने बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों के उपचुनावों के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। बिहार में बांकीपुर, गुजरात में मंजलपुर और मध्य प्रदेश में दतिया विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होंगे। नामांकन पत्र 13 जुलाई तक भरे जाएंगे और 14 जुलाई को नामांकन पत्रों की जांच होगी। मतदान 30 जुलाई को होगा। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल से राज्यसभा की 3 सीटों के लिए उपचुनाव की घोषणा की है। ये सीटें राज्यसभा सदस्य सुखेंदु शेखर राय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिकबराई के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। अधिसूचना कल जारी की जाएगी जबकि नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 14 जुलाई है। नामांकन पत्रों की जांच 15 जुलाई को होगी। मतदान 24 जुलाई को और मतगणना भी उस दिन होगी। पुरी में विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा की तैयारी अंतिम चरण में है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी सभी विभागों को वार्षिक उत्सव के लिए सभी व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।
3: दुनिया भर में मशहूर पुरी के रथ यात्रा जल्द ही होने वाली है। इसे देखते हुए उड़ीसा सरकार ने पुरी में इस भव्य उत्सव के सुचारू आयोजन के लिए व्यापक प्रशासनिक इंतजाम किए हैं। उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने सभी विभागों को निर्देश दिया है कि वे विभागों के बीच बेहतरीन तालमेल और हर इंतजाम को बहुत सावधानी से लागू करके रथ यात्रा का बिना किसी गड़बड़ी सुरक्षित और घटना मुक्त बनाए। आज सुबह पुरी में रथ यात्रा समन्वय समिति की आखिरी बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री मांझी ने इस सालाना रथ उत्सव को उड़ीसा के समृद्ध आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत का एक स्थायी प्रतीक बताया जो दुनिया भर से लाखों श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। उन्होंने महिला श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सम्मान पर खास जोर दिया और भीड़ प्रबंधन, कई स्तरों वाली सुरक्षा, ट्रैफिक कंट्रोल और दूसरी जरूरी नागरिक सेवाओं की तैयारियों का जायजा लिया। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।

0: इस बीच रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि इस वर्ष भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के लिए 300 से अधिक विशेष रेलगाड़ियां चलाई जाएंगी।
1: पुरी में महाप्रभु जगन्नाथ जी का रथ यात्रा का पावन पर्व है, उसमें 300 से अधिक स्पेशल ट्रेन चलाई गई और आने वाले समय में केरलम में ओनम के फेस्टिवल के उपलक्ष्य में 100 से अधिक स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी।
0: महाराष्ट्र के अधिकतर हिस्सों में लगातार वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त है। भूस्खलन से मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर यातायात बाधित है। मुंबई और कोंकण क्षेत्र में बाढ़ और भूस्खलन से इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। सड़क रेल और हवाई यातायात भी प्रभावित है। पूरे राज्य में अधिकारी हाई अलर्ट पर हैं। अधिकारियों ने लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने SDRF में स्थिति की समीक्षा की और सभी अधिकारियों को त्वरित समन्वित कार्रवाई के निर्देश दिए। मुंबई बृहन नगर पालिका की महापौर ऋतु तावड़े ने

0: स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी।
1: महाराष्ट्र के अधिकतर हिस्सों में लगातार वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त है। भूस्खलन से मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर यातायात बाधित है। मुंबई और कोंकण क्षेत्र में बाढ़ और भूस्खलन से इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। सड़क रेल और हवाई यातायात भी प्रभावित है। पूरे राज्य में अधिकारी हाई अलर्ट पर हैं। अधिकारियों ने लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने SDRF में स्थिति की समीक्षा की और सभी अधिकारियों को त्वरित समन्वित कार्रवाई के निर्देश दिए। मुंबई बृहन नगर पालिका की महापौर ऋतु तावड़े ने बताया है कि मोबाइल मैसेज के माध्यम से सरकार समय समय पर अलर्ट जारी कर रही है।
2: बहुत ही बड़ी बारिश और उसके साथ में हवा का वेग जो है और उसी के साथ में समुन्द्र में जो हाई टाइड चल रही है, ये तीनों के वजह से रेड अलर्ट लोगों को दिया जा रहा है। आधे आधे घंटे में हम लोग पूरी इन्फॉर्मेशन मुंबई करके लोगों के मैसेज में भेजने का काम कर रहे हैं। 1916 की नंबर जो है उसको कार्यान्वित किया है।
1: उधर गुजरात में पिछले 24 घंटों में मूसलाधार वर्षा हुई है, जिससे सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात क्षेत्रों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तेज बारिश के कारण अधिकारियों ने 6 प्रमुख बांधों को हाई अलर्ट पर रखा है। बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ है। मछुआरों को 9 जुलाई तक अरब सागर में न जाने की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग ने आज गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में भारी वर्षा और कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कहा है कि अगले 3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के उत्तरी अरब सागर के कुछ हिस्सों में से गुजरात, हरियाणा और पंजाब के कुछ भागों के साथ राजस्थान में आगे बढ़ने की संभावना है। वहीं आज असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, दिल्ली और पश्चिम बंगाल में तेज वर्षा की संभावना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर आज सुबह रूस के बैलिस्टिक मिसाइल हमले में 10 लोग मारे गए और 46 घायल हुए हैं। ये हमला तुर्की में होने वाले महत्वपूर्ण नाटो शिखर सम्मेलन से एक दिन पहले हुआ है, जिसमें अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शामिल होने की उम्मीद है। यूक्रेन की वायुसेना ने कहा है कि रूस ने हमले में बैलिस्टिक मिसाइलों, क्रूज मिसाइलों और ड्रोन का इस्तेमाल किया। पोदुल्स्की जिले में एक आवासीय भवन ढह गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने कल चेतावनी दी थी कि खुफिया जानकारी से संकेत मिले हैं कि रूस बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता अली खामनेई की अंतिम यात्रा राजधानी तेहरान में 2 दिवसीय सार्वजनिक अंतिम दर्शन के बाद शुरू हुई, जिसमें भारी जनसमूह उमड़ पड़ा। खामनेई और युद्ध में मारे गए उनके परिवार के अन्य सदस्यों के ताबूतों को एक ट्रक में ले जाया जा रहा है। फीफा विश्व कप में आज इंग्लैंड ने मेक्सिको को 3-2 से हरा दिया और क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर ली। ब्राजील के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी नेमार जूनियर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया है। 5 बार के विश्व चैंपियन ब्राजील की राउंड 16 में कल रात नॉर्वे से 2-1 से हार का सामना करना पड़ा। विंबलडन टेनिस में सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने रूस के रोमन सफ्यूलिन को हराकर पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर ली है। इसके साथ जोकोविच ने ऑल इंग्लैंड क्लब में अपना 106वां सिंगल्स खिताब जीता है। क्वार्टर फाइनल में जोकोविच का सामना फेलिक्स आगर एलियासिमी या एलिजांड्रो डेविडोविच फोकिना से होगा। महिला सिंगल्स में करीना मुखोवा ने अपने करियर में 3री बार विंबलडन क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है। एक अन्य मुकाबले में नाओमी ओसाका ने आरेना सबालेंका को हराकर ऑल इंग्लैंड क्लब में अपने पहले क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। समग्र राष्ट्र आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना। उन्होंने कहा, यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और मजबूत होगा। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, सुधारों, डिजिटलीकरण और पेशेवर प्रबंधन के माध्यम से सहकारिता आंदोलन विस्तार के नए चरण में प्रवेश कर रहा है। सरकार ने कहा, डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं

को बेहतर बनाने के लिए 104 करोड़ से अधिक स्वास्थ्य कार्ड आभा से जोड़े गए। मुंबई में तेज वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त। मध्य महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में मूसलाधार वर्षा के लिए रेड अलर्ट। और फीफा विश्व कप, इंग्लैंड ने मैक्सिको को रोमांचक मुकाबले में 3-2 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यह समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: रहती है, उनकी बातों को समझना और उनके साथ संवेदनशील होकर के उनकी जो समस्याएं हैं उनकी चिंता करना।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल।
0: इसके अलावा विद्यार्थियों में छोटी छोटी उपलब्धि है उसकी भी सराहना करना, उनको बीच बीच में मोटिवेट करना, अच्छा आपने बहुत अच्छा काम किया। जैसे किसी विद्यार्थी को आपने कोई असाइनमेंट दिया, कोई होमवर्क दिया, उसने करके दिखाया, अरे बहुत अच्छा किया आपने, आप तो इससे अच्छा कर सकते हो।
1: हाँ।
0: तो इस तरीके से जो छोटे छोटे जो मोटिवेशंस हैं, छोटी छोटी जो चीजें रहती हैं, इससे उनको काफी एक तरीके से ये मानिए कि उनको बड़ा मोटिवेशन मिलता है, मनोबल बढ़ता है और इस तरीके से वो और आगे इसके लिए कोशिश करते हैं। दूसरा, परामर्श की जो सेवाएं हैं उनकी जानकारी देना। हमारे पास जो काउंसलिंग सेवाएं हैं, अन्य जो संसाधन हैं, जो सहायता संसाधन हो सकते हैं उनकी भी चीजें शेयर करना, ये चीजें यहाँ उपलब्ध हैं, आप देख लीजिए, समझ लीजिए। और ये एक जो सबसे महत्वपूर्ण जो इसमें काम हो सकता है, अध्यापक का और पेरेंट्स यानी कि अभिभावक, अध्यापक और विद्यार्थी, इन तीनों के बीच में एक तारतम्य, एक बहुत अच्छा जो कनेक्शन रहे,
1: तालमेल रहे,
0: तालमेल जितना रहेगा उतना ही अच्छा रहेगा।
1: तो डॉक्टर साहब, इतनी उपयोगी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा विश्वास है कि हमारे श्रोता जरूर इससे बहुत लाभान्वित होंगे। अब एक विशेष प्रश्न पर मैं आता हूँ, और वो प्रश्न ये है कि मोबाइल फोन, सोशल मीडिया और ऑनलाइन गेम्स का बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, और इनके संतुलित उपयोग के लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे। मूल प्रश्न है इनका संतुलित उपयोग।
0: जी, आपका ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, जो संभावित नकारात्मक प्रभाव इसके हो सकते हैं, सबसे बड़ा जो चिंता और तनाव, क्योंकि लगातार तुलना करते हैं, इसमें भी क्या होता है, उनके लाइक अधिक हो गए, हमारे लाइक कम हो गए, यहाँ भी हमने तुलना कर ली,
1: ऐसा होता
0: उसके
1: है।
0: बाद हम क्या करते हैं, ऑनलाइन किसी भी चीज के ऊपर या सोशल मीडिया में कोई चीज आती है, ऑनलाइन गेम आता है, इवन ऑनलाइन गेम के अंदर तो कई तरह की बहुत सारी खतरनाक चीजें भी होती हैं। अगर आपको जानकारी हो तो जैसे ये ब्लू वेल टाइप के जो गेम थे, तो कुछ लोग क्या करते हैं कि उन ऑनलाइन गेम के माध्यम से हमारे विद्यार्थियों को चीट करने की कोशिश करते हैं, उनसे भी बचना चाहिए। दूसरा क्या होता है कि लगातार स्क्रीन को देखने से नींद आने में बाधा उत्पन्न होती है, नींद की क्वालिटी प्रभावित होती है, और क्या होता है कि हमारे जो सामाजिक अलगाव भी बढ़ता है। जैसे एक दूसरे के आमने सामने बैठ करके हम संवाद करते हैं, ऑनलाइन गेमिंग से या ऑनलाइन मोबाइल फोन के प्रयोग से या सोशल मीडिया से या ऑनलाइन बने रहने से विद्यार्थी एक दूसरे से आमने सामने बात करने से बचते हैं, और उनको वो समय नहीं मिल पाता, तो धीरे धीरे क्या होता है कि समाज से भी वो थोड़े से कट जाते हैं, अपने साथियों से अकेलापन आ जाएगा, अपने विद्यार्थियों से, साथियों से, भाई बहन से। और अक्सर आपने देखा होगा कि एक घर में अगर चार लोग हैं तो चार मोबाइल के साथ अलग अलग बैठे हैं।

0: जब वो बैठे एक ही घर में हैं,
1: हाँ।
0: तो उनको मोबाइल को किसी लिमिटेड समय के लिए रख देना चाहिए। और लिमिटेड समय का मतलब ये हुआ कि विद्यार्थियों के लिए स्क्रीन टाइम निर्धारित होना चाहिए। इसके लिए विद्यार्थी के अभिभावक और हमारे अध्यापक ये मिलकर के बातचीत कर सकते हैं कि किस कक्षा के लिए कितने घंटे का मोबाइल का बैन होना चाहिए। खास करके घर में भी बहुत छोटी छोटी चीजें, जैसे हम जब शाम को डिनर करते हैं, रात्रि भोजन जब करते हैं, उस समय भी हम कहते हैं अच्छा ठीक है मोबाइल बंद कर लीजिए, अच्छा अब आधा घंटा हम अपने घर की चर्चा करेंगे, अपने विषयों की चर्चा करेंगे, साथ में खाना खाएंगे, हम नाश्ता साथ में करेंगे। तो इस तरह के जो जो चीजें हैं उसको बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। इसके अलावा विद्यार्थियों को इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन काम के समय और कितना उपयोग करना है इस पर भी नजर रखनी चाहिए। इसके अलावा विद्यार्थियों को खेल में, संगीत में, कला में छोटी छोटी गतिविधि, जैसे मौसम के अनुसार सर्दी अधिक है तो धूप में कोई एक्टिविटी हो सकती है, गर्मी अधिक है तो घर के अंदर भी कोई एक्टिविटी हो सकती है, सुबह शाम हो सकती है, तो वो भी देख करके हम कर सकते हैं। और बच्चों को ये भी समझाएं कि जो डिजिटल लिटरेसी यानी कि डिजिटल साक्षरता है, ये सिखानी बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई बार क्या होता है कि छोटे छोटे जो मैसेज आते हैं उन मैसेज को लेकर के भी इधर उधर चीजें होती हैं या चर्चाएं होती हैं, तो उनके बारे में भी बताना चाहिए। इसके अलावा सोने से कम एक घंटा पहले जो डिजिटल स्क्रीन है, स्क्रीन को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि लंबे समय तक अगर वो डिजिटल स्क्रीन को देखेंगे तो उनको नींद आने में समस्या रहेगी और वो अच्छी नींद नहीं ले पाएंगे। परिवार के साथ मिलकर के भी हम बहुत सारे नियम तय कर सकते हैं। जैसे आपको पता है कि हमारे जो परिवेश है, हमारी जो संस्कृति है, हमारे जो संस्कार हैं, सो बहुत सारी चीज हम एक दूसरे से सीखते हैं, हम समाज से सीखते हैं, परिवार से सीखते हैं, तो इसके अंदर भी समाज और परिवार की बहुत सारी महत्वपूर्ण जो चीजें हैं वो कवर हो सकती हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: जी
1: जी। तो डॉक्टर साहब, एक और प्रश्न मेरे मन में आता है श्रोताओं की ओर से कि प्रतिस्पर्धा के इस दौर में बच्चों में हीन भावना या नकारात्मकता विकसित हो जाती है। होता यह है कि वे अपनी असफलता को स्वीकार ही नहीं कर पाते, तो हम ये जानना चाहेंगे कि बच्चों में असफलता को स्वीकार करने की क्षमता और सकारात्मक सोच कैसे विकसित की जा सकती है।
0: देखिए, कुछ जो चीजें हैं वो बड़ी महत्वपूर्ण हैं कि सबसे पहले जो बात हम कर रहे हैं कि जो हमारा विद्यार्थी है उसको किसी भी चीज के सफलता या असफलता के कोई पैरामीटर होते ही नहीं।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: किसी प्रकार का कोई पैरामीटर नहीं होता है।
1: हाँ।
0: एक विद्यार्थी हो सकता है कि पढ़ाई में थोड़ा सा कमजोर हो, स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा हो सकता है,
1: हो सकता है,
0: वही पेंटिंग में अच्छा हो सकता है, वो आर्ट में अच्छा हो सकता है, बाकी किसी अन्य विषय में अच्छा हो सकता है
1: जी।
0: तो हमें ये समझना चाहिए कि उस विद्यार्थी का अच्छा स्किल क्या है, उसका बेटर टैलेंट क्या है, उस टैलेंट को हमें पकड़ना है और उस टैलेंट को पकड़ के उसको और आगे उभारना है
1: जी।
0: पकड़ने से मतलब है कि उसको आइडेंटिफाई करना है,
1: बिल्कुल,
0: उसकी पहचान करनी, और पहचान करने के बाद उसी को आगे और निखारना है
1: जी, उसी को।
0: इसके अलावा हमारे बहुत सारे ऐसे प्रयास हो सकते हैं कि केवल परिणाम की बात ना करें, मेहनत और सीखने को महत्व दें। इसके अलावा छोटे छोटे लक्ष्य, बड़े जो कार्य होते हैं उनको छोटे छोटे लक्ष्यों में, छोटे छोटे कार्यों में चरणबद्ध तरीके से हम लेकर के चल सकते हैं। जैसे जो बात आपने कही कि किसी को असफलता भी मान लीजिए होती है,
1: हाँ होती है,
0: असफलता से एक चीज तो सिद्ध होती है कि हमने कोई प्रयास किया
1: वो
0: सफल नहीं हुआ, लेकिन उसके अंदर जो अच्छाई है वो ये है कि हमें उस गलती से सीखने का एक अवसर मिला
1: जी।
0: तो जब हमें सीखने का एक अवसर मिला तो उस असफलता का हमारे लिए कोई नेगेटिव प्रभाव नहीं बचा, हमने कुछ सीखा। देखिए, गलती से भी कुछ सीखा ना,
1: हाँ होता है,
0: तो इसका मतलब क्या हुआ
1: जी?
0: वो भी एक हमारे तरह से एक तरीके से मोटिवेशन का काम वो करता है
1: जी।
0: और मैं पुनः आपके माध्यम से सभी को ये कहना चाहूंगा, देखिए विद्यार्थी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, विद्यार्थी की हर छोटी चीज का ध्यान रखें, उनको एक वॉच करें, उनको ऑब्जर्व करें और उनकी गतिविधि को देखें, उनका समय समय पर मनोबल बढ़ाएं और उनके कुछ विशेष जो काम हैं या विशेष गतिविधि हैं उनको देखें। अगर कोई स्पोर्ट्स में अच्छा करना चाह रहा है तो पेरेंट्स ऐसा ना करें कि उसको स्पोर्ट्स के बजाय किसी दूसरे फील्ड में धकेलने की कोशिश करें। देखिए, विद्यार्थी है, उसका जो रुचि है रुचि के अनुसार वो अपने विषय चयन करे, विषय के अनुसार वो अपने आगे के जो क्रियाकलाप है वो तय करे। हम किसी प्रकार की कोई जबरदस्ती विद्यार्थी के साथ ना करें। अक्सर ऐसा देखा गया है कि पेरेंट्स भी जो चॉइस विद्यार्थियों के बजाय पेरेंट्स की जो चॉइस है
1: थोप
0: जैसे थोप देते हैं, थोपने के बजाय उनको एक अपना इंडिपेंडेंट निर्णय लेने दें। दूसरा, जो वो निर्णय लें उस निर्णय में हमें उनकी सहायता करनी चाहिए, उनको मदद करनी चाहिए। और जो छोटे छोटे जो काम हैं, जैसे

0: किसी ने कोई काम किया तो उसको मनोबल बढ़ाने के लिए उसको शाबाशी देना,
1: हाँ, प्रोत्साहित करें,
0: प्रोत्साहित करें। इसके अलावा उनको जो एक्टिविटीज हैं, खास करके अगर हम देखें तो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज, किसी भी विद्यार्थी का गेम्स का, स्पोर्ट्स का, बाकी चीजों के प्रति भी हमें ध्यान रखें। और हम ये कोशिश ना करें कि विद्यार्थी केवल एक नंबर लाने की मशीन है
1: जी,
0: उसको भी एक ह्यूमन बीइंग समझें और उसके जो भी चीजें चलती हैं, खास करके जो उसकी रुचि के विषय हैं, उनमें भी समय दें। और एक जो चार्ट, ये जो हम कहें टाइम टेबल,
1: ये
0: नियमली हम बनाएं, टाइम टेबल हम एक बनाएं, उस टाइम टेबल पे भी हम देखें कि कौन कौन से काम उसके हो सकते हैं, तो टाइम टेबल के अनुसार उसका हम काम करवाएं।
1: तो डॉक्टर साहब, अब मेरा अंतिम प्रश्न होगा आपसे, और वो ये है कि बच्चे या अभिभावक मनोदर्पण से कैसे जुड़ सकते हैं?
0: देखिए, जैसा मैंने आपको कहा कि मनोदर्पण से जुड़ने के लिए हमारी एक हेल्पलाइन है, उसका नंबर मैं पुनः आपको बता देता हूँ
1: जी,
0: 8440432 8448440632। ये हमारी मनोदर्पण का टेली हेल्पलाइन नंबर है, जिसमें अभी सुबह 8 बजे से लेकर के रात्रि 8 बजे तक 12 घंटे के लिए हमारे काउंसलर्स उपलब्ध होते हैं। कोई भी विद्यार्थी, कोई भी अभिभावक और कोई भी शिक्षक इनसे मदद ले सकते हैं। इसके अलावा हमारे दूसरी जो एक टेली हेल्पलाइन है, जो टेली मानस की है, वो नंबर भी विद्यार्थी नोट कर सकते हैं, 14416। ये टेली हेल्पलाइन है टेली मानस की, इस पर भी वो अपनी मदद के लिए जा सकते हैं। यहाँ पर स्कूल काउंसलर, मनोवैज्ञानिक, मनोचिकित्सक उपलब्ध होते हैं
1: जी।
0: और अगर किसी प्रकार का कोई ऐसी बात दिखती है कि उनको कोई समस्या दिखती है, आप हमें ईमेल के माध्यम से भी manodarpancell@gmail.com पर भी ईमेल कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट पर जाकर के विजिट कर सकते हैं, हमारे सहयोग सेशन को वो देख सकते हैं, परिचर्चा सेशन को वो सुन सकते हैं, और एनसीईआरटी के वेबसाइट पर यूट्यूब में भी हमारे सारे के सारे कार्यक्रम उपलब्ध हैं, तो विद्यार्थी इसका अधिक से अधिक लाभ ले सकते हैं
1: जी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब हमारे स्टूडियो में आने के लिए और इतनी उपयोगी जानकारी देने के लिए और साथ ही साथ इतना अच्छा परामर्श देने के लिए। तो श्रोताओं से मेरा अनुरोध है कि इस प्रसारण को सुनने के बाद आप आज के श्रोता संवाद कार्यक्रम पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर भेजें।
0: जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, सभी श्रोताओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।

0: तो क्यों ना अपनाएं खुशियां, अपना कर मनोदर्पण। कॉल करें 844-844-0632 पर और पाएं NCERT द्वारा अपनी शैक्षिक व भावनात्मक समस्याओं का समाधान।
1: अभी आपने सुना ये कार्यक्रम, इस पर हम आपसे प्रतिक्रियाओं की अपेक्षा करेंगे, जरूर लिख भेजिएगा।
2: और श्रोताओं, अब इसी के साथ हमारा उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।
3: उमंग उमंग उमंग उमंग।
4: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग। सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

0: आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: रेडियो डॉक्टर कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत कर रही हूं मैं अनुराधा। स्वीकार कीजिए मेरा नमस्कार। श्रोताओं, हम सभी के आसपास पशु पक्षी होते हैं जिनमें कुछ पेट्स यानी पालतू जानवर हैं तो कुछ हमारे घरों के आसपास हमें दिखाई देते हैं जिनके संपर्क में हम जाने अनजाने आते ही रहते हैं। बेशक जानवरों से प्रेम करना जरूरी है, साथ साथ जरूरी है अपने आप को सुरक्षित रखना भी। इसी बात के मद्देनजर हम जिस विषय पर आज चर्चा करेंगे वो है जूनोसिस। क्या है जूनोसिस और कैसे रहे इससे सुरक्षित, इस विषय में जानेंगे विस्तार से क्योंकि आज है वर्ल्ड जूनोसिस डे। आज के विषय से जुड़ी आपका भी कोई सवाल है तो आप हम तक पहुंचा सकते हैं क्योंकि इस समय हमारे साथ दो विशेषज्ञ मौजूद हैं। आप हैं डॉक्टर एस के रसानिया जी, प्रोफेसर ऑफ एक्सीलेंस डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज न्यू दिल्ली। साथ ही हमारे साथ हैं डॉक्टर आर टी शर्मा जी, वेटिनरी डॉक्टर न्यू दिल्ली। तो आप दो विशेषज्ञ हमारे साथ मौजूद हैं, अगर आपका भी है कोई सवाल तो हम तक पहुंचा सकते हैं। स्टूडियो के नंबर्स हैं 01123421080 और 01123421082। आप हमें व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं, उसके लिए नंबर है 9868107070। तो आप हमें कॉल करिए, मैसेज करिए और हम इधर स्वागत करते हैं अपने दोनों विशेषज्ञों का। डॉक्टर साहब, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार।
2: नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार
1: जी। डॉक्टर साहब, डॉक्टर एस के रसानिया जी, सबसे पहले आपसे मेरा ये सवाल है कि विश्व जूनोसिस दिवस क्या है और इसे 6 जुलाई को ही क्यों मनाया जाता है?
2: बहुत अच्छा प्रश्न है जी। आज विश्व जूनोसिस दिवस हर साल 6 जुलाई को मनाया जाता है। इसके पीछे इतिहास ये है कि लुई पाश्चर जिन्होंने 1885 में रेबीज वैक्सीन की सफलता की याद में ये दिवस शुरू किया गया था। उन्होंने पहली बार रेबीज वैक्सीन एक बच्चे को लगाई थी जिसको रेबिट डॉग ने काटा था और उसका सफल परीक्षण किया था। इसका उद्देश्य हर साल मनाने का यह है कि लोगों को जूनोटिक रोगों के बारे में जन जागरूकता फैलाना और इसकी रोकथाम के उपाय के बारे में चर्चा करना इसका उद्देश्य है
1: जी। बहुत ज्यादा विस्तार से आज हम इस विषय पर चर्चा करने वाले हैं और हम श्रोताओं से लगातार कह रहे हैं कि बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है और इसको गौर से सुने। आपका भी कोई सवाल है तो हम तक जरूर पहुंचाएं। मेरा अगला जो सवाल है आपसे वो ये है कि जूनोटिक रोग क्या होते हैं और इनका मनुष्यों और जानवरों से क्या संबंध है?
2: देखिये, जूनोटिक रोग वे संक्रामक रोग होते हैं जो जानवरों से मनुष्य में फैलते हैं। देखा जाए तो लगभग 60% रोग जो हैं मनुष्यों में जो आज की डेट में हो रहे हैं वो जानवरों से होते हैं और जो नई नई बीमारियां जो पैदा हो रही हैं 75% बीमारियां जो हैं ये कहीं ना कहीं जानवरों द्वारा फैलाई जा रही हैं और इसका कारण बैक्टीरिया भी हो सकता है, वायरस भी हो सकता है, परजीवी हो सकता है, फंगस हो सकता है। तो जैसे मैंने बताया विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार लगभग 60% संक्रामक रोग जूनोटिक रोग होते हैं
1: जी। डॉक्टर साहब, यहाँ एक म्यूजिकल ब्रेक ले लेते हैं, आगे की चर्चा इसके बाद।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
0: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं सबसे पहले सुविचार जो हमें भेजा है यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से संतोष खडसे और विनोद खडसे जी ने। लिखते हैं,
2: वक्त का काम तो है गुजरना, बुरा है तो सब्र करो, अच्छा है तो शुक्र करो।
0: बहुत सुंदर विचार आपका, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश।
2: रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से क्लेश कुमार साहू, चित्ररेखा साहू, शुभम और सेजल साहू।
0: और पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन और पराग टेलर।
2: बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता, डिंपल देवांगन और दुर्गा चौक रायगढ़ से गेंदलाल, श्रीवास, संतोष, श्रीवास, शिव कुमारी और रामदुलारी।
0: खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलकराज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा लिखते हैं, सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी, सप्रेम नमस्ते जी।
2: देश एवं विदेश में सुने जाने वाला एकमात्र कार्यक्रम उमंग ही है, जिसे सुनकर मनोरंजन होता है और बहुमूल्य जानकारी का खजाना छिपा होता है। हर आयु के लोगों के लिए इस कार्यक्रम में कुछ न कुछ जरूर होता है।
0: हम ये भी आशा करते हैं कि उमंग कार्यक्रम इसी तरह से आगे भी प्रसारित होगा। उमंग कार्यक्रम में कहानी चिड़िया की

0: बच्ची सुनवाई गई, बेहद पसंद आई, आपका आभार। और अगला संदेश हमें मिला है जिला तहसील ठियोग शिमला हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान जी का।
1: संदेशों के लिए धन्यवाद। और अब जानते हैं पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर।
0: तो हमारा पहला प्रश्न था कि भारत को और किन किन नामों से जाना जाता है और इसका संवैधानिक नाम क्या है।
1: इसका उत्तर है साथियों, भारत को इंडिया, हिंदुस्तान, आर्यवर्त, जम्बूद्वीप, भारतवर्ष इत्यादि नामों से जाना जाता है, लेकिन इसे संवैधानिक रूप से भारत और इंडिया के नाम से जाना जाता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 में लिखा है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा।
0: हमारा दूसरा प्रश्न था, कोयले को जीवाश्म ईंधन या फॉसिल फ्यूल क्यों कहते हैं।
1: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। कोयला पेड़ों और वनस्पतियों से बना है, पेड़ों और वनस्पतियों में जीवन होता है, इसलिए इसे जीवाश्म ईंधन कहते हैं।
0: और अब सुनिए हमारा तीसरा प्रश्न, हमने आपसे पूछा था सोने को स्टार डस्ट क्यों कहते हैं।
1: इसका उत्तर है साथियों, सुपरनोवा या बड़े बड़े तारों के टकराने या फटने से जो धूल उत्पन्न हुई उससे सोना बना, इसलिए इसे स्टार डस्ट कहते हैं।
0: और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न जो हमने आपसे पूछा था, हमारा प्रश्न था डायमंड सीड किसे कहते हैं।
1: डायमंड सीड छोटे से प्राकृतिक हीरे को कहते हैं जिसकी नकल करके कृत्रिम हीरे बनाए जाते हैं।
0: और हमारा अंतिम प्रश्न था सिलिका और सिलिकॉन में क्या अंतर है।
1: सिलिका से एक विशेष वैज्ञानिक प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन निकालने पर जो तत्व प्राप्त होता है उसे सिलिकॉन कहते हैं।
0: तो श्रोताओ, ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। और अब सुनिए आज का प्रश्न, हमारा आज का प्रश्न है कंगारू के कितने पैर होते हैं।
1: 8800440559। और हमारी ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं।
0: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बड़ी अच्छी तरह से प्रश्नोत्तरी में प्रतिभाग किया। आइए अब सुनते हैं उमंग कार्यक्रम का मासिक संस्करण श्रोता संवाद, विषय है मनोदर्पण। स्वागत है आप सभी श्रोता मित्रों का उमंग रेडियो कार्यक्रम के मासिक संस्करण श्रोता संवाद में। मैं हूं आपका मित्र अजीत। नमस्कार श्रोताओं। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि श्रोता संवाद में हम हर महीने चर्चा करते हैं शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार और NCERT की संयुक्त पहलों के बारे में। तो इस क्रम में आज हमारे स्टूडियो में विशेषज्ञ के रूप में उपस्थित हैं प्रोफेसर विनोद कुमार शनवाल। आपको बता दें कि प्रोफेसर विनोद कुमार शनवाल NCERT के शैक्षिक मनोविज्ञान और शिक्षा आधार विभाग में मनोदर्पण प्रकोष्ठ के प्रभारी हैं। तो डॉक्टर साहब, अपने श्रोताओं की ओर से मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं।
2: ये धन्यवाद, सभी को नमस्कार।
0: श्रोताओं, आज का हमारा विषय बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है क्योंकि आज हम चर्चा करेंगे विशेषकर विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य पर, और साथ ही साथ हमारी चर्चा के केंद्र में रहेंगे शिक्षक और अभिभावक भी। तो डॉक्टर शनवाल, सबसे पहले मेरा अनुरोध है हमारे श्रोताओं को मनोदर्पण के बारे में कुछ जानकारी दीजिए।
2: जी धन्यवाद। देखिए, मनोदर्पण एक भारत सरकार की आत्मनिर्भर पहल के अंतर्गत शिक्षा मंत्रालय की एक पहल है
0: जी,
2: और इस पहल का उद्देश्य विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं अभिभावकों के मानसिक स्वास्थ्य एवं मनोसामाजिक सहायता उपलब्ध कराने से संबंधित है
0: जी,
2: जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की पहलें हम लोग करते हैं, जिसमें सबसे प्रमुख जो हमारी पहल है कि हम सुबह 8 बजे से लेकर के शाम के 8 बजे तक 12 घंटे का टेली काउंसलिंग हेल्पलाइन हम अभिभावकों को, विद्यार्थियों को और शिक्षकों को उपलब्ध कराते हैं
0: जी।
2: हमारी जो टेली हेल्पलाइन है इसका नंबर है 8448440632। 12 घंटे के अंतराल में विद्यार्थी, अभिभावक और शिक्षक कभी भी किसी भी समस्या को लेकर के हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे जो काउंसलर हैं वो 12 घंटे के लिए उपलब्ध रहते हैं। इसके अलावा हमारा जो दूसरा जो कार्यक्रम है वो होता है वेबिनार। वेबिनार में जैसे आपको मैंने बताया कि हमारी काउंसलिंग सर्विसेज है, काउंसलिंग सर्विसेज से जो हमें ट्रेंड्स मिलते हैं, जैसे हमारे शिक्षक साथी या अभिभावक या विद्यार्थियों की जो समस्याएं होती हैं, उन समस्याओं को लेकर के हम आगे के लिए एक सहयोग सत्र करते हैं। सहयोग सत्र हमारा प्रतिदिन आधे घंटे का होता है, जिसमें हम बाहर से कुछ काउंसलर्स को बुलाते हैं और हमारे विभाग के एक्सपर्ट भी उसमें होते हैं। उस समय उनके जो प्रश्न उत्तर होते हैं उनका भी हम जवाब देने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा जो हमें ईमेल से भी उनके पत्र प्राप्त होते हैं उनका भी हम जवाब देते हैं। इसके अलावा आपको दो चीजें और बता दूं कि हमारा इसके अंतर्गत एक चीज और भी आती है, परिचर्चा। परिचर्चा

0: हम 1.5 घंटे का एक सत्र करते हैं जो प्रत्येक शुक्रवार को करते हैं 2:30 से 4 बजे तक। इस 1.5 घंटे के परिचर्चा के अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार के एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं, अलग अलग टॉपिक्स को लेकर के हम डिस्कशन करते हैं, जिससे कि हमारे विद्यार्थियों को किसी प्रकार की समस्या ना हो और जो भी उनके जो कंसर्न्स रहते हैं या जो चैलेंजेस रहते हैं उसका निदान उन्हें समय समय पर मिलता रहे।
1: जी,
0: इसके अलावा जो कार्यक्रम रहता है हमारा, जैसे हमने आपको बताया टेली हेल्पलाइन हमारा एक कार्यक्रम है, दूसरा हमारा सहयोग रहता है, तीसरा हमारा परिचर्चा रहता है, इसके अलावा समय समय पर विद्यार्थियों के लिए, अभिभावकों के लिए या हमारे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन सब के लिए तनाव प्रबंधन हेतु विभिन्न प्रकार की जो सहायक सामग्री है वो भी हम समय समय पर उपलब्ध कराते हैं।
1: जी डॉक्टर साहब, आपने बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी मनोदर्पण के बारे में। मेरा अगला प्रश्न है आपसे, अपने श्रोताओं की ओर से, कि आज के समय में विद्यार्थियों में तनाव और चिंता बढ़ने के प्रमुख कारण क्या क्या हैं, और हम ये भी जानना चाहेंगे कि इनसे निपटने के सरल उपाय आप क्या क्या सुझाना चाहेंगे।
0: जी, आपका बहुत अच्छा प्रश्न है अजीत जी। प्रमुख जो कारण है आज के समय में विद्यार्थियों में, एक तो प्रतिस्पर्धा बहुत अधिक है,
1: जी,
0: जो अत्यधिक प्रतिस्पर्धा है, दूसरा विद्यार्थी परीक्षा को लेकर के और अपने भविष्य को, करियर संबंधी जो दबाव है उसको भी महसूस करते हैं, एक सोशल मीडिया का काफी प्रभाव इनके ऊपर देखा जाता है, खास करके जो डिजिटल उपकरण है इनका अत्यधिक उपयोग करना, और साथ साथ जिस प्रकार से तेजी से जो हमारा जो शैक्षणिक और सामाजिक जो परिवेश है ये परिवर्तित हो रहा है
1: जी,
0: उसको लेकर के इसमें कुछ प्रकार के मुख्य कारण है। जैसे मैंने आपको बताया कि अत्यधिक प्रतिस्पर्धा, इसके अंदर क्या रहता है कि जो दूसरे विद्यार्थियों से कई बार अभिभावक भी तुलना करते हैं, या जैसे हमने कहा कैरियर से संबंधित कुछ भविष्य में प्रवेश परीक्षाएं हैं या भविष्य को लेकर के चिंता करना, या सोशल मीडिया का जो प्रभाव है उसमें इवन दो आपको बड़ी हैरानी हो गई ये सुनकर के, कुछ विद्यार्थियों में तनाव का कारण ये होता है कि मेरी जो लाइक्स हैं वो कम हो गए हैं, तो उनके जो लाइक्स हैं इस प्रकार की भी चिंता वो बच्चे करते हैं। जो डिजिटल उपकरण है इसके अंदर स्क्रीन टाइम बढ़ता चला जा रहा है, जब ज्यादा डिजिटल उपकरण का इस्तेमाल करते हैं तो उसका इस्तेमाल करने के बाद बच्चों में एकाग्रता की कमी आती है, उनका दिनचर्या प्रभावित होती है और इसको लेकर के उनका अगले दिन का भी जो कार्यक्रम है, जो कार्यकलाप है वो भी प्रभावित होते हैं। तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो चीजें रहती हैं, विभिन्न प्रकार की नई तकनीकी आ गई हैं, नई विकल्प आ गए हैं, उनको लेकर के भी कुछ चीजों को समझते हुए विद्यार्थी थोड़ा अधिक समय इस पर लगाते हैं
1: जी।
0: अब इसके बड़े सरल उपाय हो सकते हैं, जैसे सबसे पहले विद्यार्थियों को ये समझना होगा और खास तौर के हमारे अभिभावकों को, विद्यार्थियों को समझाना पड़ेगा या अध्यापक साथियों को भी समझाना पड़ेगा कि तनाव और चिंता चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में होना स्वाभाविक है, इसमें कोई नई बात नहीं है और ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के लिए हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है वो है नियमित व्यायाम, योग और बीच बीच में जिसको हम डीप ब्रीदिंग कहते हैं, गहरी श्वास लेकर के इसका भी अगर हम अभ्यास करते हैं, उसके उपरांत अगर हमारे विद्यार्थी पर्याप्त नींद लेते हैं
1: जी,
0: संतुलित आहार इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, और नियमित दिनचर्या बनाए रखना
1: जी,
0: जैसे कई बार उनको कोई लेसन पढ़ना होता है या कोई काम करना होता है उसके बजाय वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर चले गए या फिर चैटिंग करने लग गए, उसमें उनका अधिक समय चला गया, लेसन के लिए समय कम बच गया, तो उनका जो ध्यान भटकता है उसको भी उनको एक नियमित दिनचर्या रखनी पड़ेगी, और उस नियमित दिनचर्या में उनको अपना जो समय है उसको पढ़ाई में, खेल में, बीच बीच में विश्राम में, और सबसे महत्वपूर्ण बात है मनोरंजन के बीच में भी एक संतुलन बनाना पड़ेगा
1: जी। बिल्कुल बिल्कुल,
0: अगर ये कर पाते हैं, इसके अलावा मित्रों से मिलना, परिवार के साथ मिलना, और खास करके जो सकारात्मक जो जुड़ाव है वो बढ़ाना पड़ेगा
1: जी।
0: कई बार क्या होता है कि अगर ये सारी चीजें नॉर्मल चलती हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर ऐसा नहीं चलता है तो किसी परामर्शदाता से या किसी मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ से सहायता लेने में भी
1: जी
0: विद्यार्थी को
1: संकोच
0: किसी प्रकार का संकोच नहीं करना चाहिए
1: जी। जी डॉक्टर साहब, आपने बड़ी उपयोगी जानकारी दी। अब आते हैं परीक्षा के मुद्दे पर। अक्सर देखा गया है कि परीक्षा के दिनों में हमारे विद्यार्थी बहुत अधिक तनाव में आ जाते हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा अपने श्रोताओं की ओर से कि परीक्षा के दिनों में खासकर बच्चों पर बढ़ते दबाव को कम करने के लिए अभिभावक और शिक्षक, उनकी भूमिका क्या हो सकती है।
0: देखिए, अभिभावक की और शिक्षक की तो भूमिका हमेशा ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि जब हम बात करते हैं विद्यार्थियों की तो विद्यार्थियों के जीवन में अभिभावक का और शिक्षक का एक महत्वपूर्ण रोल

0: रहता है। अब यहाँ पर सबसे पहली बात अभिभावक की क्या है, विद्यार्थी को ध्यान पूर्वक सुनना, जो बात वो कहना चाहते हैं, उनकी जो चिंताएं हैं, उनकी जो शंकाएं हैं
1: जी,
0: उनको बड़े ध्यान से सुनना और धैर्य पूर्वक सुनना, ये सबसे पहली बात
1: बिल्कुल
0: है।
1: बहुत जरूरी
0: कई बार
1: है।
0: ये होता है कि अगर हमारी बात को कोई अच्छे से सुन ले, समझ ले, तो फिर हमें काफी रिलैक्स फील करता है, राहत मिलती है।
1: जी।
0: दूसरी जो चीज रहती है कि हमें बीच बीच में थोड़ा सा एक भावनात्मक समर्थन, या ये कहिएगा कि एक तरीके से मनोबल बढ़ाने के कुछ चीजें भी मिल जाती। जैसे हमें ये बताना पड़ेगा कि विद्यार्थी ये समझे कि परिणाम के ऊपर फोकस नहीं करना है, केवल प्रयास और सीखने की प्रक्रिया पर ध्यान देना है। देखिए, मैं बड़ी महत्वपूर्ण बात करने जा रहा हूँ कि हमें प्रयास और सीखने की प्रक्रिया पर ध्यान देना है, परिणाम की बात नहीं करनी है।
1: परिणाम से आपका मतलब रिजल्ट?
0: जी, रिजल्ट से।
1: जी,
0: क्योंकि देखिए, अगर हम सीरियसली प्रयास कर रहे हैं और हम सीखने की प्रक्रिया पर ध्यान दे रहे हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। रिजल्ट कई बार मैटर नहीं करता है।
1: जी हाँ।
0: ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी बच्चे 90% अंक लाए, और अंकों की तो बात ही नहीं करनी चाहिए हमें। क्योंकि देखिए, किसी भी व्यक्ति के सफलता के लिए केवल उसके नंबर ही या उसके मार्क्स ही एक सिंगल पैरामीटर नहीं है।
1: जी,
0: आज के समय में जो हम बात करते हैं वो बात करते हैं कि किसी भी बालक के सर्वांगीण विकास की, होलिस्टिक डेवलपमेंट की हम बात करते हैं। होलिस्टिक डेवलपमेंट में केवल एक उसकी पढ़ाई की ही शामिल नहीं है, समाज में उनका क्या रोल है, अपने बाकी मित्रों के साथ उसका किस तरह का काम है, या परिवार में क्या भूमिका है, देश के प्रति उनकी क्या चिंता है, तो बहुत सारी जो चीजें हैं वो सारी की सारी चीजें इसके अंदर शामिल होती हैं। विद्यार्थियों को ये भी कहीं ना कहीं बताना आवश्यक है कि देखिए, हमारे सामने बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जो हमारे बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं,
1: बिल्कुल
0: हमारे बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं, हमारे बहुत अच्छे रेसलर्स हैं, हमारे बहुत अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन हैं, उन्होंने पढ़ाई के अलावा दूसरे फील्ड में काम किया और वो आज के समय में एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं।
1: जी।
0: तो विद्यार्थियों को समझना पड़ेगा कि एकेडमिक्स के अलावा भी बहुत सारे फील्ड हमारे पास है। कोई म्यूजिक में अपनी हॉबी ले सकता है, कोई क्रिएटिव एक्टिविटीज में अपनी हॉबी क्रिएट कर सकता है, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हो सकती हैं। और ये पेरेंट्स को भी समझना पड़ेगा कि केवल और केवल एकेडमिक्स ही नहीं, एकेडमिक्स के अलावा भी बहुत बड़ी दुनिया है।
1: जी।
0: दूसरी जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो बच्चों के ऊपर बहुत अधिक अपेक्षाओं का दबाव ना डालें, बच्चों से हम बहुत अधिक अपेक्षा ना करें, उनको पर्याप्त नींद का हम मौका दें, उनको पौष्टिक भोजन हम करवाएं, और उनको बीच बीच में, जैसे बहुत लंबे समय तक वो पढ़ते तो बीच बीच में छोटे छोटे ब्रेक उनको दे करके कि ठीक है, बहुत लंबा पढ़ लिए, अब थोड़ी देर खेल लीजिए,
1: तो आराम कर लीजिए,
0: आप थोड़ा आराम कर लीजिए। इसके अलावा तनाव प्रबंधन के कुछ सकारात्मक तरीके भी हैं, जैसे मान लीजिए सुबह उनको थोड़ा सा योग के बारे में बता दिया, या थोड़ा मेडिटेशन कराने की प्रैक्टिस उनको करा दी, या बीच में जहां वो तनाव में महसूस, उनको थोड़ा सा रिक्रिएटिव एक्टिविटीज लाइक कोई म्यूजिक आपने सुना दिया, कोई छोटे मोटे गेम उनको करा दिए। और आज के समय में तो बहुत सारे गेम, को जरूरी नहीं है कि ग्राउंड में खेलने वाले गेम हो, इन हाउस भी गेम बहुत सारे होते हैं, लेकिन मेरा आपसे निवेदन सिर्फ यही रहेगा कि वो गेम जितने भी हों या जो भी चीजें रहें, इलेक्ट्रॉनिक गेम ना होने चाहे। क्योंकि अगेन क्या होगा कि अगर वो इलेक्ट्रॉनिक गेम होंगे तो फिर दोबारा फिर उसकी भी एक समस्या रहेगी।
1: जी हाँ, जी।
0: तो वो गेम जो भी रहे, जैसे लूडो है, सांप सीढ़ी, कुछ भी अपने छोटे छोटे गेम जो हमारे अपने घरों में खेले जा सकते हैं, और बच्चों की भावनाओं को नकारने के बजाय उनकी बात को बड़े पॉजिटिव तरीके से हमको समझना चाहिए।
1: जी, जी।
0: ये कुछ तथ्य या कुछ बिंदु मैंने अभिभावकों की भूमिका के बारे में बताए हैं।
1: जी।
0: और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भावनात्मक प्रबंधन, जैसे कौशल विकसित करना, बहुत सारी छोटी छोटी टेक्निक्स या बहुत छोटी छोटी चीजें हो सकती हैं जो अध्यापक उनको बता सकते हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूँ कि एक विद्यार्थी है, वो पढ़ाई कर रहे हैं, तो हम उनको कहेंगे अच्छा आपने पढ़ाई की, अब ऐसा करो आप चित्रकला में थोड़ा काम करके देखो, कुछ अपनी बात को कहानी के माध्यम से कुछ रचनात्मक गतिविधि जिसको हम बोलते हैं कि आप ऐसा करिए कि आप कोई चित्रकला में कुछ काम करिए, कोई कहानी लेखन का काम कर लीजिए, या जिसको हम ग्रुप डिस्कशन कहते हैं, समूह चर्चा, ऐसी गतिविधियों में आप आगे चलें। क्या होता है कि उससे थोड़ा सा उनका फोकस भी रहता है और अपना थोड़ा सा एक तरीके से समय भी उनको मिल जाता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: इसके अलावा देखिए, विद्यार्थियों में कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिनको विशेष आवश्यकता रहती है, उनकी बातों को समझना और उनके साथ संवेदनशील होकर के उनकी जो समस्याएं हैं उनकी चिंता करना।
1: जी, बिल्कुल बिल्कुल।
0: इसके अलावा विद्यार्थियों में छोटी छोटी उपलब्धि है उसकी भी सराहना करना, उनको बीच बीच में मोटिवेट करना, अच्छा आपने बहुत अच्छा काम किया, जैसे किसी विद्यार्थी को आपने कोई असाइनमेंट दिया, कोई होमवर्क दिया, उसने करके दिखाया, अरे बहुत अच्छा किया आपने, आप तो इससे

0: चर्चा कर सकते हो।
1: तो इस तरीके से जो छोटे छोटे जो मोटिवेशंस हैं, छोटी छोटी जो चीजें रहती हैं, इससे उनको काफी एक तरीके से ये मानिए कि उनको बड़ा मोटिवेशन मिलता है,
0: मनोबल
1: बढ़ता है
0: जी,
1: और इस तरीके से वो और आगे इसके लिए कोशिश करते हैं। दूसरा, परामर्श की जो सेवाएं हैं उनकी जानकारी देना। हमारे पास जो काउंसलिंग सेवाएं हैं, अन्य जो संसाधन हैं, जो सहायता संसाधन हो सकते हैं, उनकी भी चीजें शेयर करना। ये चीजें यहाँ उपलब्ध हैं, आप देख लीजिए, समझ लीजिए। और ये एक जो सबसे महत्वपूर्ण जो इसमें काम हो सकता है, अध्यापक का और पेरेंट्स यानी कि अभिभावक, अध्यापक और विद्यार्थी, इन तीनों के बीच में एक तारतम्य में एक बहुत अच्छा जो कनेक्शन रहे,
0: तालमेल
1: जितना रहेगा उतना ही अच्छा रहेगा।
0: तो डॉक्टर साहब, इतनी उपयोगी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा विश्वास है कि हमारे श्रोता जरूर इससे बहुत लाभान्वित होंगे। अब एक विशेष प्रश्न पर मैं आता हूँ, और वो प्रश्न ये है कि मोबाइल फोन, सोशल मीडिया और ऑनलाइन गेम्स का बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, और इनके संतुलित उपयोग के लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे?

0: मेरा विश्वास है कि हमारे श्रोता जरूर इससे बहुत लाभान्वित होंगे। अब एक विशेष प्रश्न पर मैं आता हूँ, और वो प्रश्न ये है कि मोबाइल फोन, सोशल मीडिया और ऑनलाइन गेम्स का बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, और इनके संतुलित उपयोग के लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे। मूल प्रश्न है इनका संतुलित उपयोग।
1: जी, आपका ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, जो संभावित नकारात्मक प्रभाव इसके हो सकते हैं, सबसे बड़ा जो चिंता और तनाव, क्योंकि लगातार तुलना करते हैं, इसमें भी क्या होता है, उनके लाइक अधिक हो गए, हमारे लाइक कम हो गए, यहाँ भी हमने तुलना कर ली,
0: ऐसा होता
1: उसके
0: है।
1: बाद हम क्या करते हैं, ऑनलाइन किसी भी चीज के ऊपर या सोशल मीडिया में कोई चीज आती है, ऑनलाइन गेम आता है, इवन ऑनलाइन गेम के अंदर तो कई तरह की बहुत सारी खतरनाक चीजें भी होती हैं, अगर आपको जानकारी हो तो। जैसे ये ब्लू वेल टाइप के जो गेम थे, तो कुछ लोग क्या करते हैं कि उन ऑनलाइन गेम के माध्यम से हमारे विद्यार्थियों को चीट करने की कोशिश करते हैं, उनसे भी बचना चाहिए। दूसरा क्या होता है कि लगातार स्क्रीन को देखने से नींद आने में बाधा उत्पन्न होती है, नींद की क्वालिटी प्रभावित होती है, और क्या होता है कि हमारे जो सामाजिक अलगाव भी बढ़ता है।
0: जी,
1: जैसे एक दूसरे के आमने सामने बैठ करके हम संवाद करते हैं, ऑनलाइन गेमिंग से या ऑनलाइन मोबाइल फोन के प्रयोग से या सोशल मीडिया से या ऑनलाइन बने रहने से विद्यार्थी एक दूसरे से आमने सामने बात करने से बचते हैं, और उनको वो समय नहीं मिल पाता, तो धीरे धीरे क्या होता है कि समाज से भी वो थोड़े से कट जाते हैं, अपने साथियों से अकेलापन आ जाएगा, अपने विद्यार्थियों से, साथियों से, भाई बहन से। और अक्सर आपने देखा होगा कि एक घर में अगर चार लोग हैं तो चार मोबाइल के साथ अलग अलग बैठे हैं, जबकि

चीजें, जैसे हम जब शाम को डिनर करते हैं, रात्रि भोजन जब करते हैं, उस समय भी हम कहते हैं अच्छा ठीक है मोबाइल बंद कर लीजिए, अच्छा अब आधा घंटा हम अपने घर की चर्चा करेंगे, अपने विषयों की चर्चा करेंगे, साथ में खाना खाएंगे, हम नाश्ता साथ में करेंगे, तो इस तरह के जो जो चीजें हैं उसको बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। इसके अलावा विद्यार्थियों को इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन काम के समय और कितना उपयोग करना इस पर भी नजर रखनी चाहिए। इसके अलावा विद्यार्थियों को खेल में, संगीत में, कला में छोटी छोटी गतिविधि, जैसे मौसम के अनुसार सर्दी अधिक है तो धूप में कोई एक्टिविटी हो सकती है, गर्मी अधिक है तो घर के अंदर भी कोई एक्टिविटी हो सकती है, सुबह शाम हो सकती है, तो वो भी देख करके हम कर सकते हैं। और बच्चों को ये भी समझाएं कि जो डिजिटल लिटरेसी यानी कि डिजिटल साक्षरता है, ये सिखानी बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई बार क्या होता है कि छोटे छोटे जो मैसेज आते हैं उन मैसेज को लेकर के भी इधर उधर चीजें होती हैं या चर्चाएं होती हैं, उनके बारे में भी बताना चाहिए। इसके अलावा सोने से कम एक घंटा पहले जो डिजिटल स्क्रीन है, स्क्रीन को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि लंबे समय तक अगर वो डिजिटल स्क्रीन को

0: महत्वपूर्ण है कि सबसे पहले जो बात हम कर रहे हैं कि जो हमारा विद्यार्थी है उसको किसी भी चीज के सफलता या असफलता के कोई पैरामीटर होते ही नहीं।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: किसी प्रकार का कोई पैरामीटर नहीं होता है।
1: हाँ।
0: एक विद्यार्थी हो सकता है कि पढ़ाई में थोड़ा सा कमजोर हो, स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा हो सकता है,
1: हो सकता है,
0: वही पेंटिंग में अच्छा हो सकता है, वो आर्ट में अच्छा हो सकता है, बाकी किसी अन्य विषय में अच्छा हो सकता है
1: जी।
0: तो हमें ये समझना चाहिए कि उस विद्यार्थी का अच्छा स्किल क्या है, उसका बेटर टैलेंट क्या है, उस टैलेंट को हमें पकड़ना है और उस टैलेंट को पकड़ के उसको और आगे उभारना है
1: जी।
0: पकड़ने से मतलब है कि उसको आइडेंटिफाई करना है,
1: बिल्कुल,
0: उसकी पहचान करनी, और पहचान करने के बाद उसी को आगे और निखारना है
1: जी, उसी को।
0: इसके अलावा हमारे बहुत सारे ऐसे प्रयास हो सकते हैं कि केवल परिणाम की बात ना करें, मेहनत और सीखने को महत्व दें। इसके अलावा छोटे छोटे लक्ष्य, बड़े जो कार्य होते हैं उनको छोटे छोटे लक्ष्यों में, छोटे छोटे कार्यों में चरणबद्ध तरीके से हम लेकर के चल सकते हैं। जैसे जो बात आपने कही कि किसी को असफलता भी मान लीजिए होती है।
1: हाँ, होती है।
0: असफलता से एक चीज तो सिद्ध होती है कि हमने कोई प्रयास किया,
1: प्रयास
0: वो सफल
1: किया?
0: नहीं हुआ, लेकिन उसके अंदर जो अच्छाई है वो ये है कि हमें उस गलती से सीखने का एक अवसर मिला
1: जी।
0: तो जब हमें सीखने का एक अवसर मिला तो उस असफलता का हमारे लिए कोई नेगेटिव प्रभाव नहीं बचा, हमने कुछ सीखा। देखिए गलती से भी कुछ सीखा ना।
1: हाँ, होता
0: तो,
1: है।
0: तो इसका मतलब क्या हुआ
1: जी?
0: वो भी एक हमारे तरह से एक तरीके से मोटिवेशन का काम वो करता है
1: जी।
0: और मैं पुनः आपके माध्यम से सभी को ये कहना चाहूंगा, देखिए विद्यार्थी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, विद्यार्थी की हर छोटी चीज का ध्यान रखें, उनको एक वॉच करें, उनको ऑब्जर्व करें और उनकी गतिविधि को देखें, उनका समय समय पर मनोबल बढ़ाएं और उनके कुछ विशेष जो काम हैं या विशेष गतिविधि है उनको देखें। अगर कोई स्पोर्ट्स में अच्छा करना चाह रहा है तो पेरेंट्स ऐसा ना करें कि उसको स्पोर्ट्स के बजाय किसी दूसरे फील्ड में धकेलने की कोशिश करें। देखिए विद्यार्थी है, उसका जो रुचि है रुचि के अनुसार वो अपने विषय चयन करे, विषय के अनुसार वो अपने आगे के जो क्रियाकलाप है वो तय करे, हम किसी प्रकार की कोई जबरदस्ती विद्यार्थी के साथ ना करें। अक्सर ऐसा देखा गया है कि पेरेंट्स भी जो चॉइस विद्यार्थियों के बजाय पेरेंट्स की जो चॉइस है
1: थोप
0: जैसे थोप देते हैं, थोपने के बजाय उनको एक अपना इंडिपेंडेंट निर्णय लेने दें। दूसरा, जो वो निर्णय लें उस निर्णय में हमें उनकी सहायता करनी चाहिए, उनको मदद करनी चाहिए और जो छोटे छोटे जो काम हैं जैसे किसी ने कोई काम किया तो उसको मनोबल बढ़ाने के लिए उसको शाबाशी देना,
1: प्रोत्साहित करें,
0: प्रोत्साहित करें। इसके अलावा उनको जो एक्टिविटीज हैं, खास करके अगर हम देखें तो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज, किसी भी विद्यार्थी का गेम्स का, स्पोर्ट्स का, बाकी चीजों के प्रति भी हमें ध्यान रखें और हम ये कोशिश ना करें कि विद्यार्थी केवल एक नंबर लाने की मशीन है
1: जी,
0: उसको भी एक ह्यूमन बीइंग समझें और उसके जो भी चीजें चलती हैं खास करके जो उसकी रुचि के विषय हैं उनमें भी समय दें और एक जो चार्ट, ये जो हम कहें टाइम टेबल,
1: ये
0: नियमली हम बनाएं, टाइम टेबल हम एक बनाएं, उस टाइम टेबल में भी हम देखें कि कौन कौन से काम उसके हो सकते हैं तो टाइम टेबल के अनुसार उसका हम काम करवाएं।
1: तो डॉक्टर साहब, अब मेरा अंतिम प्रश्न होगा आपसे और वो ये है कि बच्चे या अभिभावक मनोदर्पण से कैसे जुड़ सकते हैं?
0: देखिए जैसा मैंने आपको कहा कि मनोदर्पण से जुड़ने के लिए हमारी एक हेल्पलाइन है, उसका नंबर मैं पुनः आपको बता देता हूँ
1: जी,
0: 8448440632 8448440632 ये हमारी मनोदर्पण का टेली हेल्पलाइन नंबर है जिसमें अभी सुबह 8 बजे से लेकर के रात्रि 8 बजे तक 12 घंटे के लिए हमारे काउंसलर्स उपलब्ध होते हैं। कोई भी विद्यार्थी, कोई भी अभिभावक और कोई भी शिक्षक इनसे मदद ले सकते हैं। इसके अलावा हमारे दूसरी जो एक टेली हेल्पलाइन है जो टेली मानस की है वो नंबर भी विद्यार्थी नोट कर सकते हैं, 14416। ये टेली हेल्पलाइन है टेली मानस की, इस पर भी वो अपनी मदद के लिए जा सकते हैं। यहाँ पर स्कूल काउंसलर, मनोवैज्ञानिक, मनोचिकित्सक उपलब्ध होते हैं
1: जी।
0: और अगर किसी प्रकार का कोई ऐसी बात दिखती है कि उनको कोई समस्या दिखती है, आप हमें ईमेल के माध्यम से भी manodarpansel@gmail.com पर भी ईमेल कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट पर जाकर के विजिट कर सकते हैं, हमारे सहयोग सेशन को वो देख सकते हैं, परिचर्चा सेशन को वो सुन सकते हैं और एनसीईआरटी के वेबसाइट पर यूट्यूब में भी हमारे सारे के सारे कार्यक्रम उपलब्ध हैं। तो विद्यार्थी इसका अधिक से अधिक लाभ ले सकते हैं।
1: जी।

0: तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब हमारे स्टूडियो में आने के लिए और इतनी उपयोगी जानकारी देने के लिए और साथ ही साथ इतना अच्छा परामर्श देने के लिए। तो श्रोताओं से मेरा अनुरोध है कि इस प्रसारण को सुनने के बाद आप आज के श्रोता संवाद कार्यक्रम पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर भेजें।
1: जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, सभी श्रोताओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।

0: तो क्यों ना अपनाएं खुशियां, अपनाकर मनोदर्पण। कॉल करें 844-844-0632 पर और पाएं NCERT द्वारा अपनी शैक्षिक व भावनात्मक समस्याओं का समाधान।
1: अभी आपने सुना ये कार्यक्रम, इस पर हम आपसे प्रतिक्रियाओं की अपेक्षा करेंगे, जरूर लिख भेजिएगा।
2: और श्रोताओं, अब इसी के साथ हमारा उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।
3: उमंग उमंग उमंग उमंग।
4: सुनुथिले NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।

Musically yours, 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक आरंभ करूछू कार्यक्रम मोदी सा

0: ட்யூன் பரிச்சந்தி 100.4 ஆகாஷ்வாணி எஃப்எம் டீன் போகட்டக் தில் சி தில் தக் ஷோ சாலிச்சி டயல் இன் லைவ் சிட் சாட் அமர நம்பர் ஹியூச்சி 0671-230-3153 তবে আজির প্রশ্ন রয়েছে যে বর্ষা পাই আপনি কেবে হইরাণ হইছন্তি কি আমার সাথে জনে সাথী জড়ি হইছন্তি দেখিবা কি কল করিছন্তি কোন কইছন্তি
1: হ্যালো
0: হ্যালো
1: হ্যালো
0: হ্যালো নমস্কার কি কইছন্তি কোডু কইছন্তি
1: হ্যালো জ্যোতি ম্যাম
0: নমস্কার কি কইছন্তি কোডু কইছন্তি
1: জয় শ্রী জগন্নাথ মো মোহিনী বেহরা কইছিলি চৌপড়া

0: हेलो
1: सुख संपत्ति से नहीं संतोष में है। शुभ संध्या नमस्कार आज्ञा
0: कार्यक्रम को बहुत बहुत स्वागत नमस्कार किए कहते
1: आज्ञा
0: कार्यक्रम को बहुत बहुत स्वागत किए कहते कौट कहते
1: प्रशांत कहती राजंश कटक रु
0: कार्यक्रम को बहुत बहुत स्वागत आउ थे कौन कह आज टॉपिक विषय
1: वर्षा विषय मैम
0: आज्ञा वर्षा पाई के कौन हैरान होती
1: वर्षा पाई कौन मैम हैरान होती आ भीतर कौन मान वास्तविकता अच्छी ताकि मैम विश्लेषण करवा
0: निहाती कम समय भीतर
1: वर्षा आ खरा आ शीत खरा शीत ये चार ऋतु तीन टा प्राय आमको अनुभूत हुए बहुत मात्रा रे किंतु कौन हो जो आम भितर थी जदि माने जो इच्छा शक्ति जहाँ कहचे आम से जदि दुर्बल ताले आमको सामान्य वर्षा भी माने चकित करदब आदि मनोबल दृढ़ अच्छी ताले केते भी वर्षा मुझे बहुत प्रकार मैम हैरान किंतु मो गंतव्य स्थल जाए पहुंची अष्टम पड़ा बेले गोटे वर्षार गोटे सुंदर अनुभूति अच्छी आम दीज पा जा स्कूल से मैम जो स्कूल बाक्स आसे जो ट्रंक
0: रो कहते
1: पढ़ला बेले मानते बाक्स आसाला तादी आम बैवस्थान नहीं स्कूल जाऊ आम ओदा हलु ताकि मुंडे घर को पलैल घर पाखे ना आसा गोड़ हाथ आउ थे भल धोबू गोड़ हाथ धोईकी सहित से बाक्स भी पा दे बुड़े देलु बाक्स धोई जा सब बैवस्थानी खाता ओदा हो गला
0: अच्छा
1: तो सी पंदर दिन लगी सब सुखापाई ये हूँ वर्षा विषय अनुभूति
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपणकर सुंदर अनुभूति आम सहित शेयर कष्ट पाई किंतु शेयर कले बहुत बहुत धन्यवाद

मेरे प्यारे देशवासियों, आपने एक बात ऑब्जर्व करी होगी, हमारी मन की बातों ने स्वच्छता अभियान को समय समय पर गति दी है और इसी तरह से स्वच्छता के लिए किए जा रहे प्रयासों ने भी मन की बात को हमेशा ही प्रेरणा दी है। ऐसा नहीं है कि हमने स्वच्छता में आदर स्थिति हासिल कर ली है, लेकिन जिस प्रकार से ODF से लेकर सार्वजनिक स्थलों तक स्वच्छता अभियान में सफलता मिली है, वो 130 करोड़ देशवासियों के संकल्प की ताकत है। लेकिन हम इतने पर रुकने वाले नहीं हैं। यह आंदोलन अब स्वच्छता से सुंदरता की ओर बढ़ चला है। अभी कुछ दिन पहले ही मैं मीडिया में श्रीमान योगेश सैनी और उनकी टीम की कहानी देख रहा था। योगेश सैनी इंजीनियर है और अमेरिका में अपनी नौकरी छोड़कर माँ भारती की सेवा के लिए वापिस आए हैं। उन्होंने कुछ समय पहले दिल्ली को स्वच्छ ही नहीं बल्कि सुंदर बनाने का बीड़ा उठाया। उन्होंने अपनी टीम के साथ लोधी गार्डन के कूड़ेदानों से शुरुआत की, स्ट्रीट आर्ट के माध्यम से दिल्ली के कई इलाकों को खूबसूरत पेंटिंग से सजाने संवारने का काम किया। ओवरब्रिज और स्कूल की दीवारों से लेकर झुग्गी झोंपड़ियों तक उन्होंने अपने हुनर को उकेरना शुरू किया तो लोगों का साथ भी मिलता चला गया और एक प्रकार से ये सिलसिला चल पड़ा। रंग और रेखाओं में कोई आवाज भले ही न होती हो, लेकिन इनसे बनी तस्वीरों से जो इंद्रधनुष बनते हैं उनका संदेश हजारों शब्दों से भी कहीं ज्यादा प्रभावकारी सिद्ध होता है। और स्वच्छता अभियान की खूबसूरती में भी ये बात हम अनुभव करते हैं।

राक्षसों तथा पापाचारियों से आतंकित पृथ्वी तथा ब्रह्मा सहित देवताओं ने परम पिता की स्तुति करके उन्हें प्रसन्न किया। तब गंभीर आकाशवाणी हुई, हे मुनि सिद्ध और देवताओं के स्वामी, भयभीत न हो। तुम्हारे कल्याण के लिए मनुष्य रूप धारण करके मैं सूर्यवंश में अवतरित होऊंगा। अदिति तथा कश्यप ने कठोर तपस्या करके मेरा वरदान प्राप्त किया और वे ही कौशल्या तथा दशरथ के रूप में अयोध्या में प्रकट हुए हैं। उन्हीं के घर श्रेष्ठ चार भाइयों के रूप में मैं अपनी परम शक्ति समेत पैदा होऊंगा। आकाश में गूंजती ब्रह्मवाणी अपने कानों सुनकर सभी देवता आश्वस्त हुए।

0: अद्य नवदिल्ल्यां संवाददातृभिः सह सम्भाषमाणः श्रीवैष्णवः प्रोदीरितवान् यत् रथयात्रायाः सुचारु संचालनं सुरक्षितप्रबन्धनं च सुनिश्चेतुं सः अद्यैव रेलविभागीय सिद्धतायाः उच्चस्तरीयां समीक्षां विधास्यति।
1: पुरी में महाप्रभु जगन्नाथ जी का रथ यात्रा का पावन पर्व है, उसमें 300 से अधिक स्पेशल ट्रेन चलाई गई और आने वाले समय में केरलम में ओनम के फेस्टिवल के उपलक्ष्य में 100 से अधिक स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी।
0: निर्वाचन आयोगेन पश्चिम बंगाल राज्यस्य राज्यसभायाः त्रिषु आसनेषु उपनिर्वाचनस्य घोषणा कृता अस्ति। राज्यसभायाः सदस्यानां सुखेन्दु शेखर रे, सुष्मिता देवः, प्रकाश चिक बड़ाईकः इत्येतेषां त्यागपत्रस्यानन्तरं स्थानानि रिक्तानि आसन्। निर्वाचनस्य संचेतना श्वः प्रकाशिता भविष्यति। नामांकनस्य अन्तिमा तिथिः जुलाई मासस्य 14 दिनांकं यावदस्ति। जुलाई मासस्य 15 दिनांक

मेरे प्यारे देशवासियों, आपने एक बात ऑब्जर्व करी होगी, हमारी मन की बातों ने स्वच्छता अभियान को समय समय पर गति दी है और इसी तरह से स्वच्छता के लिए किए जा रहे प्रयासों ने भी मन की बात को हमेशा ही प्रेरणा दी है। ऐसा नहीं है कि हमने स्वच्छता में आदर्श स्थिति हासिल कर ली है, लेकिन जिस प्रकार से ODF से लेकर सार्वजनिक स्थलों तक

0: स्वच्छता अभियान में सफलता मिली है वो 130 करोड़ देशवासियों के संकल्प की ताकत है। लेकिन हम इतने पर रुकने वाले नहीं हैं। यह आंदोलन अब स्वच्छता से सुंदरता की ओर बढ़ चला है। अभी कुछ दिन पहले ही मैं मीडिया में श्रीमान योगेश सैनी और उनकी टीम की कहानी देख रहा था। योगेश सैनी इंजीनियर है और अमेरिका में अपनी नौकरी छोड़कर माँ भारती की सेवा के लिए वापिस आए हैं। उन्होंने कुछ समय पहले दिल्ली को स्वच्छ ही नहीं बल्कि सुंदर बनाने का बीड़ा उठाया। उन्होंने अपनी टीम के साथ लोधी गार्डन के कूड़ेदानों से शुरुआत की, स्ट्रीट आर्ट के माध्यम से दिल्ली के कई इलाकों को खूबसूरत पेंटिंग से सजाने संवारने का काम किया। ओवरब्रिज और स्कूल की दीवारों से लेकर झुग्गी झोंपड़ियों तक उन्होंने अपने हुनर को उकेरना शुरू किया तो लोगों का साथ भी मिलता चला गया और एक प्रकार से ये सिलसिला चल पड़ा। रंग और रेखाओं में कोई आवाज भले ही न होती हो लेकिन इनसे बनी तस्वीरों से जो इंद्रधनुष बनते हैं उनका संदेश हजारों शब्दों से भी कहीं ज्यादा प्रभावकारी सिद्ध होता है। और स्वच्छता अभियान की खूबसूरती में भी ये बात हम अनुभव करते हैं।
1: यहाँ खबरें तोड़ी मरोड़ी नहीं जाती।
2: बहुत सारे निजी चैनल और निजी चैनलों के बोलबाला में हम समझ रहे हैं कि आकाशवाणी और दूरदर्शन इसकी रिलेवेंसी क्या है।
1: यहाँ होती है सीधी सटीक और सच्ची खबरें।
2: मैं मन से मानता हूँ कि भारत के भाव की अभिव्यक्ति केवल और केवल आकाशवाणी और दूरदर्शन ही कर रहे हैं
1: क्योंकि ये है देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल। DD News, केवल खबर पूरी खबर।

0: यहाँ खबरें तोड़ी मरोड़ी नहीं जाती।
1: बहुत सारे निजी चैनल और निजी चैनलों के बोलबाला में हम समझ रहे हैं कि आकाशवाणी और दूरदर्शन इसकी रिलेवेंसी क्या है।
0: यहाँ होती है सीधी सटीक और सच्ची खबरें।
1: मैं मन से मानता हूँ कि भारत के भाव की अभिव्यक्ति केवल और केवल आकाशवाणी और दूरदर्शन ही कर रहे हैं,
0: क्योंकि ये है देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल। डीडी न्यूज, केवल खबर, पूरी खबर।

म्यूजिकली योर्स 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक। दिल से दिल तक रे आपनकर दिल का दोस्त ज्योति छ आपनक सहित आउ जणो छी गुड इवनिंग। आउ ए गुड इवनिंग सहित आरंभ हो जाय छी शो संध्या असर। संध्या असर रे आपन जणी परबे निज नियर एंड डियर वन्स को गुड विशेस, माने जदि कहार विवाह वार्षिकी रही छी, जन्मदिन रही छी, बा किछ गुड विशेस आपनक पाखरे अछि निजर प्रिय जनक पाखक पठेबा पई, ताले निहाती हमकु एसएमएस करि परिबे। एसएमएस करिबा पई नंबर टी हेउछि 09495963210 एवं ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर हेउछि 8895254200। तेबे व्हाट्सएप करंतु बा एसएमएस करंतु, सेथिरे निजर नाम ठिकाना निहाती लिखिबे एवं एसएमएस टी जहांक पाखक पठेचंती तांकर नाउ ठिकाना नियाति लेखिबे, सो दैट आमे इजीली आपणक ना नै परिबो। आउ आपण जहांक पाखक एसएमएस करिचंती तांक ना भी सहज रे पढी दे परिबो, तांक पाखरे आपणकर मनर कथा इजीली पहुंची जाई परिबो।

ट्यून करिछंती 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक आजिकाली आम भारी व्यस्त आम जीवनटा एकदम व्यस्तबहुल किंतु से भितरे आम निज शरीर निज मन समय दे पारुनु किंतु आम मन जदि सुस्थ रहिबो आम शरीर जदि सुस्थ रहिबो ताहले आमर जो व्यस्तबहुल जीवनटा अछि सेटा आउ हचपच रे जीवनी नियत भाबरे सुस्थ मन सुस्थ शरीर आम जीवन को अधिक सुस्थ सुंदर एवं सक्रिय भी करि पारे।

0: ଟ୍ୟୁନ୍ କରିଛନ୍ତି 100.4 ଆକାଶବାଣୀ ଏଫ୍ଏମ୍ ରେନ୍ବୋ କଟକ ଦଲ ସି ଦିଲ ତକ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଣନ୍ତୁ ସମାଚାର ସନ୍ଧ୍ୟା ଏବଂ ପରେ ପରେ ଶୁଣିପାରିବେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆଟ୍ 9। ରିଲେ କରି ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन देशों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दौरे के पहले चरण में जकार्ता पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी ने डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी 125वीं जयंती पर श्रद्धांजलि दी। कहा, उनका दृष्टिकोण आधुनिक भारत का मार्गदर्शन करता रहेगा। राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा का इस्तीफा स्वीकार किया। कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव नियुक्त किया गया। महाराष्ट्र, गुजरात और झारखंड में मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित। कल कच्छ, सौराष्ट्र, मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक में तेज बारिश का रेड अलर्ट। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई को अंतिम विदाई देने के लिए तेहरान में बड़ी संख्या में लोग जमा हुए। और फीफा फुटबॉल विश्वकप में आज रात राउंड ऑफ 16 में पुर्तगाल का मुकाबला स्पेन से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में आज शाम इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचे। राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने हवाई अड्डे पर श्री मोदी का स्वागत किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया ने 2018 में अपने संबंधों का स्तर बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक पहुंचाया, जिससे लोगों को लाभ हुआ है। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए पारंपरिक इंडोनेशियाई और भारतीय नृत्य प्रस्तुतियों वाला एक शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह दोनों देशों के बीच गहरे सभ्यतागत और सांस्कृतिक संबंधों को दर्शाता है। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वार्ता में व्यापार, निवेश, रक्षा, समुद्री सुरक्षा, डिजिटल तकनीक और सांस्कृतिक आदान प्रदान के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इससे भारत और इंडोनेशिया के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी और मजबूत होगी। आकाशवाणी से बात करते हुए भारतीय समुदाय के सदस्यों ने प्रधानमंत्री की यात्रा को लेकर उत्साह व्यक्त किया और भरोसा जताया कि इससे द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे तथा व्यापार और निवेश के लिए नए अवसर सृजित होंगे। जकार्ता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
1: इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भी शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड जाएंगे। प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ वार्ता करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि तीनों देशों की यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर

0: तथा स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और सशक्त होगा। राष्ट्र आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने कहा कि डॉ मुखर्जी के विचारों ने आधुनिक भारत को नई दिशा दी।
1: आज देश की धरती, पश्चिम बंगाल की धरती, अपने एक महान सपूत, एक महान देशभक्त, भारत की अखंडता के लिए समर्पित एक युगद्रष्टा को श्रद्धा पूर्वक स्मरण कर रही है। मैं डॉक्टर मुखर्जी की 125वीं जन्म जयंती के अवसर पर उन्हें नमन करता हूं, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।
0: श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार उनकी जयंती के उपलक्ष्य में 2 वर्ष तक चलने वाला राष्ट्रीय समारोह आयोजित कर रही है। उन्होंने बताया कि ये समारोह पिछले वर्ष 6 जुलाई से शुरू हुआ था और अगले वर्ष 6 जुलाई तक चलेगा। गृहमंत्री ने भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।
2: श्यामा प्रसाद मुखर्जी अगर न होते तो आज कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं होता। यही वो महापुरुष थे जिन्होंने एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान, 2 निशान नहीं चल सकते। न केवल वो आंदोलन की शुरुआत की, इसके लिए अपने प्राण भी नौछावर कर दिए।
0: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज भोपाल के सतगढ़ी में डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्मार्ट औद्योगिक पार्क की आधारशिला रखी। मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य डॉ. अनिल मिश्रा के इस्तीफे स्वीकार कर लिए हैं। दोनों ने राम मंदिर में दान राशि में कथित गड़बड़ी के मामले में नाम सामने आने के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। आज शाम अयोध्या में हुई बैठक के बाद ट्रस्ट ने नए महासचिव की नियुक्ति तक कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव बनाया है। ट्रस्ट ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति का भी फैसला किया है। इसके लिए 3 सदस्यीय समिति बनाई गई है जो उपयुक्त नामों की सिफारिश करेगी। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरि ने कहा कि पूरे मामले में किसी साजिश की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ट्रस्ट ने कहा कि दान में मिली सभी वस्तुएं सुरक्षित हैं।
3: अनेक अच्छे अच्छे पदार्थ जो दिए गए, अनेक वस्तुएं जो प्रदान की गई, वे भी कहाँ गुल हो गई, वे कहाँ चली गई। उन सारी वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों ने आपके सामने आपको दिखाने के लिए लाया है। हम आपको दिखाएंगे और वे सारी वस्तुएं जिनका वर्णन आता है, इन सब को हम आज आपके सामने यहाँ पर रख करके दिखाने वाले हैं। किस प्रकार की 2800 वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों के पास उपलब्ध है और वे सारी वस्तुएं सुरक्षित है।
0: रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि इस वर्ष भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के लिए 300 से अधिक विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी। ये नियमित रूप से चलाई जा रही 800 से अधिक ट्रेनों के अतिरिक्त हैं। नई दिल्ली में श्री वैष्णव ने कहा कि पुरी रेलवे स्टेशन पर 30,000 यात्रियों के लिए अस्थायी व्यवस्था की जाएगी।
4: पुरी में महाप्रभु जगन्नाथ जी का रथ यात्रा का पावन पर्व है, उसमें 300 से अधिक स्पेशल ट्रेन चलाई गई और आने वाले समय में केरलम में ओनम के फेस्टिवल के उपलक्ष्य में 100 से अधिक स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी।
0: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज उत्तराखंड के टनकपुर और महाराष्ट्र के नांदेड़ स्थित हजूर साहिब के बीच नई रेल सेवा का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ किया। उन्होंने टनकपुर पीलीभीत रेल सेवा का विस्तार शाहजहांपुर तक करने की भी शुरुआत की। श्री वैष्णव ने कहा कि नई रेल सेवा उत्तराखंड के तराई क्षेत्र के लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांग पूरा करेगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज राष्ट्रीय राजमार्ग माल परिवहन प्रबंधन लिमिटेड की समीक्षा बैठक की। बैठक में देश भर में बनाए जा रहे बहुमाध्य माल परिवहन पार्क, रोपवे और राजमार्गों के किनारे यात्रियों के लिए विकसित की जा रही सुविधाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। श्री गडकरी ने कहा कि इससे सड़क, रेल और अन्य परिवहन साधनों के बीच बेहतर संपर्क स्थापित होगा। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि तकनीक आधारित द्विभाषी प्रबंधन शिक्षा से देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच शिक्षा की दूरी कम करने में मदद मिलेगी। नई दिल्ली से भारतीय प्रबंध संस्थान उदयपुर के नए ऑनलाइन द्विभाषी

0: कृषि व्यवसाय प्रशासन स्नातक पाठ्यक्रम के उद्घाटन समारोह में उन्होंने कहा कि ये पाठ्यक्रम एक अनूठी पहल है जो सरल और आसानी से समझ में आने वाली भाषा में प्रबंधन शिक्षा उपलब्ध कराएगा।
1: इससे मैनेजमेंट एजुकेशन बाइलिंगुअल होने के कारण सरल भाषा में लोगों तक पहुंचे। उम्मीद करता हूं कि इसमें जो भाषा होगी वो ऐसी रखी जाएगी कि सभी को आसानी से समझ में आए और साथ ही साथ ऑनलाइन होने के कारण काफी व्यापक प्रभाव इसका देखने को मिल सकता है।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। महाराष्ट्र, गुजरात और झारखंड में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। झारखंड से हमारे संवाददाता ने बताया है कि कई शहरी और ग्रामीण इलाकों में जलभराव हो गया है।
2: रांची सहित झारखंड के कई जिलों में पिछले दो दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जल जमाव की स्थिति बन गई है, जिससे लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के लिए राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश, 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं और वज्रपात की आशंका जताते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने लोगों से खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
0: महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे और मुंबई गोवा हाईवे पर हुए भूस्खलन का मलबा तुरंत हटाकर यातायात सामान्य करने के निर्देश दिए हैं। एक रिपोर्ट।
3: मुंबई और तटीय महाराष्ट्र के कई इलाकों में आज भी मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी रहा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एसडीआरएफ के अधिकारियों के साथ स्थिति की समीक्षा की। उधर पुणे जिले के मावल तालुका के पाटन गांव में भूस्खलन की चपेट में आने से एक घर दब गया, जिसमें दो लोगों की मौत हो गई। इस बीच आईएमडी ने मंगलवार के लिए पालघर, रायगढ़ और नासिक और पुणे के घाट क्षेत्र में रेड अलर्ट जारी किया है। नासिक जिले में बादल फटने जैसे भारी बारिश की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने हाई अलर्ट घोषित कर दिया है। जिले के संवेदनशील इलाकों में स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। देवप्रिय भट्टाचार्य जी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: मौसम विभाग ने गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक में कल मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिन में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, विदर्भ, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और कर्नाटक में भी मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, केरलम, माहे, ओडिशा, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों में भी अगले 3 से 4 दिन तक ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। विदेश मंत्री एस जयशंकर कतर की यात्रा समाप्त करने के बाद पश्चिम एशिया यात्रा के दूसरे चरण में बहरीन पहुंच गए हैं। डॉ जयशंकर ने मनामा में बहरीन के विदेश मंत्री डॉ अब्दुल लतीफ बिन राशिद अल जायनी से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने भारतीय समुदाय का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए बहरीन के विदेश मंत्री की सराहना की। ईरान की राजधानी तेहरान में आज सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई की अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। खामनेई और उनके परिवार के सदस्यों का पार्थिव शरीर एक विशेष वाहन पर रखा गया है। इन लोगों की 28 फरवरी को इसराइल और अमेरिका की ओर से किए गए हमलों में मृत्यु हो गई थी। ये शोक शनिवार से शुरू हुआ है और बृहस्पतिवार तक जारी रहेगा। आयतुल्ला अली खामनेई को उनके जन्मस्थान मशहद स्थित इमाम रजा की दरगाह में सुपुर्द खाक किया जाएगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जारी विरोध प्रदर्शनों के बीच लोगों ने भारत सरकार से सहायता की अपील की है। पिछले एक महीने से क्षेत्र में प्रदर्शन जारी है। लोगों ने भारत से दवाइयां और जरूरी खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। पिछले 20 दिन से इस क्षेत्र में राशन और दवाइयों की आपूर्ति रोक दी गई है। बॉम्बे शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 521 अंक बढ़कर 78,285 पर बंद हुआ। निफ्टी 160 अंक की बढ़त के साथ 24,430 पर दर्ज हुआ। जिम्बाब्वे दौरे के लिए भारतीय क्रिकेट

ट्यून करिशंती 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल सी दिल तक दिल से दिल तक रे शो चली छी रेनबो समय समर साथी बने हम सहित वन बाय वन कनेक्ट हे सारी चंती तबे नेक्स्ट एसएमएस टी करिशंती संध्याराणी सुतार मठसाही पटमुंडे केन्द्रापड़ारु एवं जगा हाथरे पघा फिल्म रु सुनबाक चाहै छंती गुटे सुंदर गीत तांका परे परे एसएमएस करिछंती हालु भाई सैया आठगढ़ रु सुनबाक चाहै छंती कथा कहिबो म मथा सिंदूर फिल्म रु गुटे ब्यूटीफुल ट्रैक पहुंचे छि आपनका फरमाइश का गाना बैक टू बैक।

नेक्स्ट एसएमएसटी करिछन्ति हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेन्द्रमणि वर्मा, नोखेलाल वर्मा, दत्रेंगी, भाटापारा छत्तीसगढ़।

नेक्स्ट एसएमएसटी करिसेंति आभा सेन, रोहित सेन, दीपक कुमार, राजकुमार भरद्वाज, विमल श्रीवास्तव, मनीष शर्मा, राजदीप राय, रुचिका राय, टाटा स्टील प्लांट्रु एवं गीतटी डेडिकेट करिसेंति अलीसा अपा, तमन्ना रेड्डी, अमित सेन, दीपक कुमार, अशोक कुमार को।

0: ಘಟಿಯೆ ಪಗಲ ಪಿಲ ಪಗಲ ನಿಮೋ ಕಾಮ.
1: ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛୁ ଆଜି ପାଇଁ ରେନ୍ବୋ ଏସ୍ଏମ୍ଏସ୍. ନ୍ୟୁଜ୍ ଇନ୍ ହିନ୍ଦୀ ରିଲେ କରି ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ.
2: ନମସ୍କାର, ଆକାଶବାଣୀ ସମାଚାର କେ ସାଥ ମୈଁ ସରଫିରୋଜୀ. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में आज शाम इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचे. राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने हवाई अड्डे पर श्री मोदी का स्वागत किया. श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया ने 2018 में अपने संबंधों को सुदृढ़ कर व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक पहुंचाया है, जिससे लोगों को लाभ हुआ है. इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे. श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे. वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भी शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे. इसके बाद प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड जाएंगे. प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ वार्ता करेंगे. श्री मोदी ने कहा कि तीनों देशों की यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और सशक्त होगा. श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य डॉ अनिल मिश्रा के इस्तीफे स्वीकार कर लिए हैं. दोनों ने राम मंदिर में दान राशि में कथित गड़बड़ी के मामले में नाम सामने आने के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया था. आज शाम अयोध्या में हुई बैठक के बाद ट्रस्ट ने नए महासचिव की नियुक्ति तक कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव बनाया है. ट्रस्ट ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी का नियुक्ति का भी फैसला किया है. इसके लिए 3 सदस्य समिति बनाई गई है जो उपयुक्त नामों की सिफारिश करेगी. ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने कहा कि पूरे मामले में किसी साजिश की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता. ट्रस्ट ने कहा कि दान में मिली सभी वस्तुएं सुरक्षित हैं.
3: अनेक अच्छे अच्छे पदार्थ जो दिए गए, अनेक वस्तुएं जो प्रदान की गई, वे भी कहां गुल हो गई, वे कहां चली गई. उन सारी वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों ने आपके सामने आपको दिखाने के लिए लाया है. हम आपको दिखाएंगे और वे सारी वस्तुएं जिनका वर्णन आता है, इन सब को हम आज आपके सामने यहां पर रख करके दिखाने वाले हैं. किस प्रकार की 2800 वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों के पास उपलब्ध है और वे सारी वस्तुएं सुरक्षित है.
2: ईरान की राजधानी तेहरान में आज सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई की अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए. खामेनेई और उनके परिवार की 28 फरवरी को इसराइल और अमरीका की ओर से किए गए हमलों में मृत्यु हो गई थी. ये शोक शनिवार से शुरू हुआ है और बृहस्पतिवार तक जारी रहेगा. आयतुल्ला अली खामेनेई को उनके जन्म स्थान मशहद स्थित इमाम रजा की दरगाह में सुपुर्द खाक किया जाएगा. पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शनों के बीच लोगों ने भारत सरकार से सहायता की अपील की है. पिछले एक महीने से क्षेत्र में प्रदर्शन जारी है. लोगों ने भारत से दवाइयां और जरूरी खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है. पिछले 20 दिनों से इस क्षेत्र में राशन और दवाइयों की आपूर्ति रोक दी गई है. अरुणाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री चाउना मीन ने आज भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण बीएसआई अरुणाचल प्रदेश क्षेत्रीय केंद्र और जीबी पंत राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण संस्थान के ईटानगर केंद्र के सहयोग से आयोजित वन महोत्सव में भाग लिया. उन्होंने युवा पीढ़ी से अरुणाचल प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और स्वदेशी ज्ञान प्रणालियों को संरक्षित और बढ़ावा देने का आग्रह किया. महाराष्ट्र, गुजरात और झारखंड में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है. कई शहरी और ग्रामीण इलाकों में जलभराव हो गया है. महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे और मुंबई गोवा हाईवे पर हुए भूस्खलन का मलबा तुरंत हटाकर यातायात सामान्य करने के निर्देश दिए हैं. मुख्यमंत्री ने एसडीआरएफ के साथ समीक्षा की और सभी अधिकारियों को त्वरित समन्वय कार्रवाई के निर्देश दिये.

0: इस बीच मौसम विभाग ने गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक में कल मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में आज देर रात 12:30 बजे पुर्तगाल का मुकाबला स्पेन से होगा। एक अन्य मुकाबले में सुबह 5:30 बजे अमरीका का सामना बेल्जियम से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ट्यून करी छंती 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक।
2: आजिर शेष समाचार मुख्यांश सह म सुभाष चंद्र शतपथी। त्रिराष्ट्र गस्तर प्रथम पर्यायर आज इंडोनेशियार जाकर्ताठारे पहुंचिछन्ति प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी। जाकर्ता विमानबंदर प्रधानमंत्री मोदी को भव्य स्वागत संवर्धना प्रदान करा जायछि। आसंता जानुआरी बा फेब्रुआरी मास शेष सुद्धा खोर्धा बलांगीर रेल लाइन चलाचल करिबा नै सूचना दैछन्ति रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव। ब्रह्मपुर सुरट उधना अमृत भारत एक्सप्रेस रो नियमित सेवार शुभारंभ अवसर रे केन्द्र रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव ब्रह्मपुर रेल स्टेशन को विश्वस्तरीय रेल स्टेशन रे परिणत करिबा नै घोषणा करिछन्ति। विश्व प्रसिद्ध पुरी रथयात्रार परिचालना प्रस्तुति समीक्षा करी समन्वय रक्षा उपरे गुरुत्व प्रदान कले मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। पुरी कोरापुट पुरी एक्सप्रेस ट्रेन चलाचल हेला शुभारंभ। रथयात्रा समय 300 ऊर्ध्व स्वतंत्र ट्रेन चलाचल करिबा नै सूचना देले केन्द्रमंत्री अश्विनी वैष्णव। पुरी रेल स्टेशन रो उन्नतीकरण कार्यर समीक्षा कले केन्द्रमंत्री श्री वैष्णव। आसंता 9 तारीखें हीराकूद नदीबंधर प्रथम बन्या जल निष्कासित हेबो। भारतर श्रेष्ठ 10 मेडिकल कॉलेज मध्यरे स्थान पाइला एम्स भुवनेश्वर। बैतरणी नदीर उच्च जलस्तर परिस्थितिर समीक्षा कले राजस्व विपर्यय परिचालना मंत्री सुरेश पुजारी। राज्यरे सहरांचल भित्तिभूमि को सुदृढ़ करिबा एवं नागरिकक जीवनधारणर मानर सुधार आणिबा पई मुख्यमंत्री सहरी विकास योजना अधीन 37 पौरांचल 494 प्रकल्पर उद्घाटन शिलान्यास करिछन्ति विभागीय मंत्री डॉ कृष्णचंद्र महापात्र। एवं फिफा विश्वकप टूर्णामेंटर राउंड 16 आज राति पर्तुगाल स्पेन को भेटा बेले आसंता काली अमेरिका और बेल्जियम भितर मुकाबला। समाचार मुख्यांश आज पई एतिकरे शेष होला।

हे दारुदियो तुम्हें तो परम ब्रह्म सचराचर जगतर एकमात्र भरोसा तुम्हें हेले तुम्हें जिते बड़े सहे आठ गरा जल रे स्नान कर तुम्हें को भी कौन हो जाए ज्वर दारुदियो मानवीय लीलारे बंधा कोटि कोटि भक्त जनंकर इच्छा भरोसा विश्वास प्रतीक हेले सी ज्वर आगे हारी जाए हाँ से तो अणसर घरे आज लगे सारे देहरे फुलूरी तेल ये देखाए जे प्रभु मानवीय लीलारे केते परिमाण रे बंध जगन्नाथ संस्कृति प्रेम समर्पण भक्ति भावर संस्कृति इठी जेतिकी भल पाइबा जेतिकी भाव सेतिकी मानवीय लीला मध्य अछि एठी भगवान ऐश्वर्यर अधिपति ही मध्य भक्तर भाव आगे बंधा से राजाधिराज किंतु भक्त दासिया हाथरु नड़िया ग्रहण करि दियंती से जगतर नाथ किंतु भक्तटिए तांकु डाकिले बड़दंडरे नंदी घोष को अटकी बालीरथ आड़े आकर्षित हो जाती से परम ब्रह्म किंतु भक्तर भोक को देखि पारंती सुना थाली रे खाइबा आणिबा के चली जाती संपर्क कौन से भय दूरतार संपर्क नुहे ये हूँ एक मधुर आत्मीयता से तो ओडिया टे दुख पाइले अभिमान करी कहे कालिया को छड़िया आउ कहे तो आखि को कौन किसी देखा जाऊनी केते दुख केते कष्ट केते शोकरे अछि मु आउ सुख जदि टिके पाए कहे सबू

0: आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक वर्तमान आसंत सुनिबा आमर स्वास्थ्य आमर स्वास्थ्य आज शुणु दांत उठिबा समय समस्या ए विषय आलोचना करिसेंती डाक्टर मानस रंजन पाणी।
1: दांत आम शरीर एक गुरुत्वपूर्ण अंग। शब्दर सठिक उच्चारण करिबा खाद्य खाइबा ठारु आरंभ करी सौंदर्य तथा व्यक्तित्वर परिप्रकाश पई दांतर भूमिका गुरुत्वपूर्ण। दांतर माढ़ी ऊपर को दिशिथिबा अंश को मुकुट बा क्राउन कहुआ। माढ़ीर मांसल अंश थिबा अंश को ग्रीबा बा नेक कहुआ। दांतर बाकी अंश जहां माढ़ी मध्यस्थ अस्थि मध्यर थाए ताकु मूल बा रूट कहुआ। सेहिपरि दांतर ऊपर स्तर को एनामेल, मध्य स्तर को डेंटिन और भीतर स्तर को मंजे बा पल्प बोली कहुआ। शैशव अवस्था उठुथिबा दांत को अस्थायी दांत बा टेम्पररी टूथ और एही दांत पड़ीगला परे जेउ दांत उठे और वृद्धावस्था पर्यंत रहे ताकु स्थायी दांत बा परमानेंट टूथ कहते। दांतर विकास तीनोटी अवस्था दे गति करे। सेगुडी कहला मिनरलाइजेशन, इरप्शन, एक्सफोलिएशन। दांतर तयारी समय को मिनरलाइजेशन कहा जाए। गर्भावस्था रो आरंभ करी तीन वर्ष पर्यंत शैशव दांत तयारी हुए। सेहिपरि स्थायी दांत जन्म रु आरंभ करी 25 वर्ष पर्यंत तयारी हुए। विटामिन सी, विटामिन डी एवं कैल्शियम इत्यादि दांत तयारी रे निहाती आवश्यक हुए। दांत उठिबा अवस्था को इरप्शन स्टेज बोली कहते। शिशु मानकर छामु दांत 6.5 मास रु 8 मास, श्वान दांत 16 मास रु 20 मास, प्रथम और द्वितीय चर्बण दांत यथाक्रमे 12 रु 16 मास एवं 20 रु 30 मास मध्य उठिथाए। स्थायी दांत गुड़िक 6 वर्ष रु उठिबा आरंभ करे एवं 21 वर्ष रे संपूर्ण हुए। दंत विकास शेष अवस्था दांत पड़ीबा बा एक्सफोलिएशन स्टेज बोली कहा जाए। शैशव दांत गुड़िक पड़ीला परे जाई स्थायी दांत गुड़िक उठिथाए। शिशु को 13 मास हेबा पर्यंत जदि कोनोसी दांत न उठे ताहले दांत उठिबा एक समस्या रूपे देखा दिए। अंतःस्रावी ग्रंथि जेपरि कि पिट्यूटरी, थायरॉइड, पाराथायरॉइड रु हार्मोन क्षरण कम बा अनियमित हेले दांत उठिबार विलंब होइथाय। एक्सरे बा रंजन रश्मि साहाज्यरे माढ़ीर अस्थि मध्यरे दांत अछि कि ना जानि हुए। गुणसूत्र जनित किछि विरल रोग बा लक्षण समूहरे आदो दांत नथाय एहाकु आनोडोन्सिया बोली कहन्ति। जन्म समय रे उपस्थित थिबा दांत जहाँकि अति विरल ताकु नाटाल टीथ बोली कहन्ति। प्रति 2000 नवजातक रे जणकर एई दांत देखा जाए जहाँकि मुहर अन्यान्य रोग जेपरिकि ग्रहण खंडिया बा गुणसूत्र जनित रोग रे देखा जायथाय। एहा शिशुर मातृस्थन पान रे असुविधा सृष्टि करे। एहाकु साधारणत बाहर करिवाक पडिथाय। दांत साधारणत तळ माढ़ीर आग उठिथाय एवं सामनारु पछपटकु एही क्रम रे उठिथाय। शैशव अवस्था रो दांत जदि समय पूर्वरु पड़ी जाए ताहले सेही जगार स्थायी दांत जल्दी उठिथाय। दांतरे आघात, हिस्टियोसाइटोसिस बा न्यूट्रोपिनिया आदि रोग गुड़िक रे मध्य अस्थायी दांत गुड़िक जल्दी पड़ी जाए। साधारणत शैशव दांत जदि ठिकणा समय रे न पड़ंती ताहले ता पछकु उठुथुवा स्थायी दांत ठीक भाबरे उठि पारे नाही एवं बाहाडा होई जाए। तेणु शिशुटी खाद्य ठीक भावे चोबाई पारे ना एवं दांत मझे फांक खाद्य कणिका गुड़िक रही प्लेक सृष्टि करती एवं दंत क्षय करती। साधारणत अस्थायी दांत पड़ 5-6 मास मध्य स्थायी दांत उठिथाए।

वेलकम बैक अगेन ट्यून कर चुनते 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो को हो चुनते दिल से दिल तक। 1934 जुलाई 5th माने आज रो दिन रे इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन एबेकार बीडब्ल्यूएफ गठन हेतला एवं एही ऐतिहासिक दिन को यादगार करके रखबा पई प्रतिवर्ष ए 5th जुलाई को वर्ल्ड सेलिब्रेट करूची इंटरनेशनल बैडमिंटन डे भाबरे वर्ल्ड रो सबुठारु स्पीड रैकेट स्पोर्ट्स भाबरे परिचित ए बैडमिंटन विषय रे आपण माने समस्त त निहाती भाबरे जानिथिबे बैडमिंटन को आमे माने मध्ये इंडिया रे बहुत खेळु कारण ए खेळ रो ओरिजिन जोड़ा रही छि आम देश सहित आम देश रो गुटे एम्ति शहर सहित जोड़ी के रही छि जा विषय रे आपण मन मध्ये निश्चय जानिथिबे। ताले चलन तो आज कहू छि बैडमिंटन खेळ रो टिके इतिहास विषय रे टिके आश्चर्य आपण को लागि पारे किंतु ए बैडमिंटन हजार हजार वर्ष पूर्वे ग्रीस

0: Welcome back again. Tune Karishan the 100.4 Akashwani FM Rainbow Kohushanti Dil Se Dil Tak Musical Hum Safar Biswajit Achi Apanunka Sangare Radio Sapakara Apanamane Pura Bartman Excited Hijaitwe Karana Summer Hijaichi Nota Bajeko Minute Dial in Life Chit Chat Apanamananga Sata Sidha Sadaka Connect Havara Time Hijaichi Number Huchi 0671230315 Korn Kohibaji Kuvisar Kotha Bajame चलंतु सेविसरेटिक इंट्रोडक्शन दे दिया अपन को साथी जो बरसार ऋतु के बड़ा पागो बदले ने बंधु ये अनेक किछ बदले दिए काही केते पुरना स्मृतिर एल्बम को भी ये खोली थी आज सकाळ जते बेले घरु आसला बेले बाहर पानी चोइत बारे देखले ना मनटा हटात धाई गला पिला दिनर सही वर्षा दिन बेळकु कागजर डंगा सही निष्पाप कागजर जहाज मन अच्छे एवं भी आपणकर से वर्षा हेले आम सबुठू बड़ संपत्ति थिला रफ खाता जेकोसी खबर कागज पुरुणा खाता बही ब्याग्रु पुरुणा खाता खंडे बाहर कर बड़ जतन फोल्ड कर जो डंगाटी या केवल कागज टुकड़ा ना सीटा आम पाद सबुठ बड़ इंजीनियरिंग कहार डंगा छोट कड़े सीधा कहार टिके बंगा कहार पुणी साधा कागज रे तो पुणी कहार रंगीन मलाट रे से कागज रो डंगा तासु तो जुड़ाक पुणी केते स्मृति से विषय कहिबे आज आपण कागज रो डंगा विषय कहिबे एवं ता सहित नई सुरे भासि जाउथवा से डंगा जदि आपण केबे नई रे सफर करिचंती वर्षा दिन रे होए तो आपण को गां पाखरे भी थाई पारे नही एवं से नई रे जो नई रे आपण अनेक पहरिचंती खरा दिने हठात बर्षा दिने से नई रे पानी बढ़ी गला परे जत डंगा उपर बसी से नई रे गाँ को देखती लगे जमती गाँटा आउ टिके नुआ लगुची गाँटा मोर नुआ रूप पाई जाई सहित से नई जो नई रे केतेजे पहरिचंती आपण केतेजे खेलिचंती आपण से नई रो उपरे तारी धारे धारे जतबे डंगारे बसी जाउथबे तार मजा भी अलग एमती करिचंती केबे डंगारे सफर से विषय कहतु कौन सब स्मृति अच्छी डंगारे बुलिबार स्मृति आउ कागज डंगार स्मृति चलंतु आसी जाइछि फर्स्ट कॉल देखिबा की करिचंती कोठु करिचंती आउ कौन कहउचंती कागज डंगा आउ नईर डंगा बेसे रे नमस्कार की कोथले कोठु कोथले
1: नमस्कार भाई
0: नमस्कार
1: सफर कर भंडा गछर
0: नळी आरंभ कर आमे सुनिया आरंभ करूछु
1: निश्चिंत जेमति स्कूल रे बेसी स्कूल रे क्लास रे जतळे वर्षा हुए
0: आगे
1: जतळे कागज चिरिकी रफ खातर हो किंबा आ संग मान खातर हो सेटा पॉकेट रे डंगा बेली गोटे थाए आ गोटे साधा डंगा बेली थाए
0: आगे आगे
1: सेटा करी की झरका पटे सान को साडे नजर करथो आडे माने करिवा को पडथियो
0: अच्छा
1: तार बजे भसई बार से मजा टा टिके नियारा थाए वर्तमान स्कूल पिला माने आयने करूसंती कि नै सेटा भी आमे देखि पारुनु किंतु घरे भी सेमती वर्षा हाले माने जे टुपटुप जे टप टप हे कि पडथबो टुमका भलिया जो हेथिबो
0: आगे
1: सेटा भल लागे से समय रे बसेला बेले धर बुडी जाउथबो कि कोन होतो से जो कागज रे डंगाटा भल लागे टिके मोटा

0: हेले तुम्हें जरो कहा पाई कोई मंदिरे। जय जगन्नाथ। नमस्कार।
1: नमस्कार। बहुत सुंदर गीत रु आरंभ कले भाई परिचय दे दिंतु समस्त को।
0: मु रेडियो लाभर तथा जातीय अंतरजातीय रेडियो श्रोता नारायण प्रधान बी ब्रह्मपुर बुगुड़ा जिला गंजाम।
1: आज्ञा नारायण भाई कौन कहे आज टॉपिक उपर कहतु टिके।
0: देखु आज तो कागज डंगा आ
1: नईरे भासुथरा डंगा
0: नईरे डंगा पर टॉपिक रखि जंदी।
1: आज्ञा
0: आ मु सब सुतांगर सुनौछि मोर मध्ये मन पड़ि आछि पिला दिनर स्कूल बेल कथा मु बहुत थोर माडा खाइ छी मोर अफुकातर मझि पुस्ता सब पळा आछि खाली डंगा चेरे करि माने मु दुई तीन प्रकार डंगा करे गोटे हला पॉकेट डंगा बेलून डंगा कागज रे सब इन प्रकार डंगा करि ताको सब चित्र आंखि गिरि हमर सब घर बा सामने गोटे नाला थाई आउ सेठे मु बसाय सब बहुत सेतर खुशी लागे। आउ नईरे डंगा रे मु दुई चार थोर बसि छी कि भारी भय लागे थोर आस्का बन्या समय रे पुल भांगी गेल हमर मन अछि से समय रे मु थोर नई पारी हेथिली डंगा रे मु डंगा रे
1: भारी भय
0: लगे मतलब
1: कहीं पहरा
0: जानी
1: ठीक अच्छे। बहुत सुंदर कथा आज मन पड़ जाए सब भय कथा कागज डंगार कथा आमको कॉल कले बढ़िया सुंदर गीत टे गाइले बहुत बहुत धन्यवाद भाई रही। नमस्कार।
0: नमस्कार।

वेलकम बैक अगेन ड्रेन वे सेमेस्टर सिलसिला आरंभ हो जाई वर्तमान शीघ्र शीघ्र आपण माने फोन उठे दियंतु आउ एसएमएस बॉक्स को जाई के टाइप करंतु एफएमआरसी तापर लिखि दियंतु कोई भी तो सुनिबा पई चाहुचंती केउ चलचित्र रो केउ एल्बम रो से गीत टी आसुची एवं कहा को डेडिकेट करबा पई चाहुचंती से गीत तांको ना ठिकाना एवं निज ना ठिकाना से तो पठि दियंतु 09495963210 रे।

चाहिए हाथों में हाथ डाल, ए गुल चेहरा परी जमाल, मुत्तसे दिल उदास है, तेरे होठों की प्यास है, ए दिल भर मेरे लब पर कब छलकेगा तेरे लब गर।

प्रणाम सुप्रभात सहित उत्तप्त निदाघर प्रभा को प्रभु प्रतिहत करी करुणामयी वर्षारणी आगमन आज धरा उल्लेसित सुंदर मेसेज लिखिंट चंद्रमणि मिश्र सीडीए सेक्टर 11 कटक्रु प्रबल वर्षा सह शीतल बा समस्त प्राण से नुआ चेतना भरीदेगी नव आशा नव उन्मादना वर्षा भेजा यही प्रभात जपरि मनोरम ताकि आज रविवार एफएम डेनबोर कार्यक्रम कागज डंगा और काठर डंगा सतरे सब् श्रोता मंडली मन प्राणी भावर सातरंग भरीदेगी आपणकर सुंदर उपस्थापना रिमझिम वर्षा पी समस्त मनरे भरीदे नवसृजन मादकता आज हूँ मो भणजा तथा आकाशवाणी नियमित श्रोता अविनाश मिश्र बापी जन्मदिन ए अवसर में जन्मदिन शुभेच्छा जनई बहुत बहुत धन्यवाद आपण को इतने सुंदर मेसेज पाई एवं अविनाश मिश्र को मध्य आम तरफ अनेक अनेक शुभेच्छा एवं अभिनंदन।

हालु भाई शायन आठगढ़ आमक मेसेज करते शुभ सका सहित गुड मॉर्निंग सहित आज सका प्रत्येक कार्यक्रम भर लगी लिखी थे तेज आज वर्षा भिजा सका गीतटी आम बजे पारू से दुखित कि ना पढ़ी थे हूं से खुशी हे निश्चय बहुत बहुत धन्यवाद भाई मेसेज कर

0: আকাশবাণী এফএম রেনবো কাটাক পোস্ট বক্স নম্বর 111 প্রচার করছো আকাশবাণী দিল্লি কেন্দ্র রু
1: कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111
2: पोस्ट बॉक्स नंबर 111
3: नमस्कार पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में मैं नीलम अलकानिया आप सभी का स्वागत करती हूं। साथियों जैसा कि आप जानते ही हैं हमारा ये कार्यक्रम मन की बात का विस्तार है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बार मन की बात में हमारे रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की बात कही है, साथ ही देश को उन्होंने प्रेरणा दी है कि हम आत्मनिर्भर तो हों लेकिन अपनी सेनाओं के बारे में हम और अधिक जानें, उस कार्य प्रणाली को समझें और साथ ही जो हमारे मन में हमारी सेनाओं के लिए सम्मान है, हमारे सशस्त्र बलों के लिए सम्मान है, उसे हम गाढ़ा भी करते जाएं, क्योंकि ये काम आसान तो नहीं है जो हमारे बल हमारी सेनाएं हमारे लिए करती हैं। हमारे हर पर्व पर एक एहसान हमारे फौजियों का है, वो सीमा पर तैनात हैं, इसलिए हम सीमा के भीतर सुरक्षित हैं और खुश भी हैं। तो रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता क्यों जरूरी है, कैसे होगी, अभी तक हमारी उपलब्धियां क्या हैं, ऐसे बहुत सारे सवाल हो सकता है आपके मन में भी हो। हम इन सभी सवालों के जवाब आपको देंगे। इस समय स्टूडियो में हैं हमारे विशेषज्ञ मेजर जनरल संजय मेस्टन है, भारतीय थल सेना के सेवानिवृत्त अधिकारी एयर कमांडर डॉक्टर अश्विंदर सिंह बहल हमारे साथ हैं, वायुसेना के सेवानिवृत्त अधिकारी कमांडर विक्रमजीत सिंह हैं, नौसेना से सेवानिवृत्त अधिकारी। आपका बहुत बहुत स्वागत।
4: थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच।
5: जय हिंद।
3: जय हिंद सर। तो ये सारे सवाल जो आपके मन में होंगे साथियों, आपको इनका जवाब आज मिलेगा, बहुत रोचक तरीके से मिलेगा और बेहद साधारण सी भाषा में मिलेगा, जो आप और मैं यानी हम सिविलियन आसानी से

0: समझ पाएंगे। लेकिन पहले मैं आपको सुनवा रही हूँ मन की बात का वो हिस्सा जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का उल्लेख किया है, सुनिए।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, हाल ही में मुझे कोलकाता में नौसेना से जुड़े एक कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिला। वहां INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय को भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया। इन शिप्स की डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग तक सब कुछ स्वदेशी है। साथियों, जून के महीने में ही एविएशन सेक्टर में भी देश ने एक बड़ी सफलता पाई। C-295 यह विमान मेड इन इंडिया है और C-295 विमान ने अपनी पहली उड़ान पूरी की है और ऐसे 40 विमान भारत में ही बनाए जा रहे हैं। इससे MSME और एरोस्पेस सेक्टर को नई शक्ति मिल रही है, रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं और आत्मनिर्भर भारत का संकल्प भी मजबूत हो रहा है। DRDO ने स्वदेशी लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया है। इसको DRDO की लेबोरेटरी और इंडियन इंडस्ट्री पार्टनर्स ने मिलकर बनाया है। यानी आज समुद्र से लेकर आकाश तक हमारा भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है।
0: तो सुना आपने माननीय प्रधानमंत्री जी ने किस तरह से हमें प्रेरित किया है। आइए अब अपने सवाल हम सीधे अपने विशेषज्ञों तक लेकर जाते हैं और इनके जवाब जानते हैं। तो संजय मेस्टन सर, सबसे पहले मैं आपसे ही जानना चाहूंगी, जब हम रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की बात करते हैं तो ये क्यों जरूरी है?
2: पहली बात धन्यवाद और जय हिंद। आपके इंट्रोडक्शन में दो मेरे को पॉइंट्स बड़े अच्छे लगे। एक आपने बोला कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने बोला है कि लोगों को फौज के बारे में पता होना चाहिए और दूसरा आपने ये भी बोला कि हम सिविलियन को पता होना चाहिए। तो एज अ यूनिफॉर्म पर्सन मैं तीनों के बिहाफ पे बोल सकता हूँ कि सिविल और यूनिफॉर्म की बात नहीं है
0: जी।
2: आम तौर पे इट इज यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म
0: जी,
2: क्योंकि घर वाले भी हमारे ना वो शब्द नहीं पसंद करते सिविल। एनीवे, देखिए प्राइम मिनिस्टर ने बहुत सही बोला है, लोगों को भारतीय सेना के बारे में पता होना चाहिए क्योंकि जिस प्रकार देश में तीन पिलर्स होते हैं, खासकर पॉलिटिकल लीडरशिप होती है, इकोनॉमिक होता है और डिफेंस, ये सबसे जरूरी तीन चीजें हैं और इकोनॉमी और डिफेंस को रिलेटेड है। तो इसीलिए मैं सोचता हूँ देशवासियों को पता होना चाहिए कि सेना क्या है। अब आत्मनिर्भरता भारत क्यों जरूरी है, देखिए आपने एक और अच्छा शब्द बोला, बहुत सीधी सरल भाषा में हमें बताना चाहिए और वही मैं सोचता हूँ। देखिए आम जनता के लिए ये पता होना चाहिए कि एक डिपेंडेंसी होती है, जैसे कोविड के टाइम में आप देखिए
0: जी सर,
2: कि जो भी घर में कोई भी फार्मर था या कोई भी इंसान जिसने घर में सब्जियां उगा रखी थी, सब कुछ उगा रखा था, तो उसको क्या है कि कोविड के दौरान कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। लेकिन अगर कोई दूसरा आदमी किसी दुकान पे, एक ही दुकान पे निर्भर है
0: जी,
2: और वो दुकान भी बंद हो जाती या वो दुकानदार बोलता है मैं नहीं दे सकता हूँ, मेरे पास स्टोर खत्म हो गया, तो आप सोचिए वो क्या हाल हो जाता है। तो ये छोटा सा मैं घरेलू एग्जांपल दे रहा हूँ। सेना में आत्मनिर्भरता इसलिए जरूरी है क्योंकि जब हम लड़ाई के लिए जाते हैं तो हमारे जवान और ऑफिसर्स वो इक्विपमेंट के साथ लड़ते हैं और वो इक्विपमेंट में एक कॉन्फिडेंस, भरोसा जब आता है, जब हमें पता है ये हमारे द्वारा ही बनाया गया है और हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक बना है, जिस टेरेन में हम लोग रहते हैं, जिन पहाड़ों में रहते हैं या जिन कोल्ड कंडीशंस में रहते हैं। तो कहने का मतलब है आत्मनिर्भर भारत बहुत जरूरी है और आज जो हमारी डिपेंडेंसी है बाहर देशों में ऑलमोस्ट खत्म होती जा रही है और आज भारत सेल्फ रिलायंट देश है, जो खुद चाहे AI हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, चाहे रॉकेट्स हो, एयरफोर्स हो या नेवी हो। तो कहने का मतलब है ये सारी चीजें एक दिखाता है कि एक कंट्री के अंदर सेल्फ रिलायंस है और एक पावर है। जब हमारे पास सब कुछ है तो हमें किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है और देश में हमारी सेना को पूरा एक भरोसा होता है कि जो हमें लड़ाई के लिए चाहिए, लॉजिस्टिक्स से लेकर सब कुछ, वो हमें स्पेयर पार्ट से लेकर सब मिलता रहेगा। तो ये है आत्मनिर्भर भारत और ये पिछले, मैं बोलूंगा, एक डिकेड के अंदर या 10 साल में इस पे बहुत तीव्रता हमने देखी है
0: जी.
2: तो छोटे से सारांश में ये है आत्मनिर्भर भारत.
0: यानी हमारे पास अपनी बनाई हुई अगर चीजें रहेंगी तो एक तो हमें भरोसा रहेगा कि हमारी जरूरत के हिसाब से है, दूसरा अगर हमें उसके

0: कुछ पास चाहिए तो वो हमें समय पर मिलेंगे, हमें किसी दूसरे देश पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। तो डॉक्टर अश्मिंदर, मैं आपसे जानना चाहूंगी, हम मॉडर्न एज में वॉरफेयर जो है उसमें काफी बदलाव देख रहे हैं, तो आप अपने अनुभव से बताएं कि इन दिनों क्या नई तकनीक आ रही है और क्या भारत में वो उपलब्ध है या अभी भी हम उसे इम्पोर्ट कर रहे हैं।
1: बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा आपने, और जो जनरल साहब ने बताया और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा, मैं उसको आगे लेके जाना चाहता हूँ। 1991 में एक पिक्चर आई थी सौदागर, उसमें एक बड़ा इंटेंस डायलॉग था
0: जी,
1: राजकुमार जी का और उनके साथ दिलीप कुमार जी,
0: जी।
1: तो उस डायलॉग को वो ऐसे शुरू करते हैं, मैं तुम्हें मारूंगा और जरूर मारूंगा, लेकिन वो बंदूक भी हमारी होगी, वो गोली भी हमारी होगी और वक्त भी हमारा होगा
0: जी।
1: ये वो वक्त आ गया है जिसको मैं कहता हूँ इन्फ्लेक्शन पॉइंट। इस वक्त के अंदर हम जिस तेजी से इंडिजिनाइजेशन कर रहे हैं उसका आने वाले 10 साल में बहुत फायदा होगा। आपने बताया जो युद्ध में टेक्निक्स चेंजेस आए हैं, सबसे पहला चेंज आया है कि अब जो युद्ध है वो बियॉन्ड विजुअल रेंज हो गए हैं, यानी कि आमने सामने भी फौजें नहीं आती हैं, लेकिन इतना डिस्ट्रक्शन हो जाता है कि जिससे पूरी इकोनॉमी देश की हिल जाती है। आपने रशिया यूक्रेन का युद्ध देखा, आपने ईरान का देखा, आपने देखा कि पहले तो फाइटर जहाज टैंक्स बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट थे, लेकिन अब ड्रोन्स भी बहुत इम्पोर्टेंट हो गए, ना केवल लंबी दूरी से अटैक लेकिन बहुत सस्ते सिस्टम्स का इस्तेमाल करते हुए भी उतनी भारी इकोनॉमिक डैमेज, रिफाइनरीज पे आग, गैस के एरियाज, प्रोडक्शन साइट जैसे रास लाफान था उसके ऊपर हमला कतार के अंदर, तो उसका देखिए 3 से 8 साल लगेंगे उसको वापस 100% प्रोडक्शन कैपेसिटी में आने के लिए, कितना बड़ा पूरे विश्व के लिए वो नुकसान है। तो ये जो छोटे छोटे सिस्टम भी है ये भी आउट ऑफ प्रोपोर्शन रिजल्ट कर सकते हैं। और एक और बड़ी अहम चीज आ जाती है आज के जमाने के अंदर, हम जब इंपोर्ट करते हैं डिफेंस इक्विपमेंट बड़ी महंगी होती है। अब देखिए हम रफाल जहाज लेना चाहते हैं 114, 3.25 लाख करोड़ के हैं, ये 3.25 लाख करोड़ की कितना हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज है वो $40 बिलियन के करीब चला जाएगा दूसरे देश में फ्रांस के अंदर। तो अगर हम इंडिजिनाइजेशन बढ़ाते हैं, आपको बड़ी अच्छी चीज मैं जनरल साहब ने जो इनकी आर्मी ने की है, 91% एम्यूनिशन जो है आज इंडिजिनाइज हो गया है, यानी कि भारत के अंदर ही प्रोड्यूस होता है 175 में से 159 डिफरेंट टाइप की एम्यूनिशन वो आज भारत के अंदर ही बनती है। और पिछले अगर हम दशक में देखें उससे पहले, तो उस दशक के अंदर हम देखते थे कि हमारी जो इम्पोर्ट थी वो 70% थी बाहर से, आज 62% हम भारत के अंदर ही प्रोक्योरमेंट जो है भारत के अंदर ही बनाते हैं। 1.54 लाख करोड़ पिछले साल का था डिफेंस प्रोडक्शन, इस साल का है 1.78 लाख करोड़ डिफेंस प्रोडक्शन। हमारा जो डिफेंस एक्सपोर्ट था 23,622 करोड़ से बढ़कर 38,424 करोड़, यानी कि 63% बढ़ गया है और आने वाले समय में 50,000 करोड़ हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं हम ना केवल फॉरेन एक्सचेंज को बचा रहे हैं, हम फॉरेन एक्सचेंज बना भी रहे हैं डिफेंस एक्सपोर्ट से। और लास्ट चीज जो इस पे मैं कहना चाहता हूँ कि एम्प्लॉयमेंट, सोचिए सैकड़ों आज इंडस्ट्रीज बन गई हैं, एमएसएमईज बन गई हैं जो गवर्नमेंट की अदिति पॉलिसीज हैं, आईडेक्स पॉलिसीज हैं या दूसरे जो प्रोत्साहन के मटेरियल हैं या जो हम को डेवलपमेंट कर रहे हैं। आपने बताया ना प्रधानमंत्री जी कह रहे थे C295 एयरक्राफ्ट, उससे 15,000 जॉब्स बढ़े हैं, उसी तरीके से ब्रह्मस से 25,000 बढ़े हैं, दूसरे बड़े बड़े LCH प्रोजेक्ट है उससे भी 20,000-25,000 जॉब्स बढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो 1,10,000 जॉब्स हमको सिर्फ दो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स हैं जो यूपी और तमिलनाडु है 2027 तक वहां पे बढ़ेंगे, तो पूरे देश के अंदर एक इकोनॉमिक रेवोल्यूशन ला सकते हैं जब हम इंडिजिनाइज करते हैं और एक्सपोर्ट करते हैं डिफेंस इक्विपमेंट को।
0: जी, यानी हम स्वदेशी को बढ़ावा तो दे रहे हैं हर फ्रंट में, लेकिन जब हम रक्षा क्षेत्र में स्वदेशीकरण की बात करते हैं तब भी बहुत सारे फायदे उसके हैं और डिपेंडिंग इंडस्ट्रीज जो हैं उनको भी लाभ मिलता है और पूरा एक इकोसिस्टम है जो मजबूत होता है। जी, आपने फिल्म के डायलॉग से शुरुआत की थी तो मैं आपसे ही जानना चाहूंगी कि आपकी पसंद का कौन सा गाना हम यहाँ श्रोताओं को सुनवाएं।
1: देखिए, बहुत अच्छा है, एक शब्द है, मैं चाहता हूँ कि हमारे श्रोताओं को सुनाइए।
0: जी,
1: देव सेवा पर मोहे अहे शुभ कर मन ते कभो न टरो न डरो असो जब चाहे लरो निश्चय कर
0: अपनी जीत करूं। जी जी, हमारे स्कूल्स में ये प्रार्थना भी होती थी।

0: शब्द के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में। आज हम इस कार्यक्रम में बात कर रहे हैं रक्षा क्षेत्र में स्वदेशीकरण की। माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने की बात की और साथ ही इसके महत्व को समझने के लिए भी हमें प्रेरित किया। हमारे विशेषज्ञ हमारे साथ स्टूडियो में है। अब मैं कमांडर विक्रमजीत सिंह से जानना चाहूंगी, सर आप नौसेना में स्वदेशीकरण को किस तरह से देखते हैं और क्या इसका महत्व है?
1: पहली बात तो जय हिंद आपके धर्म श्रोताओं को। नौसेना मैं ये बड़े गर्व से कहना चाहूंगा, आप सबको बताना चाहूंगा कि नौसेना वॉज द फर्स्ट मूवर, यानी कि प्राथमिक जो कदम लिए गए वो नौसेना में लिए गए एज फार एज इंडिजनाइजेशन इज कंसर्न। देखिये हम लोग जब स्वतंत्र हुए थे, जब हमें आजादी मिली थी 47 में, तो हम लोग ऑब्वियसली एक ब्रिटिश कॉलोनी थे, तो उनके कुछ एसेट्स हमारे पास 30-35 जहाज उस टाइम भारतीय नौसेना को मिले, मोस्टली वो ब्रिटिश ओरिजिन ही जहाज थे। उधर से जो नेवी शुरू होकर आज अगर आप देखते हैं तो हमारे पास 150 से ज्यादा जहाज हैं, जिसमें से आप मान के चलिए ऑलमोस्ट 60-70% से ज्यादा हमारे जहाज इंडिजिनियसली डेवलप्ड है। तो अगर आप नेवी का रोल देखते हैं, आप हिस्ट्री देखेंगे, तो कैसे हमारे एसेट्स बढ़े, मतलब 1960 में हमारे पास विक्रांत आया, पहले वो भी एक इंग्लिश ओरिजिन जहाज था
0: जी।
1: उसके बाद हमें रशियन से सपोर्ट मिलनी शुरू हुई 60 के दशक में, उन्होंने हमें सबमरीन दिए, उन्होंने हमें कोई और वेसल्स दिए, लेकिन 70 और लेट पार्ट ऑफ 70s में हमने अपना स्वदेशीकरण कार्यक्रम शुरू कर दिया था
0: जी।
1: हमने गिरी क्लास शिप्स बनाए, उदयगिरी क्लास जो थे, नीलगिरी क्लास शिप्स थे, लियांडर्स थे वो ब्रिटिश डिजाइन के, लेकिन वो बनाने शुरू किए। उसके बाद हमने गोदावरी क्लास शिप बनाने शुरू किए और धीरे धीरे धीरे हमारी जो डिजाइन कैपेबिलिटी है और हमारी जो इंडस्ट्री है वो धीरे धीरे धीरे मच्योर होती रही कि और आज ये हाल है कि आप हर एक 40 दिन में, आप मान के चलिए 6 से 7 हफ्ते में हम एक शिप लॉन्च कर रहे हैं इस स्पीड पे। और अभी आपने रिसेंटली देखा माननीय प्रधानमंत्री जी ने 3 शिप एक दिन पे जो कमीशन किए हैं वो अपने आप में हिस्ट्री में आई थिंक पहली बार हुआ है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण लक्ष्य है कि 3 बड़े जहाज, छोटे जहाजों की बात नहीं हो रही है, दूनागिरी जो एक फ्रिगेट है खुद ही 7,000 टन के करीब उसकी डिस्प्लेसमेंट, संशोधक सर्वे वेसल लार्ज वो भी 2,500-3,000

0: उसके डिस्प्लेसमेंट अग्रे मिसाइल जो हमारा शैलो वाटर क्राफ्ट, तो इस लेवल पे हम पहुंच गए हैं। ये मैं आपको कहना चाहूंगा नीलम जी, जब हमने 1990 में जब हमने फौज ज्वाइन की थी तो सारे हमारे एसेट्स मोस्टली तो रशियन ओरिजिन थे या कुछ ब्रिटिश थे जो कि अपने लास्ट लेग ऑफ द सर्विस में थे, क्योंकि ये जो हमारे शिप्स होते हैं इसमें इसकी लाइफ करीब 25 से 30 साल आप मान के चलिए। देखिए नेवी में एक और बड़ी खास चीज है कि वो सारी सर्विसेज की जो है उसका एक तरह से मिलन है या एक तरह से मिलोंजे है जिसको बोलते हैं। जैसे हमारे पास देखिए लैंड यूनिट्स भी हैं, हमारे पास एयर यूनिट्स भी हैं, हमारे पास सरफेस यूनिट्स हैं
1: जी,
0: और हमारे पास सब सरफेस यूनिट्स हैं, यानी कि हम चारों डायमेंशन में नेवी जो है वो अब देश की सेवा में और देश की हिफाजत में जुट है। तो इसमें मैक्सिमम जो इंडिजनाइजेशन आप देख रहे हैं अभी वो हमारे सरफेस यूनिट्स में बहुत इंडिजनाइजेशन एडवांस हो गई है
1: जी।
0: जबकि यू नो आजकल तो ऐसा है कि आप 60-70% के बिना तो आप एक शिप बना ही नहीं सकते, वो आपका मैंडेटरी है, आपको उतना तो इंडिजनाइजेशन कंटेंट रखना ही रखना है। और एक चीज मैं और कहना चाहूंगा इसी सवाल के उसमें नीलम जी, के एक शिप में बनाने के तीन मुख्य पार्ट होते हैं, हम डिवाइड कर सकते हैं उसको। एक हम कहते हैं फ्लोट, यानी शिप को तैरना होता है जरूरी, जो उसकी बॉडी होती है हल होता है। दूसरा होता है उसका मूवमेंट, यानी शिप को आपने एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाना
1: जी,
0: उसके लिए आपको इंजन चाहिए, प्रोपेलर चाहिए, इत्यादि जो भी इक्विपमेंट चाहिए। और तीसरा होता है लड़ना, कि आपने मिसाइल डालने हैं, गाइडेड मिसाइल सिस्टम है, एंटी एयर कैपेबिलिटी क्या है, एंटी सबमरीन कैपेबिलिटी क्या है। तो वो सबसे मुख्य पार्ट है
1: जी,
0: क्योंकि फाइनली ये सारे वॉरशिप हैं और इनका मेन काम है लड़ना। लेकिन इन सब में आज की डेट में जो हमारा फ्लोट में हमने करीब 90% इंडिजनाइजेशन हो गया है, और फाइट में हमारी थोड़ी कैपेबिलिटी अभी इस पे काम करना अभी बाकी है।
1: चोल साम्राज्य के समय से हम अपनी नौसेना पर गर्व करते आ रहे हैं, हमारे जल सीमाओं के प्रहरी, और अब अलग अलग हिस्से हम उसके बारे में सुनते रहते हैं। INS विक्रांत पर तो पूरे देश को गर्व है ही। आपने बताया कि किस प्रकार से स्वदेशीकरण की शुरुआत हुई और लगातार बेहतर होता जा रहा है, तो इसी मोड पर मैं आपकी पसंद का एक गाना श्रोताओं को सुनवाना चाहूंगी।
0: जी मैं चाहूंगा कि आप, ये एक गीत है फिल्म लक्ष्य का, क्योंकि हमें अपनी एकेडमी डेज के बारे में और बहुत मोटिवेट करता है। गीत है हाँ यही रास्ता है, बहुत ही मोटिवेटिंग गाना, आई एम श्योर सब लोगों को, सर को और वापस एकेडमी लेके जाएगा ये
1: जी। तो हम श्रोताओं को सुनवा रहे हैं लक्ष्य फिल्म का यही गीत।

0: आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है इस प्यारे से गाने के बाद पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में। आज हम बात कर रहे हैं इस कार्यक्रम में रक्षा क्षेत्र में स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने के बारे में। हमारे विशेषज्ञ हैं इस समय स्टूडियो में हमारे साथ, मेजर जनरल संजय मेस्टन हैं भारतीय थल सेना से, हमारे साथ हैं एयर कमोडोर डॉक्टर अश्मिंदर सिंह बहल वायुसेना से, और कमांडर विक्रमजीत सिंह हमारे साथ हैं नौसेना से। हमारे विशेषज्ञ हमें बता रहे हैं स्वदेशीकरण का महत्व और पिछले दिनों क्या बदलाव हुए हैं अपने अनुभव के आधार पर। तो संजय मेस्टन सर, एक बार फिर से मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, आपने क्योंकि सर्विस में रहते हुए बहुत सारे देशों की यात्राएं की हैं, वहां के कार्यप्रणाली को बहुत नजदीक से आपने देखा है, समझा है, आप ये बताएं कि जब हम स्वदेशीकरण की बात करते हैं, क्या इसका एक पहलू ये भी है कि जो हमारे ब्लू प्रिंट्स हैं या जिसे हम ट्रेड सीक्रेट कहते हैं वो हम ही तक रहे, हमें साझा ना करने पड़े किसी के साथ, और जब वो सिर्फ हम तक रहेंगे तो हम उसमें तेजी से बदलाव कर सकते हैं और हमारी क्या ताकत है उसे हम छिपा कर भी रख सकते हैं, क्या एक पहलू ये भी है इसका?
1: बिल्कुल नीलम, एक पहलू वो भी है। देखिए, पहली बात ये, एक जो भी स्वदेशीकरण है ये एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम है। देखिए, इकोसिस्टम में बहुत कुछ चाहिए होता है, किसी भी, चाहे एक एयरक्राफ्ट को बनाना हो, चाहे जहाज को बनाना पड़े, चाहे मिसाइल को बनाना पड़े, चाहे ड्रोन को बनाना पड़े, उसमें बहुत कुछ चीजें हैं। एक स्टार्टिंग पॉइंट हो जाता है, एक बैटरी चाहिए, पावर, फिर चाहिए आपको सबसे बड़ी चीज जो आज की तारीख में चाहिए है, वो है आपको चाहिए है ये सेमीकंडक्टर्स, वो स्टार्ट पॉइंट हो जाता है, ब्रेन हो जाता है, जो चिप्स होते हैं। और ये एक खुद बहुत बड़ा, इसमें मैं बोलूंगा कि ये एक इकोसिस्टम है। आज कोई भी देश विश्व में ये टेक्नोलॉजी पूरी नहीं है कि पूरा एक सेमीकंडक्टर चिप वहां पर बन जाए। उदाहरण के तौर पे जो डिजाइनिंग होती है, ये जो चिप डिजाइन, ये स्टार्ट कहाँ होते हैं? अमेरिका में। मैन्युफैक्चर कहाँ होते हैं? ताइवान में। उसके पास जो ट्रांजिस्टर लगते हैं वो कहाँ होते हैं? वो होते हैं साउथ कोरिया में। जो चिप की काटना पड़ता है, जो लिथोग्राफी मशीन होती है, वो कहाँ से आता है? नीदरलैंड से। तो ये आप देखिए कितनी इको डिपेंडेंट सिस्टम है। और आपने हाल ही में सुना होगा कि जो एंथ्रोपिक है, ये जो अभी एआई का सिस्टम है यूनाइटेड स्टेट्स का, इन्होंने क्लियरली बोल दिया है कि उसमें फेबल 5 और माइथो 5 वो किसी भी देश को नहीं दिया जाएगा, सिर्फ उनके 5-6 देश हैं। तो कुछ जो ट्रेड सीक्रेट्स होते हैं वो हर कंट्री अपने देश में रखता है और वो हर देश को अधिकार है, और लेकिन कुछ चीजें जो ओपन डोमेन में है वो लार्ज स्केल प्रोडक्शन होगा और उसमें हम एक्सपोर्ट करेंगे। डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, जो पहली बात होती थी ऑर्डनेंस फैक्ट्री बोर्ड्स, उनको अभी मिक्स करके 7 DPS यूज कर दिया है। लेकिन जो ये आत्मनिर्भर भारत में सबसे बड़ी चीज आई है कि हमने प्राइवेट इंडस्ट्रीज को भी शामिल कर दिया है
0: जी,
1: और इस डिफेंस प्रोडक्शन में ये जो फिगर आई है 1.78 लाख करोड़ की इस साल, उसमें 24% है प्राइवेट इंडस्ट्री का
0: जी। ट्रिपल पी की हम बात करते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप।
1: तो आप देखिए प्राइवेट इंडस्ट्री, आप याद करिए अमेरिका जैसे है, वहाँ जी है या जितने भी इनके टॉप टॉप कंपनीज हैं सिलिकॉन वाली, वो सब मतलब प्राइवेट प्लेयर्स थे, गवर्नमेंट के तो वहाँ किसी का नाम ही नहीं पता थे। आज इंडिया में भी यही हो रहा है कि जैसे अभी आपने देखा कि एक हैदराबाद में कंपनी है, उन्होंने नाग शस्त्र 150 ड्रोन बनाया है जिसकी रेंज है 1000 किलोमीटर, वो उसकी स्पीड मैक्सिमम है 3 to 3 km/h। मैं ये क्यों कोट कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो नाग शस्त्र हमने जो ड्रोन बनाया 150, ये इंडिया की इंडिजिनस टेक्नोलॉजी है। और हाँ, दूसरा जो एक और अच्छा सवाल आपने उठाया था और इन्होंने भी बोला था, देखिए जहाँ तक डिफेंस एक्सपोर्ट्स का सवाल है वो भी बहुत जरूरी है, क्योंकि डिफेंस एक्सपोर्ट्स भी हम उन्हीं चीजों का कर सकते हैं जो हम दे सकते हैं। लेकिन हर चीज को डिफेंस एक्सपोर्ट नहीं करेंगे
0: जी।
1: और आपको पता होगा कि जो इस साल जो डिफेंस एक्सपोर्ट्स हैं, जो टोटल फिगर्स हैं, वो है मतलब अगर मैं करोड़ में बोलूं तो 38423 करोड़, और ये एक टाइम पे 2000 करोड़ होता था, दैट मीन्स आज से एक डिकेड पहले, तो 19 times गुना बढ़ गया है
0: जी।
1: आपको अभी पता है एआई की, अब मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि एआई तो सबसे बड़ी चीज आज की तारीख में आ जाती है, उसमें क्या है कि एक हमारी खुद की ऑटोनोमी होनी चाहिए, मतलब टोटल कंट्रोल होना चाहिए, जिसमें हम सॉवरन एआई होना चाहिए, मतलब जो हमारे सर्वर्स, जो हमारे डाटा सेंटर्स, जो क्लाउड कंप्यूटिंग, सब कुछ वो

0: सॉवरन होना चाहिए
1: जी।
0: और उस लिहाज से मैं बोलना चाहूंगा प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने कुछ बड़ी अच्छी चीजें की हैं। देखिए मैंने सेमी कंडक्टर से स्टार्ट किया है, आज हमने माइक्रोन जो सिलिकॉन वैली से है 800 मिलियन डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं गुजरात में, और ये सारी जो आपकी चिप्स वो है उसमें जो उसकी असेंबली टेस्टिंग मार्किंग पैकेजिंग यहाँ पर होगी, और वो वर्ल्ड की सबसे बड़ी मैं बोलूंगा क्लीन फैक्ट्री होगी, और सबसे ज्यादा आई थिंक वो 5000 स्क्वायर फीट का वो इलाका है, इतना वो बड़ा है।
1: यानी जब हम रक्षा क्षेत्र में स्वदेशीकरण की बात कर रहे हैं तो इसमें प्राइवेट सेक्टर भी है, एमएसएमई भी है, साथ ही एफडीआई भी है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात है, और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है, जो पॉलिसी प्रधानमंत्री जी ने शुरू की है उसके थ्रू भी हम कहीं ना कहीं से बढ़ावा दे सकते हैं। आपसे पूछना चाहूंगी डॉक्टर अश्मिंदर, हमने ये देखा कि बहुत सारी आपदाओं के समय भारत ने अपने पड़ोसी देश जो हैं उन्हें राहत सामग्री भेजी, मदद भेजी, और कोविड के समय भी हमने देखा कि

0: हम कहीं ना कहीं से बढ़ावा दे सकते हैं। आपसे पूछना चाहूंगी डॉक्टर अश्मिंदर, हमने ये देखा कि बहुत सारी आपदाओं के समय भारत ने अपने पड़ोसी देश जो हैं उन्हें राहत सामग्री भेजी, मदद भेजी, और कोविड के समय भी हमने देखा कि हमारी एयरफोर्स ने जो हमारे स्टूडेंट्स फंसे हुए थे अलग अलग देशों में, हमारे नर्सेज थी या और भी इस तरह के हमारे सिटीजन्स थे, उनकी भी मदद की, और हमारे बहुत सारे जो मित्र देश हैं उनके नागरिकों को भी अलग अलग देशों से निकाला। आपसे जानना चाहूंगी, जब हम आत्मनिर्भरता की बात करते हैं, अगर हम वायुसेना की बात करें, तो एक आत्मनिर्भर देश एक मजबूत देश भी होता है, आप क्या समझते हैं इस नजरिए से, अगर हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करें तो?
1: बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है नीलम जी आपने। इसमें बड़ी सारी चीजें आती हैं। सब एक बात आपने मेंशन की, ह्यूमैनिटेरियन ऑपरेशंस, यानी कि जैसे नेपाल में 2015 में जो अर्थक्वेक हुआ था, तो भारत ने उस समय बहुत जल्दी से उनकी मदद के लिए जहाजों में रिसोर्सेज और रसायन भेजे थे। आपको याद होगा तुर्की में हुआ था, तब भी हमने भेजे। आपको याद होगा भी वेनेजुएला में जो हुआ इतना बड़ा, उसमें भी हमारे C-17 ग्लोब मास्टर जहाज 70 टन का करीब जो है रसायन को लेके गए थे इमीडिएट एड देने के लिए। अभी वहां भूकंप के झटके चल रहे हैं और भारतीय वायुसेना के जहाज लैंड कर रहे हैं, हमारे देश के रसायनों को वहां ले जाके उनकी मदद करे दे रहे हैं जहां हजारों लोग फंसे हुए हैं इस समय। तो कहीं ना कहीं देश का अपना स्टेटस जो होता है वो तभी उभरता है अगर आत्मनिर्भरता हो, तभी उभरता है अगर स्ट्रांग आर्मी नेवी और एयरफोर्स हो, तभी उभरता है जब हमने 74% FDI बना दिया है डिफेंस के अंदर, जो आप बात मेंशन कर रहे थे। उससे ये हो गया है कि जो आधुनिक टेक्नोलॉजी है उसको जैसे अब हम कर रहे हैं, हमने क्या किया है कि साफरान के साथ जो इंजन का हम बना रहे हैं 120 से 140 किलोटन न्यूटन। देखिए सबसे मुश्किल चीज जो है दुनिया के अंदर एरो इंजन बनाना है, वो बहुत कम देश है दुनिया के जो बना सकते हैं। हमारा भी कावेरी इंजन अब बना है जिसको हम अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल्स जैसे घाटक है उसके अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन जो एक एरो इंजन फाइटर जहाज में खासकर फिफ्थ जनरेशन या सिक्स जनरेशन जहाज में इस्तेमाल होना है, जो टेक्नोलॉजी अभी दुनिया में डेवलप हो रही है, जापान में हो रही है और फ्रांस में हो रही है, वो मिलके भारत बनाएंगे, तो इसमें ट्रांसफर और टेक्नोलॉजी नहीं आएगी, सोर्स कोड नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि बना हम मिल करके रहे हैं, को डेवलपमेंट हम कर रहे हैं, जैसे हमने ब्राह्मोस को डेवलप किया, को डेवलप किया। और एक और चीज आ जाती है, जब हम एक साउथ एशिया में या इंडो पैसिफिक में या इंडियन ओशन के रीजन की हम जब बात करते हैं, तो भारत को एक बहुत बड़ा देश का तरफ देखा जाता है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं पॉलिटिको इकोनॉमिक वेट जो भारत का है वो सभी को मालूम है। हम बात कर रहे थे इससे पहले भी, हम कहते थे कि अफगानिस्तान में कुछ लोग हैं वो, या फिर जो बलूचिस्तान में है वो भारत आना चाहते हैं, उनके लिए पेरिस भारत है और कुछ नहीं है, वो फॉरन नहीं जाना चाहते। तो कहीं ना कहीं जो ये हमारा इमेज है एज अ स्टेबिलाईजर, वासुदेव कुटुंबकम, वैसे मेरे स्कूल का मोटो था ये, तो कहीं ना कहीं ये जो मोटो है कि पूरा वर्ल्ड एक फैमिली है, भारत ने तो कब से बुद्धिज्म के टाइम से ये फॉलो करता आ रहा है, भारत हिंदुइज्म या वैदिक लिटरेचर है उसके अंदर भी ये चीजें की मेंशन होती है। तो कहीं ना कहीं अगर हमारी एयरफोर्स आर्मी और नेवी मजबूत रहती है, और हम सहायता यमन में आपने देखा सबसे पहले भारत पहुंचा था पाकिस्तानी सोल्जर्स को, अरे मेरे को आपको एक अच्छी कहानी सुनानी है इसके अंदर, क्योंकि इतनी सारी टेक्निकल बातें हो गई, एक कहानी रह गई
0: जी।
1: ये है 2005 की, कांगो के अंदर यूएन पीस कीपिंग स्टेबिलाईजेशन मिशन चल रहा था, वहां पे पाकिस्तानी भी थे, बांग्लादेशी भी थे और भारतीय भी थे। वैसे मैं एक चीज आपको बताऊं, सबसे ज्यादा जो यूएन पीस कीपर्स होते हैं वो इन्हीं तीन देशों से आते हैं इस समय, सबसे ज्यादा 5600 जो है बांग्लादेश से हैं, 5200 से 500 भारत के हैं और 2600 के करीब हैं पाकिस्तान के। उस समय 5 बांग्लादेशी को मार दिया गया, उधर के जो मिलिशिया थी उन्होंने मार दिया था कांगो के अंदर, तो इस इतिहास करके एक जगह थी जहां मारा उनको। उस समय पाकिस्तान के सोल्जर्स को भेजा गया था कॉर्डन एंड सर्च करने के लिए गांव के अंदर, वो बेचारे फंस के, चारों तरफ से गोलियां चल रही थी, तब उन्होंने भारत से मदद मांगी थी और भारत के जो MI-25 अटैक हेलीकॉप्टर है वो गए, उन्होंने सप्रेशन किया, 50 के करीब मिलिशिया के लोगों को मारा, फिर हमारे MI-17 गए और उन्हीं पाकिस्तानी सोल्जर्स की कैजुअल इवैक्यूटीज या जिनको वहां से इवैक्यूएट करना था उनको लेके आए ताकि उनको बचा सके। ये है भारत। हम ये नहीं देखते कि हमारा दुश्मन कौन है। मदद में जब भी कोई पुकार करता है सबसे पहले भारतीय और भारतीय वायुसेना के जहाज वहां लैंड कर रहे थे, भारतीय सेना वहां

0: कर रही होती है ह्यूमैनिटेरियन ऑपरेशंस और भारतीय नेवी के जो जहाज हैं वो लार्ज स्केल इवैक्यूएशन कर रहे हो।
1: जी बहुत अच्छी बात आपने बताई और यही वजह है शायद कि माननीय प्रधानमंत्री जी हर देशवासी से ये उम्मीद करते हैं कि वो अपनी अपनी भूमिका निभाता रहे और कहा भी है प्रधानमंत्री जी ने कि हम जो है देश के लिए मरने का मौका सबको नहीं मिलता लेकिन देश के लिए जीने का जो अवसर मिलता है उसमें हम अपने देश पर गर्व करते हुए जिए। मैं आपसे जानना चाहूंगी कमांडर विक्रमजीत सिंह, भारतीय नौसेना को तो बिल्डर्स नेवी कहा जाता है और बहुत सारी उपलब्धियां जुड़ी हुई हैं। ऐसे में मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि हम जब इसकी कमर्शियल एक्टिविटीज की बात करते हैं या हम बात करते हैं अपनी मर्चेंट नेवी की, क्या उसमें भी स्वदेशीकरण के कुछ लाभ हो सकते हैं? क्योंकि सीधे तौर पर इसे हम दो बिजनेस से जोड़कर देखते हैं, क्या उसमें भी लाभ होता है स्वदेशीकरण से?
2: बिल्कुल सही नीलम जी, देखिए हम जैसे मैंने आपको पहले हिस्ट्री बताई थी तो 60s, 70s और थोड़ा अर्ली 80s तक हम एक बायर्स नेवी थे, जो मैं अभी इंडियन नेवी की बात कर रहा हूँ, और फिर हमारा ट्रांजिशन हुआ टू बिल्डर्स नेवी जैसे आपने बताया, और इतना पूरा एक तरह से एक इकोसिस्टम क्रिएट हुआ शिप बिल्डिंग को लेके, क्योंकि शिप बिल्डिंग का एक अलग इकोसिस्टम रहता है, एक अलग टाइप के एमएसएमई सपोर्ट रहते हैं, एक अलग टाइप का क्लस्टर रहता है। आपने देखा होगा अभी जो हमारे कुछ मैरिटाइम क्लस्टर्स बन रहे हैं डेफिनेटली कोस्टल स्टेट्स में, महाराष्ट्र में अगर आप वेस्ट में देखें, महाराष्ट्र में, गुजरात में, नीचे आइए आप तो फिर ईस्ट में तमिलनाडु, विशाखापट्टनम, ओडिशा, तो इन स्टेट्स में हमारे क्लस्टर्स बन रहे हैं जहां पे इंडिजनाइजेशन और शिप बिल्डिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है। लेकिन जो हमारे जो मेनली अभी हमारी जो वॉरशिप बिल्डिंग हो रही है वो हो रही है हमारे डीपीएसयूज में, यानी कि डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग शिपयार्ड्स में, और एक ऑफकोर्स हमारा पीएसयू शिपयार्ड जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण काम कर रहा है केरला में, तो चार डीपीएसयू है, एक पीएसयू है, तो ये अपना एक अलग इकोसिस्टम बना के चल रहे हैं। इस इकोसिस्टम को और इसका महत्व समझते हुए हमारी गवर्नमेंट ने और प्रधानमंत्री जी ने जो एक क्लैरियन कॉल दिया था कि कमर्शियल शिपिंग में भी अब हमारा आत्मनिर्भरता होनी चाहिए। आपको डेफिनेटली याद होगा कि उन्होंने दो एक एमआईवी दिया, एक विजन दिया है 2030 के लिए, यानी कि 2030 तक इंडिया को कमर्शियल शिपिंग में कहां पहुंचना है दुनिया में। आज हम बिल्कुल ही इसको कहते हैं ऑलमोस्ट निग्लिजिबल हमारी प्रेजेंस है, 2030 तक हम चाह रहे थे कि हम टॉप 10 नेशंस में आ जाएं।
1: जी
2: तो ये उन्होंने एक लक्ष्य दिया था जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज जिसको जो स्टीयर कर रही है, और 2047 जो हमारा अमृतकाल विजन दिया था उन्होंने 100 साल हमारे इंडिपेंडेंस के कि हम टॉप 5 नेशंस में आ जाएं। तो ये कहना बहुत ही सरल है और करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन सारी एजेंसीज को इस तरह से मोटिवेट किया और इस तरह से चैनलाइज किया, कोऑर्डिनेट किया कि हम उस तरफ अभी हमें वो होता हुआ धीरे धीरे नजर आ रहा है।
1: जी
2: तो इसके लिए सरकार ने बहुत सारे प्रोत्साहन भी दिए हैं, उन्होंने बहुत सारी स्कीम्स दी हैं, फाइनेंशियल एड्स दिए हैं, जो कि आपको अगर आप शिप बिल्डिंग इंडिया में करवाते हैं तो आपको कुछ डायरेक्ट एड्स मिलती हैं, डायरेक्ट कॉम्पेंसेशन मिलता है, और जो शिपयार्ड हैं जिनको अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, चाहे ब्राउन फील्ड हो, ग्रीन फील्ड हो, उनके लिए भी अलग जिसको मैरिटाइम डेवलपमेंट फंड है, तो काफी पैसा सरकार ने ईयरमार्क किया और इसके ऊपर भी बहुत सारा थ्रस्ट है।
1: जी
2: किसी भी शिप बिल्डिंग एक्टिविटी में कई ऐसी चीजें होती हैं जो आप क्रॉस यूटिलाइज कर सकते हैं। एक चीज बताना चाहूंगा, जैसे इंटरनेट था वो बेसिकली पहले यूएस मिलिट्री के यूज के लिए बनाया गया, और उसके बाद वो इंटरनेट आप देखिए अब किस स्तर पे पहुंच गया जब उसको पब्लिक के लिए ओपन किया गया और कहां वो पहुंच गया, सेम चीज मोबाइल के साथ हुई। तो इसी तरह से जब ये कमर्शियल शिप बिल्डिंग और नेवल शिप बिल्डिंग वॉरशिप बिल्डिंग है, इसमें जब समन्वय होगा, थोड़ी कोऑर्डिनेशन होगी, तो कई इक्विपमेंट ऐसे हैं जो कि हमारे क्रॉस यूटिलाइज हो जाएंगे और हमारी कॉस्ट ऑफ शिप बिल्डिंग जो है वो ग्लोबली कम्पेटिटिव हो जाएगी। तो वो एक क्लैरियन कॉल दिया है अभी प्राइम मिनिस्टर ने और भारत सरकार ने, और आपने देखा होगा अभी रिसेंटली जो ईरान कॉन्फ्लिक्ट में जो कि हमारे जो मर्चेंट मरीनर्स थे जो चुपचाप अपना काम करते रहते थे, महीनों महीनों घर से दूर रहते थे, किस कंडीशंस में उन्होंने शिप्स को लेके जाते थे, इतनी हाई सीज, रफ सीज, तो उनको कोई मतलब सब भूल गए थे जब तक कि ये हुआ। ये एक बात है, आज की डेट में करीब इंडिया में करीब 0.1% ग्लोबली शिपिंग हमारी इंडिया की है, इंडियन ओन्ड, तो इसको अब हमने बोला था टॉप 5 और टॉप 10 में लेके जाने के लिए, मतलब बहुत ही ये कठिन कार्य है, लेकिन ये तभी संभव है जबकि हम सारी शिप्स ओन करने लग पड़े।
1: जी
2: और सारी ये जो पॉलिसीज हैं, ये इंसेंटिव्स हैं, ये इसी की तरफ हैं कि इंडियन बिल्ट, इंडियन फ्लैग्ड एंड इंडियन ओन्ड वेसल्स को बढ़ाने के लिए इसका भी एक टारगेट दिया हुआ है कि इतने मिलियन टन जो है वो हमारी मतलब शिपिंग हमारी हो जानी चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया 2030 तक और 2047 तक। एंड जो हमारे मेन इक्विपमेंट होते हैं नीलम जी, मैं ये लास्ट चीज कहना चाहूंगा, जैसे इंजन, तो इंजन जो हवाई जहाज

0: के भी बहुत ही स्पेशलाइज इक्विपमेंट है। सिमिलरली जो इंजन जहाज के होते हैं वो भी स्पेशलाइज इक्विपमेंट होता है, ऐसा नहीं है कि आप सारी चीजों को इंडिजनाइज कर पाए क्योंकि उसका आपको कॉस्ट बेनिफिट नहीं मिलेगा, आपके उतने नंबर्स नहीं है। तो दुनिया में कई लोग ही हैं जो बनाते हैं, किंतु अगर हम ये चीजें कमर्शियल शिप में भी लगती हैं और कई ऐसी चीजें वॉरशिप्स में भी लगती हैं, तो ऐसे इक्विपमेंट हमें लेके मान के चलना पड़ेगा कि ये तो कई चीजें हमें बाहर से मंगानी पड़ेंगी। इसमें एक ही एडवांटेज है, जब आप बाहर के जो OEMs हैं आप इंडिया में उनको ला सकें, जो कि अभी हम बोल रहे हैं कि आप यहां आके बनाइए मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड, तो उससे जो हम बोलते हैं स्पिन ऑफ इफेक्ट्स यानी कि जो मल्टीप्लायर इफेक्ट्स इकोनॉमी को लेके एम्प्लॉयमेंट को लेके उसका फायदा हमें हो सकता है।
1: जी बहुत अच्छा आपने बताया, और जैसा कि आपने कहा कि मरीनर्स आराम से काम करते रहते थे शांति से, ज्यादा लोगों को उसके बारे में पता भी नहीं था, इसी तरह से हमारी पनडुब्बियां भी कितने कितने महीने पानी के अंदर ही काम कर रही हैं लगातार, लेकिन इन्हीं प्रयासों से हम सुरक्षित भी हैं। और हिंद महासागर में भारत की जो बढ़ती उपस्थिति है और दमदार होती उपस्थिति जो है वो भी हमारी नौसेना के बलबूते ही है। सर मैं आपसे अब आपकी पसंद का कोई गाना जानना चाहूंगी जो आप श्रोताओं को सुनवाएंगे।
2: फौजी में इमोशंस बहुत होते हैं
1: जी,
2: तो गाना है संदेशे आते हैं, और इसका कारण यह है, ये बॉर्डर पिक्चर का है और मेरे दोनों छोटे जो बेटे थे उस समय
1: जी
2: वो स्कूल में थे, लेकिन ये मूवी देख के उनको बहुत मोटिवेशन हुआ और आज वो भारतीय सेना में दोनों ऑफिसर हैं।
1: बहुत अच्छी ये बात आपने हमें बताई, हमारे श्रोता जरूर प्रेरित होंगे इस बात को सुनकर, और ये प्यारा सा गाना हम सुनवा रहे हैं अपनी ऑडियंस को।

जोश जगाते इस गाने के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में। हमारे तीन विशेषज्ञ इस समय स्टूडियो में हमारे साथ हैं। हम बात कर रहे हैं रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की, स्वदेशीकरण की हम बात कर रहे हैं और अपने विशेषज्ञों के बहाने

0: आज हम अपनी सेनाओं को और नजदीक से जान रहे हैं। जो हमारे मन में आदर भाव है, सम्मान है, वो और बढ़ता जा रहा है ये जानकर कि किस तरह से हमारी सेनाएं लगातार देश की सेवा में लगी रहती हैं और किस तरह से हम जिसे अपना विकास कहते हैं उसमें मील का पत्थर होते हैं हमारे फौजी, हमारी सेनाएं। सर, मैं अब आपसे जानना चाहूंगी, संजय मेस्टन जी, जब हम मेक इन इंडिया की बात कर रहे हैं तो मेक इन इंडिया को अगर बढ़ावा मिलेगा, जिसमें कि हम अपने त्योहारों में इस्तेमाल होने वाले दिए और मोमबत्ती से लेकर अब हम अपने फाइटर जेट्स तक की बात कर रहे हैं मेक इन इंडिया की, तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि ये कहीं हमारे शिक्षा जो है उसे भी प्रभावित करेगा, हमारे शिक्षा के क्षेत्र में भी थोड़ा विस्तार होगा इस बहाने?
1: बिल्कुल, शिक्षा में तो बहुत विस्तार होगा। देखिए, पहली बात, ये जो भी मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट चल रहा है हर चीज में, ओवरऑल नेशन बिल्डिंग में
0: जी,
1: हर भारतीय को फख्र होगा कि मैं भारत देश को बिलोंग करता हूं। और आज मैं आपको बताना चाहूंगा, हम चार लोग यहां बैठे हैं और हम चारों बाहर जा रहे हैं, कई देशों में जाते हैं, हमें बहुत फख्र होता है कि सब बोलते हैं आप इंडिया के हैं। तो इंडिया का जो आज एक ग्लोबल रीच पड़ गई है
0: जी,
1: जो उसके भी कई कारण है। देखिये, सबसे बड़ा कारण है, तीन फैक्टर्स हैं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, लीडरशिप, इकोनॉमिक ताकत और मिलिट्री ताकत। ये तीन चीजें कॉम्बिनेशन है, ये देश की एक नेशनल पावर को डिफाइन करता है
0: जी।
1: जब ये सब पावर मिलती है एक देश को, अपने आप दिखती है। और आपने देखा है G20 समिट में जिस प्रकार भारत ने लीडरशिप लेके अफ्रीकन यूनियन को शामिल करवाया, वो एक मास्टर स्ट्रोक था। उसी G20 समिट में IMEC कॉरिडोर जो हमने अनाउंस करवाया, जिसमें प्रेसिडेंट बाइडेन थे और जिसमें आप देखिए मल्टीलेटरल कंट्रीज हैं, यूरोप, इजराइल, पूरा गल्फ कंट्रीज और भारत। तो आप ये देखिए कि ये मास्टर स्ट्रोक से, अब जब ये सब होता है तो भारत का जब एक आइडेंटिटी पूरे विश्व में बढ़ती है और आज सारा विश्व भारत की तरफ देख रहा है, एक राइजिंग पावर है। और मैं तो बोलूंगा जो ग्लोबल साउथ के हम कैपिटल हैं इंडिया, अगर ये हो रहा है तो जाहिर है कि एजुकेशन का विस्तार बहुत होगा, उस पर बहुत प्रभाव पड़ेगा। एक कर्तव्य, एक प्राइड कि मैं भारतीय हूँ। कुछ साल पहले हमारे कई बच्चे बाहर जाना चाहते थे, अब वो चेंज हो रहा है, क्योंकि जब एक सेल्फ रिलायंट इंडिया है, आज हमारी रोड्स देखिए फर्क पड़ा है, इंफ्रास्ट्रक्चर में फर्क पड़ा है, और आज की तारीख में टेक्नोक्रेट्स को ज्यादा वजूद दिया जा रहा है हमारे सिस्टम में। अगर वो दिया जा रहा है तो ऑब्वियसली जो यंगस्टर्स हैं, और जो प्राइवेटाइजेशन शुरू कर दिया हमने
0: जी,
1: तो यंगस्टर्स आज उनको समझ में आ रहा है। आपका स्टार्टिंग पॉइंट था ये प्रोग्राम में कि लोगों को पता होना चाहिए भारतीय सेना क्या है
0: जी।
1: और अब कैसे पता चल रहा है, भारतीय सेना जब ये सारी प्राइवेटाइज हो गई है ये आत्मनिर्भर भारत में, तो कितनी सारी MSMEs आ चुकी है, उसमें काम करने वाले कौन है, यूथ, हाईली टैलेंटेड यूथ, AI एक्सपर्ट्स, सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट्स, उनको एक्सपोजर मिल रहा है। तो वो जब देखेंगे तो फिर वे बाहर क्यों जाएंगे, और जब इंडिया में हम इतना प्रोड्यूस करते जा रहे हैं, चाहे AI हो, चाहे मिसाइल्स हो, चाहे ड्रोन्स हो, चाहे सब कुछ हो, चाहे एयरक्राफ्ट इंजन हो, सब कुछ अगर हम जब इंडिया में कर रहे हैं, तो जहां पर जॉब्स हैं और जहां पर अपॉर्चुनिटीज हैं और जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है और जहां सैलरीज अच्छी हैं, तो ऑब्वियसली लोग को फिर और बढ़ावा मिलेगा एडुकेशन की तरफ ध्यान देने को। जो हमारा पहले ब्रेन ड्रेन होता था ना, बाहर जाते थे, अब मेरे को लग रहा है अगले 10 साल के अंदर या 2047 तक मैं बोलूंगा इंडियंस विल रिमेन इन इंडिया, और आप देखिएगा हमारा विस्तार बहुत होगा, तो एडुकेशन से इस पे प्रभाव पड़ेगा।
0: यानी जब हम स्वदेशीकरण की बात करते हैं तो ऐसा दिखता है कि सेनाएं मजबूत हो रही हैं, लेकिन इससे अपने आप रोजगार भी मिल रहा है लोगों को और शिक्षा के क्षेत्र का भी विस्तार हो रहा है। और जैसा कि हमें बताया डॉक्टर अश्मिंदर ने कि जब सुरक्षित देश है तो मजबूत देश भी है, जरूरत पड़ने पर हम अपने जो पड़ोसी देश है उनकी मदद भी कर सकते हैं। ऐसे में मैं आपसे एक बात और जानना चाहूंगी, आप अपने अनुभव से बताएं, आपने इतने सारे देशों में देखा है, उनको काम करते हुए देखा है, कई यात्राएं आपने इस दौरान की हैं, जो भारतीय सेना है बेहद सम्मान के साथ देखा जाता है भारतीय सेना को, और हमारे बहुत सारे इस तरह की एक्सरसाइज होती हैं जिसमें अन्य देशों की सेनाएं सब मिलकर काम करते हैं, वो एक्सरसाइज में भाग लेते हैं। ऐसे में भारतीय सेना जो है उसकी स्थिति दुनिया में क्या मानी जाती है, और जो अगर मजबूती है तो क्यों मानी जाती है वो?
1: मैं बहुत घमंड के साथ बोल सकता हूँ नीलम, भारतीय सेना की जो छवि है वो विश्व में नंबर वन है
0: जी।
1: मैं कई कंट्रीज में गया हूँ, 23 कंट्रीज ऑफिशियली गया था ऑन ड्यूटी
0: जी।
1: टॉप कंट्रीज है, अमेरिका है, इजराइल है, टर्की है, जापान है, फ्रांस है, मलेशिया है, मतलब चाइना है। चाइना में मैं खुद एज अ इंडियन डेलीगेशन लीडर गया था, जो चाइना

0: फर्स्ट एससीओ पीस कीपिंग एक्सरसाइज हुई थी 2005 में, मैं उसको विटनेस करने गया था। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये सारा तजुर्बा देखते हुए और हर कंट्रीज में आज विश्व की सारी सेनाएं चाहती हैं कि भारत के साथ बाइलेटरल, मल्टीलेटरल, ट्राइलेटरल एक्सरसाइजेस करना चाहती हैं, क्योंकि जो हमारी एक एक्सपीरियंस है काउंटर इंसर्जेंसी में डील करने की, काउंटर इन्फिल्ट्रेशन में डील करने के लिए, टेररिज्म को डील करने के लिए, ह्यूमैनिटेरियन एड वगैरह देने में, रिस्पांस सिस्टम में, हमारी जो लॉजिस्टिक सप्लाई चेन है, जो एक एक्सपर्टीज है। और भारतीय सेना एक वो सेना है जो ऐसी जगह डिप्लॉयड है सियाचिन ग्लेशियर से लेके नागालैंड तक, से लेके डेजर्ट तक, और नेवी के साथ भी हमने इतनी फंक्शनिंग करते हैं, एयरफोर्स के साथ भी। तो कहने का मतलब है जो हमारी काबिलियत है, हमारी कैपेबिलिटीज है, वो कैपेबिलिटीज को देख के पूरा विश्व, मैं बोल सकता हूँ वी आर नंबर वन। पूरा विश्व आज चाहता है कि भारत सेना के साथ ट्रेनिंग करें। और मैं क्योंकि अफगानिस्तान में था तकरीबन 3 साल, वहाँ 53 कंट्रीज मैंने देखी थी अमेरिका द्वारा लेड किए हुए। मेरे को वो हर मीटिंग में बुलाते थे, चाहे वो नेटो सेक्रेटरी जनरल आता था, चाहे इनके आर्मी चीफ आते थे हर कंट्री के साथ। तो मेरे को तब इतना फख्र होता था कि इंडियन व्यू पॉइंट वो सुनना चाहते हैं, और इंडिया की जो छवि है इंडियन आर्म फोर्सेस की बहुत ही सॉलिड है। और एक और चीज मैं इसमें बोल रहा हूँ, रेजिमेंटेशन, जितने फॉरेन चीफ आते थे इंडिया में वो बताऊँ क्या बोलते थे, आपकी जो एक रेजिमेंटेशन स्पिरिट है
1: जी।
0: आज अगर मैं जाट रेजिमेंट का हूँ तो मेरे जो जाट रेजिमेंट वाले वो जवान है वो बिल्कुल मतलब अपनी रेजिमेंट के नाम पे मर जाएंगे। मैं वैसे महार रेजिमेंट का हूँ, तो महार रेजिमेंट वाले जो मेरे जवान है उनका एक अलग जज्बा होगा, डोगरा का अलग होगा, मराठा का अलग होगा
1: जी।
0: तो ये रेजिमेंटेशन है ये सिर्फ इंडियन आर्मी में है, ये यूनिकनेस है। मैंने अमेरिकन फॉरेन चीफ जो यहाँ पर आए थे आर्मी चीफ, उनसे खुद सुना था कि दिस इज द मोस्ट यूनिक थिंग अबाउट द इंडियन आर्मी। तो ये हमारी जो कामरेडरी है, भाईचारा है, आपसी संबंध है, जवान और ऑफिसर के जो रिश्ते हैं
1: जी।
0: तो ये सारी चीजें ये विश्व वाले देखते हैं, इंक्लूडिंग चीनी, ये भी चाहते हैं हमारे साथ एक्सरसाइज करने के लिए, और हमने किए हैं चीन के साथ भी, एससीओ के साथ एक्सरसाइज। तो मैं घमंड के साथ बोल सकता हूँ, मेरे को इस पे कोई वो नहीं है, एज अ फौजी वी आर नंबर वन एंड मोस्ट रिस्पेक्टेड आर्म फोर्सेज, नॉट आर्मी, आर्म फोर्सेज इंक्लूडिंग नेवी, इंक्लूडिंग एयरफोर्स। नेवी के साथ जो वाइजैक में शायद आपने भी कवरेज किया था उस एग्जाम को,
1: उसमें
0: ईरानियन शिप भी थी और यूनाइटेड स्टेट्स की शिप भी थी।
1: ऐसे में बताएं, बहुत रोचक बात आप बता रहे हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि नो फर्स्ट यूज हमारी पॉलिसी रही है, तो जब हम अपने डिफेंस बजट को बढ़ाते हैं तो कुछ लोग क्रिटिसिज्म भी करते हैं और कुछ हमारे पड़ोसी देश हैं जो थोड़े नाराज भी हो जाते हैं और बार बार ये बात लेकर आते हैं कि डिफेंस बजट क्यों बढ़ाया जा रहा है, और अब तो हम स्वदेशीकरण की बात कर रहे हैं, आत्मनिर्भरता की, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे?
0: मेरे ख्याल डिफेंस बजट तो और बढ़ना चाहिए
1: जी,
0: क्योंकि देखिए सिक्योरिटी जो इकोनॉमिक्स है, और देखिए अगर डिफेंस सॉलिड है तो इकोनॉमिक आपकी सॉलिड बढ़ेगी
1: जी।
0: ये बहुत कोरिलेटेड है, और चीन एक बहुत बड़ा एग्जांपल है। 2050 का उसका विजन था कि हम कोई लड़ाई वड़ाई के पंगे नहीं फंसेंगे, हम मिलिट्री कंसोलिडेशन, इकोनॉमिक कंसोलिडेशन। आज भारत भी वही कर रहा है, क्योंकि मेरा तो इसमें विचार है डिफेंस बजट और बढ़ना चाहिए, गवर्नमेंट दे रही है, और कैपिटल एक्विजिशन पे भी हमें थोड़ा ज्यादा जोर देना चाहिए, क्योंकि खासकर एयरफोर्स और नेवी के लिए ये जरूरी है। कैपिटल एक्विजिशन मतलब ये नहीं कि हमने बाहर से खरीदना है, उसको हम इंडिजनाइज भी कर सकते हैं।
1: तो डॉक्टर अश्विंदर आपसे मैं जानना चाहूंगी, जैसे दूसरे देशों से सीखने की बात करें तो जापान में तो एसडीएफ अभी तक रहे, सेल्फ डिफेंस फोर्सेज रही, सिर्फ आत्मरक्षक बल थे। कहते हैं कि हमें कहीं आक्रमण नहीं करना, तो सेनाओं की हम क्या जरूरत है उतना बजट देने की। आपसे जानना चाहूंगी मैं कि ये जो पॉलिसी होती है कि हमें क्योंकि लड़ाई नहीं लड़नी है इसलिए हम सेनाओं को मजबूत नहीं रखेंगे, आप इस बारे में क्या कहेंगे?
2: देखिए डिटरेंस का मतलब ही ये होता है कि आपकी आर्म फोर्सेस इतनी स्ट्रांग है कि कोई भी देश विश्व का सोच नहीं सकता आपके ऊपर हमला करना। अगर हम एक ऐसी सिक्योरिटी एनवायरमेंट प्रोवाइड करते हैं जिसमें पूरी इकोनॉमी फ्लावर करती है हमारे देश की, तो वो सिक्योरिटी एनवायरमेंट देती है हमारी आर्म फोर्सेस, तीनों आर्म फोर्सेस, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। हम कह रहे थे ना कि हम दूसरों से क्या सीखते हैं। अभी आपने सेल्फ डिफेंस फोर्सेस की बात करी, आपको पता है कि उनका डिफेंस बजट मल्टीफोल्ड हो गया जापान का। अब उन्होंने रियलाइज कर लिया है कि उनको अमेरिका की अम्ब्रेला नहीं मिलने वाली, और वो अपनी जो उनकी इंजन की कैपेबिलिटी है, जो उनके जहाजों को बनाने की कैपेबिलिटी है। आपको ये भी मालूम होगा कि 6th जनरेशन ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम में इटली और यूके के साथ मिलकर अहम रोल प्रोवाइड कर रहे हैं, और अगर शिप्स में देखें वो कमांडर साहब ज्यादा बेहतर बता पाएंगे।

0: लेकिन उस पे भी और जो इंजन है उसके अंदर तो उन्होंने बहुत अच्छी माहिरता प्राप्त कर ली है. दूसरी चीज आ जाती है, अगर हम अपना एनवायरमेंट देखें आसपास का, हम लोग प्रेडेटरी नहीं है, हमें दूसरों की टेरिटरी नहीं चाहिए, हमें दूसरों की जमीन नहीं चाहिए, लेकिन अपने आप को और आसपास के एरिया को अगर प्रोटेक्ट करना है, इंडियन ओशन को प्रोटेक्ट करना है, तो बहुत जरूरी है कि हमारी आर्मी नेवी और एयरफोर्स बहुत स्ट्रांग हो. अभी भी हमारी आर्मी 50,000 से ऊपर 3,488 किलोमीटर बॉर्डर पे डिप्लॉयड है, लद्दाख में है, दूसरी जगहों पे है, अरुणाचल प्रदेश. कितनी मुश्किल कंडीशंस में वो पूरे पूरे साल रहते हैं, जहां पे टेम्परेचर -20 -30 तक पहुंच जाते हैं, और फिर जब गर्मी आती है तो फिर कहां, आपको पता है रेत में कहां पे इनके टेम्परेचर 50 डिग्री से ऊपर. तो उसी तरीके से हमारी तीनों सेनाएं जो डिप्लॉयड है हर जगह, ये इसलिए डिप्लॉयड है ताकि दूसरा आंख उठाकर भी हमारी धरती पे ना देख सके. और अब आप देखिए यूक्रेन का हाल, उनकी सेनाएं उतनी स्ट्रांग नहीं थी, उनकी इतनी बर्बादी हो चुकी है ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की. लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी आर्म फोर्सेस स्ट्रांग होगी तब आप हर लड़ाई जीत लोगे, ऐसा भी नहीं है. क्योंकि आपने अमेरिका के साथ देखा, उन्होंने उसके भी तोड़ देख लिए, वो सर्वाइव कर रहे हैं अटैक्स के अंदर उन सिस्टम्स का इस्तेमाल करते हुए जिससे कॉस्ट इफेक्टिव रहे हो, चाहे वो ड्रोन्स हैं, मिसाइल्स हैं, या उनका ज्योग्राफिकल जो इनका पूरा का पूरा टेरिटरी है डिफेंस की ओरिएंटेड की तरफ, ओरिएंटेशन की तरफ. तो कहीं ना कहीं ये बहुत जरूरी होता है कि हमें तो नहीं किसी की टेरिटरी चाहिए. हमने कई बार बहुत क्लियरली किया, हाँ हमें सिर्फ अपना जो जेन्युइन लीगल पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है वो वापस चाहिए. आज नहीं तो वो खुद अपने आप, हमने तो कोई लड़ाई नहीं की अभी, हम तो अपने भेज नहीं रहे लोगों को. इसका मतलब है हमारी ऑफेंसिव इंटेंशन नहीं है, लेकिन डिफेंसिव होने के लिए भी आपकी क्षमता इतनी स्ट्रांग हो कि दूसरा देश 10 बार सोचे कि वो आप पे हमला करे कि नहीं करे. एक चीज मैं और ऐड करना चाहता हूँ अगर आप परमिट करें. एक चीज कहते हैं हम सिविल मिलिट्री फ्यूजन, हम जो सीख सकते हैं दूसरों से, तो हम चीन से ये चीज सीख सकते हैं. उन्होंने क्या किया, आप बात कर रहे थे ना एजुकेशन की, तो उनका एक है 7 Sons of National Defense. जैसे बीजिंग की यूनिवर्सिटी या बीजिंग की इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हो गई, या दूसरे इंजीनियरिंग कॉलेजेस या इंस्टीट्यूशंस या यूनिवर्सिटीज हैं जो बीजिंग के अंदर, कुछ ऐसी हैं जिनको वो फंड भी करते हैं ताकि क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज के ऊपर वो फोकस कर सकें. तो ये चीज हमने शुरू कर दी है. अब ये जो बुलेट प्रूफ वेस्ट्स हैं जो आर्मी यूज करती है हाई ऑल्टीट्यूड्स में, उसमें कहीं ना कहीं रोल रिसर्च का यूनिवर्सिटीज का भी रहा है, और ये इनोवेशन सेल्स जो बन रहे हैं यूनिवर्सिटीज के अंदर. लेकिन जिस संख्या में अगर हम इसको थोड़ा और तेज गति लेके आए, एक सिविल मिलिट्री फ्यूजन हो, तो हमारा देश और भी स्ट्रांग बनेगा.
1: जी, यही कामना सभी की. और मैं कमांडर विक्रमजीत सिंह, चलते चलते क्लोजिंग स्टेटमेंट आपका मैं जानना चाहूंगी.
2: बिल्कुल सही, अगर आप एक स्ट्रांग मिलिट्री पावर नहीं है तो ऑब्वियसली आपका अस्तित्व हमेशा खतरे में है. ये अभी बहुत क्लियरली विश्व में वापस लोगों को समझ में आने लगा है, जो वर्ल्ड वॉर टू के बाद और कोल्ड वॉर के बाद बिल्कुल जिन्होंने बोला था नहीं हमें नहीं लड़ाई लड़नी, हमें नहीं करना, हमें न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं चाहिए
1: जी.
2: अब आपने देखा सब लोग धीरे धीरे यू टर्न मार रहे हैं. जापान सबसे पहले उन्होंने अपनी एक नई फ्रिगेट लॉन्च कर दी है कि भाई ये प्रोग्राम हम लॉन्च कर रहे हैं
1: जी.
2: फ्रांस बोल रहा है मैं न्यूक्लियर वेपन अपना फिर से प्रोग्राम शुरू कर दूंगा. तो जैसे जैसे जियोपॉलिटिक्स चेंज होता जा रहा है, लोगों ने अपने अपने जो उनके डिसीजंस हैं विद रिस्पेक्ट टू सोवरेनिटी एंड डिफेंस ऑफ द नेशन, तो वो उन्होंने बदले हैं बिल्कुल इसमें. और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम बात करते आ रहे हैं अभी तक, कि जब तक आपका स्ट्रांग मैन्युफैक्चरिंग सेटअप नहीं होगा नीलम जी, आप एक स्ट्रांग मिलिट्री भी नहीं बन सकते हैं. क्योंकि आत्मनिर्भरता का मतलब है आपका खुद का स्ट्रांग मैन्युफैक्चरिंग सेटअप होना
1: जी.
2: आज तक इंडिया ने पूरे विश्व में अपना झंडा गाड़ा था सॉफ्ट सर्विसेज में, यानी कि सर्विसेज में सॉफ्टवेयर में हम नंबर वन है. चिप डिजाइन में आप देखें अमेरिका में तो इंडियंस हैं उसमें
1: जी.
2: और एआई में भी ऑब्वियसली फिर इंडियंस हैं, बहुत आगे आगे हैं और बहुत वेल पेड है. लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में कहीं ना कहीं जो हम थोड़ा पिछड़ गए थे, जिसकी इम्पोर्टेंस देश ने समझी है, और इसके ऊपर भी एक प्रधानमंत्री जी ने अलग से क्लैरियन कॉल दिया है कि हम अपने ब्लू कॉलर वर्कफोर्स को कैसे और स्ट्रेंथन करें, हमारे मैन्युफैक्चरिंग कैसे स्ट्रेंथन हो, ये सारे कॉरिडोर्स वगैरह उसी की ओर एक कदम थे. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये भी हो जाता है तो हम वाकई कह पाएंगे जी हाँ हम सेल्फ रिलायंट हैं, आत्मनिर्भर हैं. क्योंकि पीछे अगर आपको याद हो हमने देखा था कि कई ऐसी कंट्रीज हैं कि पहले बात हो रही थी कोविड के बाद ये बात शुरू हो गई थी कि चाइना को आप सप्लाई चेन से हटा दीजिए, फिर आपने देखा होगा कि वो चाइना प्लस वन पॉलिसी आ गई वर्ल्ड में

0: चाइना को हटाना इतना आसान नहीं है क्योंकि वो हर एक के मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई चेन में है. तो प्लस वन, तो प्लस वन में आज की डेट में अगर आप विश्व में देखें स्टेबिलिटी वाइज, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी वाइज, इंडिया इज द लीडिंग कंटेंडर. तो उससे क्या फायदा होगा, विश्व का भी फायदा है और भारत का भी फायदा है. आत्मनिर्भरता, मेक इन इंडिया फॉर इंडिया एंड मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड.
1: फॉर द वर्ल्ड, बहुत अच्छी बात आपने बोली. और हम ट्रेड बास्केट की बात जो कर रहे थे कि हमारे आत्मनिर्भर होने से उसमें भी संतुलन बना रहेगा. तो ये है भारत, समुद्र से आकाश तक, सुरक्षित भी, आत्मनिर्भर भी. और जिनकी वजह से सुरक्षित है उनके लिए ये दो पंक्तियां, देश की मिट्टी माथे से लगा लेता हूँ मैं हर त्योहार, कुछ इस तरह मना लेता हूँ. पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में आज हमने बात की रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की, स्वदेशीकरण की. और हमारे विशेषज्ञ इसके लिए थे कार्यक्रम में मेजर जनरल संजय मेस्टन, भारतीय थल सेना से आप हमारे बीच आए, हमारा मार्गदर्शन किया, बहुत रोचक जानकारी आपने हमारे साथ साझा की. हमारे साथ रहे एयर कमोडोर डॉक्टर अश्विंदर सिंह बहल, वायुसेना से आप, आपने बहुत रोचक बातें हमें बताई. कमांडर विक्रमजीत सिंह नौसेना से आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों विशेषज्ञों का. और मैं यही कहना चाहूंगी अपने श्रोताओं से कि INS विक्रांत हो, तेजस हो, प्रचंड हो, अर्जुन टैंक हो, पिनाका रॉकेट या ब्रह्मोस, ये सिर्फ नाम नहीं, ये भारत का गर्व है. और इस गर्व को और बढ़ाने की बात माननीय प्रधानमंत्री जी ने की रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की बात करके. आज पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में हमारे तीनों विशेषज्ञों ने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका. स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. इस कार्यक्रम के संयोजक थे प्रमोद कुमार वत्स और कार्यक्रम प्रोड्यूसर शाहनवाज खान और तुषार पराशर के साथ मैं नीलम मलकानिया इस कार्यक्रम से अब आप सभी से लेती हूँ अनुमति. नमस्कार, जय हिंद.
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111.
3: ଶୁଣୁଥିଲେ ପୋଷ୍ଟ ବକ୍ସ ନମ୍ବର 111 ଚରକୁଲୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀ କେନ୍ଦ୍ରରୁ.

0: यहाँ खबरें तोड़ी मरोड़ी नहीं जाती।
1: बहुत सारे निजी चैनल और निजी चैनलों के बोलबाला में हम समझ रहे हैं कि आकाशवाणी और दूरदर्शन इसकी रिलेवेंसी क्या है।
0: यहाँ होती है सीधी सटीक और सच्ची खबरें।
1: मैं मन से मानता हूँ कि भारत के भाव की अभिव्यक्ति केवल और केवल आकाशवाणी और दूरदर्शन ही कर,
0: क्योंकि ये है देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल। डीडी न्यूज, केवल खबर पूरी खबर।

वेलकम बैक ट्यून को चिन्ह मेज के लिए 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक रेडियो हम सफर सागर अच्छे आपन को सहित सो चल छी किछ कथा किछ गीता फ्रेंड्स कह जाए कि मेघर कोनोसी ठिकणा न थाए पवन जेउ वडे निए से सही हेड चली जाए आजर मनुष्य जीवन मध्य ठीक से परे गांरु शहर शहर रु विदेश काम पाई परिवार पाई आओ फ्यूचर पाई दौड़ी चली किंतु दौड़ रे केउटी जे हजी जाई सही अवसर रे जेउठी दादा कहानी थिला मांकर डाको थिला बापांकर हस थिला आओ सांग मानको सह निर्भर संध्या थिला आज समय अछि किंतु सही समय को बंचिबा पाई आम पाखरे मनीषटे नहीं

वेलकम बैक ट्यून कुछ न्यू म्यूजिकल योर 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक रे रेडियो हम सबर सागर अच्छे आपन को सहित सो चल छी किछ कथा किछ गीता फ्रेंड्स वर्षा पूर्वरो मेघा आसे आओ जीवन रे सफलता पूर्वरो आसे अनेक संघर्ष चासी मेघ को देखी खुशी हुए किंतु शहर लोक बोध हुए छाता खोजे गोटे मेघ किंतु दृष्टिभंगी बहुत अलगा ठीक सेमती एक परिस्थिति दुई जन मनुष्य को दुई भली देखते जड़े कहे सब शेष हो जाए जड़े कहे ये तो नुआ आरंभ जीवन बदलनी किंतु बदली जाए भावनार शैली आपण के बर्षार एका चली कि समय अनुभव हुए बर्षा बाहर को भी जाए सत किंतु के मन को मध्य धोई थे आखिर लुह वर्षा मिसीगले कहीं जापारे ना बोध हुए से अनेक लोक वर्षा को भल पाते कारण वर्षा केवे प्रश्न करे ना से केवल शुणे मनर सब नीरव कथा

Welcome back to Kuchin Musical Hour 100.4 August FM Rainbow Katak Delsa Delta Kre Radio Hamsapar Sagar achi apan go saita so chalchi kichi katha kichi gita Prince jiban ra akash re megha asibo dukha asibo apaman asibo hari jibar bhay madha asibo kintu mone rakhantu megha kebe akash ku निजर करि पारे नै किछि समय परे से हटि जाय आ सूर्य पूर्ण आसे तेनु आज जदि आपन को जीवन रे मेघ अछि भय करंतु नै होय त ई मेघ ही काली आपन को जीवन रो आसर वर्षा नै नियति भाबर आसीबो कारण मेघ रो काम आकाश को ढांकीबा चिरदिन पई अंधार करते बनु हे एई विश्वास एडिसस गुचो आज रो किछि कथा किछि गीत प्रोग्राम स्टे ट्यून्ड 100.4 आकाश फनी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक

0: यहाँ खबरें तोड़ी मरोड़ी नहीं जाती।
1: बहुत सारे निजी चैनल और निजी चैनलों के बोलबाला में हम समझ रहे हैं कि आकाशवाणी और दूरदर्शन इसकी रिलेवेंसी क्या है।
0: यहाँ होती है सीधी सटीक और सच्ची खबरें।
1: मैं मन से मानता हूँ कि भारत के भाव की अभिव्यक्ति केवल और केवल आकाशवाणी और दूरदर्शन ही कर रहा है,
0: क्योंकि ये है देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल। डीडी न्यूज, केवल खबर पूरी खबर।

5000 वर्ष पहले हमारे देशवासी इसी वेद मंत्र का उच्चारण करके परम पिता परमात्मा से याचना करते थे, सबका भला करो भगवान, सबको सुख और शांति दो। और 500 वर्ष पहले भक्ति मार्ग के दर्शक गुरु नानक देव ने इसी बात को सरल भाषा में दोहराया, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणी सर्वतदा भला।

परंतु सबके लिए सुख और शांति मांगने वाले हिंदुस्तानी क्या खुद शांति से रह सके? रहते भी तो कैसे? उनकी धरती का दूसरा नाम सोने की चिड़िया है, जिसकी मिट्टी में सोना और जंगलों में चंदन है। शायद इसीलिए प्रकृति ने इसकी सुरक्षा के लिए उत्तर में हिमालय, दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में थार